मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संबद 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्चस्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

0: को 23 रूपए से घटाकर 16.50 रूपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रूपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम के आरंभ में समूह स्वर में सुनिए देशभक्तिपूर्ण रचना।

ये है वतन हमारा। अभी आप समोसर में सुन रहे थे देशभक्ति पूर्ण रचना। लीजिए अब आप सुनिए मधु मुदगल की आवाज में कबीर भजन।

अभी आप सुने थे मधु मुदगल की आवाज में कबीर भजन। अब आपको सुनाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में कृष्ण भजन।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में कृष्ण भजन। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में मेरा भजन।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में मेरा भजन। लीजिए वंदना कार्यक्रम के समापन में सुनिए समूह स्वर में शनि देव जी की आरती।

इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होती है। श्रोताओं, कार्यक्रम के बीच आए तकनीकी व्यवधान के लिए हमें खेद है। मीडियम वेव 404.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से ही कुछ देर बाद यानी कि 6:35 पर सुनेंगे खेती किसानी, विषय होगा पशुधन प्रबंधन। 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। 6:50 पर चिंतन। 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे मुन्नालाल अहिरवार से बुंदेली का विपाठ। फिल्म संगीत सुनिएगा सुबह 7:30 पर और रात्रि 8:15 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन कार्यक्रम। 9:00 लोकरंग कार्यक्रम के कलाकार होंगे भक्ति सिंह यादव। 9:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे मिश्रित संगीत। 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

लीजिए सुनिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला। 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, 12 बजे आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से, 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, 2 बजे फिल्म संगीत, 2:30 पर आपकी फरमाइश, शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम और रात्रि 8 बजे सुर्खियों में। ये तो थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला।

हमारी संतकालीन सभा में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष एवं आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष के सफर पर आयोजित विशेष परिचर्चा। संचालन होगा आभा श्रीवास्तव का। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा के कलाकार होंगे मगनलाल प्रजापति। 7:20 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें ग्रामीण भाई सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकरंजन। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की और आज के सीख का विषय होगा छाती छुड़ाना।

दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोले रहे हैं। किसान भाई सुने खेती किसानी, विषय है पशुधन प्रबंधन।
1: आज पंचो किसानी पे पूरी तरीका से सफल होवे के लाने जो बहुत जरूरी है कि अपन खेती में परंपरागत और वैज्ञानिक दोनों तरीकन को बराबर 100 उपयोग करें। वैज्ञानिक तरीका खेती में मशीन, रासायनिक उर्वरक और दवाइयों के प्रयोग पे जोर देत है, जीको लाभ अपने पंच भैया उठा भी रहे। खेती के परंपरागत तरीकन में हर बखर गोबर की खाद, बैलवा आदि को प्रयोग अपन करत है और इसे अपने खेती की गुणवत्ता को सुधार भी होते है। अब इके लाने जरूरी है कि अपने पास पशुओं की अच्छी जोड़ी हुए। हमारे कहवे को मतलब है कि किसानी के संगे अगर अपन पशुपालन को काम भी अपना लें तो सोने पे सुहागा वाली कहावत अपन सिद्ध कर सकत। अब हमारी बातन से अगर पशुपालवे की इच्छा हो रही होए या फिर अपन भैया पहला से एक अच्छे पशुपालक हो तो जो ध्यान रहे जैसे भी हुए दूध के उत्पादन बढ़ावे में भी अपनी भूमिका निभाने हैं। अब प्रश्न उठत जो है कि जो सब एक संगे कैसे हुए, तो भैया हरो इके लाने जरूरी हो जात है कि अपन पशुधन प्रबंधन का अच्छे से अपनाए। अपन इके लाने दुधारू नस्लन की बढ़ोतरी संकरण तकनीकी को उपयोग करके कर सकत, संगे संगे उन्नयन तकनीकी और चयनात्मक पद्धति का अपना के भी अपन पशुओं की नस्लें सुधार के अच्छे दूध देवे वाले पशु तैयार कर सकत। पशुपालक भैयों से इते हम जो जरूर कह भी के गैया और भैंसियन के प्रजनन की भी अपन खा उचित व्यवस्था करने। इको प्रबंधन सभी पशु पालकन का जरूरी है। इमे जो समस्याएं अपने सामने आ सकती उकी जानकारी हमसे अपन ले सकत हो, जैसे पहले बयान में पशु की अधिक उम्र को हो जावो, दूध देवे वाले जानवरन को लंबो सूखो समय, छोटो दूध श्रवण काल, दो बयान के बीच समय को लंबो अंतर, शांत ऋतु काल या फिर पशु को बार बार ऋतु काल में आ जावो। इन समस्याओं को हल अपने पशुपालक भैया इस प्रकार से करें कि मादा पशु को मिलन नर पशु से कम ही उम्र में करा देवे। और हमाओ तो इते पे जो कहवो है कि इस प्रकार की अगर समस्या होए तो पशु की उम्र से ज्यादा महत्व पशु के भार यानी उके वजन खा दें। अगर गैया हो तो पहले गर्भाधान की बेरा उको भार 200 से 250 किलोग्राम और भैंसिया हो तो उको भार 300 से 350 किलोग्राम भव चाहिए। गांवन में पहले गर्भाधान की बेरा गैया की उम्र 4 साल और भैंसिया की उम्र 4.5 साल मानी जात है। पंच जो तो जानता ही है कि गैयन को गर्भकाल 280 से 285 दिना यानी 6 से 6.25 महीना और भैंसन को गर्भकाल 310 से 315 दिन अर्थात 10.5-11 महीना को होत है।

0: हृदय पे जो ध्यान धरे रहने के अंत के 6 से 8 हफ्ता के बीच गर्भ में शिशु को सबसे ज्यादा विकास होते है। इस स्थिति में 2 महीना को शुष्क काल पर्याप्त है। शुष्क काल पशुओं को वो समय आए जिनमें अपन उनसे दूध लगावो बिल्कुल बंद कर दे। आजकल वैसे 45 से 60 दिन को शुष्क काल एक आदर्श समय मानो गाओ है। अपने जानवरों को दूध निकालो बंद करती बेरा भी अपन खा 2-3 बातन को विशेष ध्यान रखने हैं। अगर अपनो पशु 4-5 लीटर दूध से ज्यादा रोज नहीं देत और उगे थनेला जैसी कोनो बीमारी नहीं है तो अपन दूध दोहबो एकदम से बंद कर सकत। और गैया या भैंसिया इसे ज्यादा दूध रोज देत हुए तो वे शुष्क करवे के लाने पहला 2-3 दिना 24 घंटा के अंतर में, फिर 2-3 दिना 36 घंटा के अंतर में और फिर अगले 2-3 दिना 48 घंटा के अंतर में दूध लगावे के बाद फिर अपन उनको दूध लगावो एकदम से बंद कर सकत। जो ध्यान भी पशुपालकन का रखने हैं कि पशु के ब्यावे के बाद शुरू के 2 ऋतुकाल छोड़ के 3रे ऋतुकाल में मादा पशु का ज्ञावन कराव चाहिए। पशुपालक अगर अपनी गैया भैंसियन में जब जे लक्षण देखें तो समझो चाहिए कि उनको ऋतुकाल शुरू हो गया है। लक्षण हैं उनके खावे पीवे या चरवे के स्वभाव में अंतर आ जावो, उनको जुगाली बंद कर देवो, दूसरो दूध उत्पादन की मात्रा घट जावो, जब गैया दूसरी गैयन पे चढ़े या दूसरी गैया अपनी गैया पे चढ़े और वह सान ठाड़ी रहा है और तीसरी तरह तरह देर में वह पेशाब करे या अन्य दूसरे पशु खबा चाटत दिखाए तो समझो चाहिए कि ऋतुकालू को अब आ गयो है। इतने सब के संगे इन बातन को ध्यान भी अपने पशुपालकन खा रखने हैं। जोन पशु गर्भित हो चुके हुए ना तो ऊखा दौड़ाए ना दूसरे पशु के संगे राखे, इसे गर्भपात जैसी घटनाएं न घटें। गर्भावस्था की आखिरी बेरा में पशु के पोषण आहार पे विशेष ध्यान रखें और संक्रामक बीमारियों से बचाव के लाने टीकाकरण अवश्य करवाएं। अगर अपन इस प्रकार से पशु प्रबंधन अपनाउ भय पशुपालन के व्यवसाय से जुड़त हो तो निश्चय अपन का इस क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल है और अच्छो आर्थिक लाभ हुई है।
1: किसान भाई अभी सुन रहे थे खेती किसानी, विषय था पशुधन प्रबंधन। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

ज्ञान तथा भक्ति में भेद संबंधी गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश होता है, अतः वो स्वभाव से ही अविनाशी, चैतन्य तथा निर्मल होता है। किंतु माया बड़ी बलवती होती है और जीव उसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं रख पाता। वो माया के वशीभूत होकर अपने आप बंध जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन के बीच ग्रंथि आ जाती है और जीव आवागमन के भंवर में पड़ जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार में वो गांठ दिखाई नहीं पड़ती और जो दिखे ही नहीं उसे खोलें कैसे। हरि कृपा से मन में यदि श्रद्धा का आविर्भाव हो तो धर्माचार और आस्तिकता के अवलंबन से निवृत्ति और विश्वास उपजता है।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस गान सुन रहे थे। गायिका स्वर थे कविता कृष्णमूर्ति और संगीत संयोजन था सतीश वाठिया का। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: जीवन में बाधाओं का हर व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। बाधाएं हमारी राह में आने वाली वो रुकावटें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। बाधाओं का रोना रोने वालों की कमी नहीं है, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि यदि जीवन है तो बाधाएं आएंगी ही। ये तो प्रकृति का नियम है। जितनी बड़ी बाधा होती है उसे दूर करने के लिए उससे अधिक कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बाधाएं समयानुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती हैं, परंतु आने से पहले ही हम आशंकाओं से भर जाते हैं और घबराने लगते हैं, जिससे हमारी निर्णय क्षमता प्रभावित होने लगती है और हम गलत निर्णय लेने लग जाते हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रिचर्ड वाइजमैन का कहना है कि बाधाएं मनुष्य के रवैये के अनुसार अपना रंग दिखलाती हैं। अगर व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला है तो बाधाएं सड़क पर पड़े स्पीड ब्रेकर से अधिक कुछ नहीं होती, जिन्हें थोड़ा संभल कर आसानी से पार किया जा सकता है। और यदि सोच नकारात्मक है तो बाधाएं पहाड़ की तरह बड़ी प्रतीत होती हैं, जिन्हें पार करना आसान नहीं दिखता। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके अनुसार ये संसार ऐसा है, जिसमें तरह तरह की बाधाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ऐसे लोग अपनी भावी संभावनाओं को लेकर सदैव आशंकित रहते हैं और आशंकाओं को लेकर सदैव भयभीत रहते हैं। एक अन्य ख्याति प्राप्त मनोवैज्ञानिक रेमंड कैटल का कहना है कि बाधाओं से डरे नहीं बल्कि उन पर हंसना सीखें। उनके अनुसार बाधाएं कुछ नहीं है, वे तो केवल मृग मरीचिका के हैं, जिन्हें हम सच मान लेते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे सच का मूर्तिमान रूप हों। सही मायने में बाधाएं या तो हमारी पैरों तले कुचली जाएंगी या वे हमें पीछे हटने पर मजबूर कर देंगी, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम बाधाओं को किस रूप में स्वीकार करते हैं। उनसे डरने वाले पीछे हटने को मजबूर होते हैं, जबकि उनसे लड़ने वाले बाधाओं को ही डरा कर दूर कर देते हैं। बाधाएं कुछ नहीं करती, करने वाले तो हम होते हैं। हम जो चाहें वो उनके साथ कर सकते हैं। जीवन में कोई भी कार्य बाधाओं का सामना किए बिना

0: पूरा नहीं होता। छोटी बड़ी मुसीबतें, रुकावटें, समस्याएं, असफलताएं सामने आती ही हैं, जिनसे हमें जूझना पड़ता है। लेकिन यदि पहले से ही इन सभी बाधाओं को दिमाग में अपनी सोच में जगह दे दी गई है, तो फिर इनका समाधान निकालने के लिए सोच कम पड़ जाएगी। इसीलिए जब जिस तरह की बाधाएं सामने आए, उसी समय पर्याप्त सोच समझ के साथ इनका सामना करना चाहिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार, बाधाएं व्यक्ति के लिए उत्कृष्टता का पैमाना बन सकती हैं। व्यक्ति जितनी ज्यादा बाधाओं से पार पाता है, उतना ही वो उत्कृष्टता की तरफ बढ़ता जाता है। इसलिए इन बाधाओं को देखकर कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि इनका डटकर सामना करना चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री थॉमस जेफरसन बाधाओं से निपटने के बारे में कहते थे कि हमेशा चीजों को चिकने हैंडल की तरह से पकड़ो। इसका अर्थ यह है कि शुरुआत हमेशा ऐसी जगह से करना चाहिए जहां से कार्य करने में आसानी हो और प्रतिरोध की गुंजाइश कम हो, और हमारी सोच सदा सकारात्मक हो, क्योंकि सकारात्मक सोच ही हमें बाधाओं के बीच में खड़े रहने और इनसे जूझने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम आसानी से बाधाओं को पार कर पाते हैं। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एरिक बार्लो का कहना है कि कोई भी कार्य जटिल क्यों समझा जाता है, इसका जवाब एक ही है कि व्यक्ति के अंदर बाधाओं को पार करने की गहन और प्रबल सच्ची इच्छा नहीं होती। यदि जीवन में सरलता चाहिए तो जटिलता को पार करना ही होगा, क्योंकि सरलता हमेशा जटिलता को पार करने पर ही मिलती है। हम जैसे ही जटिल चीजों को अपनाते हैं, उसके सरल होने के रास्ते खुल जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई जटिल काम सामने आए तो उत्साह बनाए रखना चाहिए और मन में ये दृढ़ भाव रखना चाहिए कि ये काम तो हमें करना ही है। यदि व्यक्ति के अंदर जटिल समझे जाने वाले काम को सरलता से करने की प्रबल इच्छा है, तो इसका अर्थ है कि मार्ग की आधी दूरी तय की जा चुकी है और बाकी दूरी कार्य करते ही पूर्ण हो जाएगी। जब हम कार्य करने के पहले ही इनकार कर देते हैं, तो बाकी दूरी तय किए बिना ही वापस लौट आते हैं।
1: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: इयम आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां संपूर्य यूरोप देशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक संबंधान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैंड देशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेंडसन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबी नगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री मोदी डच देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखाञ्च मिलिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारम् आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते त्रिरूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणां अपेक्षया 16 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभार ग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किम राज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायां उपराष्ट्रपतिः गैंगटोक नगरे सिक्किम राज्यस्य राज्यत्व दिवस समारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओम प्रकाश

0: माथुरः सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्री प्रेंग सिंह तवांगः केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यादयोऽपि उत्सवेऽस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति। या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति। एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीय चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। उतो वा अंकनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानां उत्तराणां पुनर्मूल्यांकनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनान देशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः पञ्चचत्वारिंशत् दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिका देशस्य विदेश विभागः अवदत्। विदेश विभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृत वार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जून मासस्य द्वित्रिदिनांकयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य अष्टाशीत्यधिकैकशत धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन सप्तदशैव क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् अष्टत्रिंशत् कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य नवति धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तम क्रीडकत्वेन पुरस्कृतः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने एमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और व्यापार उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे का दूसरा पड़ाव। नीदरलैंड्स, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से हुए कई समझौते। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर गैंगटोक पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। भूशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया स्वागत। बोले, ब्रिटेन से वापस लाएंगे मां बाग देवी की प्रतिमा। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। यहां एम्स्टर्डम में विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने उनका स्वागत किया। यहां के बाद प्रधानमंत्री स्वीडन, नॉर्वे, इटली भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में 5 देशों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। कल श्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ $5 अरब के निवेश पर सहमति बनी है।
1: और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम जाएंगे। गैंगटोक में राज्य स्थापना दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1975 में राजशाही खत्म होकर यह भारत का 22वां राज्य बना था। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भोजशाला को मां वाग देवी की आराधना स्थली माना है। डॉ. यादव ने कहा कि अब श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना का पूरा अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में रखी मां वाग देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे।
1: इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ वाग देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ। स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वाग देवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाएं। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करने और ग्रामीणों को मुफ्त पट्टे देने का अभियान चलाने के निर्देश दिए। डॉ. यादव ने गांवों में स्कूल, खेल मैदान और बेहतर सुविधाएं देकर शहरों की ओर पलायन रोकने पर जोर दिया। देवास के टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े इस एकल सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता करेंगे। आयोग घटना से जुड़े 5 बिंदुओं की गहन जांच करेगा और 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा उद्यमियों अपर्णा और दिनेश से मुलाकात की। ये युवा उद्यमी रूडा नोट्स के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बने कागज के उत्पाद गुणवत्ता, कार्यक्षमता और टिकाऊपन में बेहतरीन हैं। मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अच्छी स्टेशनरी हमेशा से उनके दिल के करीब रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल शाम भोपाल के रविन्द्र भवन में नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। गुड़ी पड़वा से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान के तहत कुएं, बावड़ियां, तालाबों को फिर से उपयोगी बनाने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को समर्थ नर्मदा अलंकरण से सम्मानित किया। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 2 चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। पहले चरण में 19 से 22 मई के बीच ₹700 प्रति विषय शुल्क देकर उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मांगी जा सकती है। दूसरे चरण में 26 से 29 मई के बीच गलती के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। हर चरण में सिर्फ 1 आवेदन मान्य होगा। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को इसके लिए 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत 1,32,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सब्जी में 54,000, मसालों में 56,000 और फलों में 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। किसानों को ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, आधुनिक तकनीक की मदद भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। वहीं 98% से अधिक घरों का निर्माण शुरू हो गया है। 9 लाख से ज्यादा घर बनकर तैयार

हो चुके हैं और लोगों को सौंपे जा चुके हैं। मंडला जिले के रामनगर में दो दिवसीय आदि उत्सव का आज दूसरा और आखिरी दिन है। कल केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने इस उत्सव का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि आयोजन जनजातीय संस्कृति परंपराओं को जीवित रखने का बड़ा मंच है। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रूपये का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21,00,000 का राष्ट्रीय सम्मान और 5-5,00,000 के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। न्याय, सुशासन, कला, शौर्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश विदेश के लोग और संस्थाएं आवेदन कर सकती है। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। awards.mvsp.ujain.com पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग एकेडमी की बॉक्सर माही लामा ने वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह पक्की कर ली है। एनआईएस पटियाला में हुए ट्रायल में उन्होंने 2 मुकाबले जीते।

www.mygov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। मध्यप्रदेश राज्य बॉक्सिंग एकेडमी की बॉक्सर माही लामा ने वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह पक्की कर ली है। एनआईएस पटियाला में हुए ट्रायल में उन्होंने 2 मुकाबले जीते। आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खंडवा में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। 12 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गांव-गांव जल संरक्षण के काम हो रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर ने पद्मश्री लोक कलाकार रमेश परमार और शांति परमार की कार्यशाला का भ्रमण किया। धार में 3 दिवसीय 11वें पद्मश्री फड़के संगीत समारोह का शुभारंभ कल शाम विक्रम ज्ञान मंदिर लालबाग परिसर में हुआ। पन्ना में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर के वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। खंडवा में शनिचरी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आगर मालवा के सुसनेर में युवा संगम रोजगार मेले में 33 सेवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ। अशोकनगर में संपर्क अभियान के तहत बिजली संबंधी सेवाओं के लिए घर घर शिविर लगाए जा रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने 72 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुट केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली सुगंध के अंतर्गत मुन्ना लाल अहिरवार से बुंदेली काव्य पाठ।
1: कविता का जो प्रमुख शीर्षक है वो है कि बुंदेली के भाव कैसे भी हो जाए लेकिन बुंदेली हमारे हृदय में है। किस संग

ती है ही ये मैं अपने अपनी जा बुंदेली। अब आजकल के जो खान पियन है उसको देखें तो हम कि पिज्जा बर्गर खा लें कितनों, चाउमीन चाहे खा लें जितनों, आवे मजा ना फिर भी तनिकऊ। चाहे जैसे खा लें दुनिया भर के खाने लेकिन मजा नहीं आउ, मजा कब आउत है कि पेट भरत है अपनों तो जब चाटे पांच उंगली। अरे ऊ सही बसी।

0: हेले ऊसई बसी हे मैं अपने अपनी जा बुंदेली।
1: और हम आजकल जो मॉडर्न हो गए हैं लोग, लेकिन निश्चित रूप से बुंदेली को नहीं भूले हैं।
0: कि कितना भी मॉडर्न हो जावे, चाहे कितनी भाषा कावे, गांव में हो चाहे शहर में रावे, हो गांव में हो चाहे शहर में रावे।
1: जब भी कभी अचानक कुछ घटना होती है तो वो हमारे हृदय से बुंदेली ही निकलती। कैसे निकलती है?
0: कि अरे बाप रे, डर के मारे लाल के मौसम से निकली, कि ओसई बसी है ये मैं अपने अपनी जा बुंदेली।
1: कैसी बसी है?
0: कि संग रात है मात पिता और जैसे मित्र सहेली, ओसई बसी है ये मैं अपने अपनी जा बुंदेली।
1: इसी प्रकार दूसरी रचना है आज की, बुंदेली जो है उसके लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं उसको आगे लाने का। और कैसे प्रयास कर रहे हैं इस गीत के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। अरे बुंद

0: बुंदेली को देखो जग में नाम जो बुंदेली खांगे लावे।
1: और बुंदेली में बहुत सारे सीरियल फिल्में कई प्रकार की बनती है, ना केवल यहाँ पर मुख्यधारा की जो बॉलीवुड है वगैरह उसमें भी बुंदेली का बहुत प्रेफरेंस दिया जा रहा है
0: कि फिल्में और सीरियल बन रहे बहुत अब बुंदेली में, फिल्में और सीरियल बन

अबे अब बुंदेली के लिए इतना आगे ले जा पहुंच गई बुंदेली, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है बेहतर रूप से उसका प्रोत्साहन करें लोगों का जो भी बुंदेली में गाते हैं या लिखते हैं या जो भी काम कर रहे हैं। कैसे?

सो गर्व करत अब बुंदेली पे, गर्व करत। पहले बुंदेली बोलने में बहुत लोग सकुचाते थे, लेकिन बुंदेली पे अब हम लोगों को गर्व होता है, क्योंकि हर जगह बुंदेली है कि गर्व करत।

एक के और हमारी बुंदेली की कविता है कि बड़े भय जग में अपनी बुंदेली के ठाट, बड़े भय जग में। ये तो अच्छो काम हो रहा बुंदेली में कि अब ठाट बाट हो गए बुंदेली के, कि बड़े भय जग में अपनी बुंदेली के ठाट, बड़े भय जग में। और काय बुंदेली के ठाट हो गए हैं कि

है जग में। और कि पन्ना को हीरा खजरा हो विख्यात, बुंदेलखंड की जो प्रमुख चीजें हैं उसमें पन्ना का हीरा और खजुराहो है। कि पन्ना को हीरा खजुराहो विख्यात।

0: है कि मैं अगली जो एक चौकड़िया है टीवी के कछुदनन पहले इतने प्यारे दिन रात थे कि टीवी देखत में लोग बड़ो आनंद लेते
1: हो। अब तो कड़े जमाने टीवी के दिन हते सुहाने,
0: जो 90s में टीवी का दौर था वो बहुत सुहाना था।
1: कि अब तो कड़े जमाने टीवी के दिन हते सुहाने,
0: कैसे दौर थे उस समय
1: कि रामायण महाभारत देखे वे,
0: इतनी भीड़ लगाती उस समय पे रामायण महाभारत देखे वे लोग जाते।

ए सुहाने हो फिल्में और सीरियल कई एक, न केवल महाभारत रामायण और भी कई प्रकार के सीरियल आते थे जिसमें लोग बहुत बड़े चाव से देखते थे, बड़ी प्रसन्नता से देखते थे कि

सुहाने। और टीवी ऐसे देखो करते लोग कि रातन रातन देखी उनने, कई लोग ऐसे थे जो टीवी को रात रात भर देखते थे कि रात

अभी आप बुंदेली सुगंध के अंतर्गत सुन रहे थे मुन्ना लाल अहिरवार से बुंदेली काव्य पाठ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोले रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

0: जिंदगी कैसे कटेगी। अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में भयानक फिल्म का गीत सुना। गीत लिखा था इंदिवर ने और संगीतबद्ध किया था उषा खन्ना ने।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और

0: तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए कोहरा फिल्म का गीत। कैफी आजमी के बोल हैं और संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में कोहरा फिल्म का गीत, कैफी आजमी के बोल थे। संगीत दिया था हेमंत कुमार ने।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से।

अभी आपने सुना अनुराग फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी किया लिखा गीत था, संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। चौधवी का चांद इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज में। शकील बदायूनी का लिखा गीत है और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

अभी आपने सुना चौधवी का चांद फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। शकील बदायूनी का लिखा गीत था, संगीत था हेमंत कुमार का। लीजिए अब आपको सुनाते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म है देवर।

0: लीजिएगा इकरम के आखिर में सुनिए 20 साल बाद फिल्म का गीत है, हेमंत कुमार की आवाज में। संगीत भी हेमंत कुमार का है और गीत लिखा है शकील बदायूनी ने।
1: नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी मजा जब

0: हाय कितनी मासूम लग रही।
1: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और

0: मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
1: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
4: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
5: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को।

0: पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग एक साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह सेफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी यह परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही CBI दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रूपये महंगे, CNG के दाम 2 रूपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

0: सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मानसून, समय से चार दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: of India headlines, disputed Bhojshala site, a temple, declares HC. In its editorial titled When Trump and Xi Met, the Hindustan Times says that their meeting in Beijing failed to deliver any big deal. In April 2025, US President Donald Trump fired the first shots in the trade war against China and the rest of the world. Some countries quickly capitulated, but the Chinese dug in their heels and responded in kind. The paper concludes what the meeting has achieved is that the two most powerful men are talking and open to more talking. And finally, the Hindu reports monsoons to arrive 1 week earlier on the 26th of May in Keralam. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and UAE signed slew of agreements including setting up strategic petroleum and gas reserves in India. Prime Minister Narendra Modi reaches Netherlands on second leg of his five-nation tour. Prime Minister Modi rejects media report imposing tax on foreign travel. CBSE announces window for re-evaluation of answer sheets for class 12 students. Israel and Lebanon extend ceasefire for 45 days. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Malaysian duo in semi-finals of Thailand Open. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोले रहे हैं। लीजिए सुनिए गीत गुंजन कार्यक्रम। श्रोताओं, इस दुनिया में शब्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात माँ की आती है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। वो सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और समर्पण की परिभाषा है। कहते हैं कि चलती फिरती हुई आंखों से अजान देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अजान देखी है, मैंने तो जन्नत तो नहीं देखी पर माँ तो देखी है। गीत गुंजन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को भूपेंद्र कुमार वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज का कार्यक्रम समर्पित है उस दिव्य हस्ती को जो ईश्वर का दूसरा रूप है, हमारी माँ। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, उसकी गोद से बढ़कर कोई झोल नहीं होता। तूफान में जो पतवार बन जाती है वो शक्ति ही तो माँ कहलाती है। माँ न सिर्फ हमें जन्म देती है बल्कि वो हमें जीना भी सिखाती है। जब हम हार मान लेते हैं तो माँ कहती है, उठो बेटा, अभी तो बहुत दूर जाना है। उसकी आंखों में हमारे लिए सपनों का पूरा संसार होता है।

श्रोताओं, माँ के प्यार और त्याग को समर्पित इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे सच्चा, सबसे पवित्र और सबसे निस्वार्थ होता है तो वो है माँ का रिश्ता। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी छांव जिसके बिना जीवन अधूरा लगता है। जब हम इस दुनिया में आए तब सबसे पहले जिसने हमें अपनी गोद में लिया वो माँ थी। जब हम बोलना नहीं जानते थे फिर भी माँ हमारी हर खामोशी समझ जाती थी। हम चलना नहीं जानते थे तब माँ ने हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया। और आज भी जब जिंदगी की राहों में हम गिरते हैं तो सबसे पहले हमें संभालने के लिए माँ ही खड़ी होती है। माँ अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। वो रात भर जागती है ताकि उसका बच्चा चैन से सो सके। जिसने हर दर्द में मुस्कान दी, हर ठोकर पर हमें पहचान दी, खुद भूखी रहकर जिसने हमें खिलाया, खुद भूखी रहकर जिसने हमें खिलाया, उस माँ ने ही हमें ये जिंदगी और जान दी।

श्रोताओं, माँ की अपनी इच्छाएं, अपने सपने सब कहीं पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि उसके लिए उसके बच्चों की खुशी ही उसकी दुनिया बन जाती है। माँ का प्यार किसी शर्त पर नहीं टिका होता। हम चाहे कितनी भी गलतियां करें, माँ हमेशा माफ कर देती है। जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, तब भी माँ हमारे साथ खड़ी रहती है। उसकी दुआ में इतनी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल को आसान बना देती है। माँ के आंचल की छांव में जिंदगी की हर थकान मिट जाती है। माँ की ममता में इतनी शक्ति होती है कि टूटता हुआ इंसान भी संभल जाता है। अपने आंचल में जब मुझे छिपा लिया माँ ने, अपने आंचल में जब मुझे छिपा लिया माँ ने, जमाना कुछ भी नहीं बता दिया माँ ने, मैं डर रहा था।

श्रोताओं, जब माँ हमारे पास होती है तो उसके होने का एहसास नहीं होता। जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक जंगल में संगीतकार मृदंग बजाया करता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य यंत्र को कहते हैं। तब मैं

मेमना यानी एक बकरी का बच्चा वहां आकर प्रतिदिन खड़ा हो जाता था। तब संगीतकार ने उससे सवाल किया, यार मेमने, मेरा सुर, मेरी ताल, मेरी लय, क्या मेरा बजाना तुझे इतना अच्छा लगता है जो तू रोज यहाँ चलाता है? श्रोताओं, दर्द से जुड़ना। मेमने ने कहा, मैं नहीं जानता कि आप क्या बजाते हैं, न सुर की समझ, न लय की समझ, न ताल की समझ। मैं तो बस इतना जानता हूँ, इस ढोलक पर यानी कि मृदंग पर जो चाम मरा है ना, वो मेरी माँ के बदन से आया है। जब इस पर थाप पड़ती है तो मैं आकर खड़ा हो जाता हूँ, जैसे माँ मुझे पुकार रही हो। सच कहा है किसी ने, गम की चोटें जख्मों पे फौलाद से ज्यादा क्या होगी, गम की चोटें जख्मों पे फौलाद से ज्यादा क्या होगी, माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी।

हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ आए, बंगले में श्वान पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए। जो माँ जैसी देवी को घर के मंदिर में नहीं रख सकती, जो माँ जैसी देवी को घर के मंदिर में नहीं रख सकते, वो लाखों पुण्य भले कर ले, इंसान नहीं बन सकते। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने काम, करियर और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि माँ को समय देना भूल जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जिस माँ ने अपना पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित कर दिया, वो सिर्फ हमारे कुछ पल चाहती है, थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान और थोड़ा समय। दोस्तों, अगर आपकी माँ आपके साथ है तो खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझिए। आज ही अपनी माँ के पास जाइए, उन्हें गले लगाइए और कहिए, माँ, आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि माँ का प्यार ही इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और कहना चाहूंगा अंत में, अम्मा, तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। हे माँ, तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। सारे तीर्थ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेता हूँ, जिनके कोई संतान नहीं, मैं उन माओं का बेटा हूँ। हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ, हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ, मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में यह शीश झुकाता हूँ।

दोस्तों, भगवान ने जब सोचा कि वो हर घर में नहीं रह सकता तो उसने माँ बनाई और अपने प्रतिनिधि के रूप में हर घर में भेज दी। जरा सोचिए, हमारे जन्म के समय क्या क्या कष्ट उठाती है, अपनी जान तक दांव पर लगाती है, कैसे कैसे हमें पाल पोष कर बड़ा करती है, और हम बड़े होकर माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी सेवा करने से बचते हैं और कई बार तो उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ आए,

और इसी के साथ गीत गुंजन कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त भूपेंद्र कुमार वर्मा को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे मां पर केंद्रित गीत गुंजन कार्यक्रम। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक रंग कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं भक्ति सिंह यादव। इनसे सुनवाते हैं बिलवारी और संगीत करने वाले कलाकार हैं ढोलक पर दीपक कुशवाहा और बेंजो पर हैं जब्बार खान।

0: अभी आपने सुनी भक्ति सिंह यादव से बिलवाड़ी।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: अब आपको सुनवाते हैं दादरा।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक बार पुनः सुनिए भक्त सिंह यादव की आवाज में दादरा।

0: कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

अभी आपने सुना कहरवा भक्ति सिंह यादव की आवाज में। अब आपको सुनवाते हैं दादरा। संगत करने वाले कलाकार हैं ढोलक पर दीपक कुशवाहा और बेंजो पर हैं जब्बार खान।

अभी आपने सुना दादरा। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए भक्ति सिंह यादव की आवाज में कछियाई। ढोलक पर संगत कर रहे हैं दीपक कुशवाहा और बेंजो पर हैं जब्बार खान।

इसी के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के कलाकार थे भक्ति सिंह यादव और संगीत करने वाले कलाकार थे ढोलक पर दीपक कुशवाहा और बेंजो पर थे जब्बार खान। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। निजी प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे। सहयोग है राजेंद्र कुमार अहरवार का और प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति की।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपके दोस्त राजेंद्र अहिरवार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले बता देते हैं, जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम के लिए हमारा ईमेल आईडी है bhavidiyachhatarpur@gmail.com bhavidiyachhatarpur@gmail.com। और डाक के लिए आप खत भेज सकते हैं हमारे आकाशवाणी के लिए इस कार्यक्रम के लिए डाक के माध्यम से, जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001। कार्यक्रम का ये पहला पत्र हमें प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता जी का। आप लिखते हैं, दोस्तों आकाशवाणी हमारे लिए सूचना शिक्षा और मनोरंजन का महातीर्थ के समान है, जो हमें प्रतिदिन विश्वास आस्था और श्रद्धा की त्रिवेणी में पूरे समर्पण भाव से स्नान डुबकी करवाकर महाकुंभ की तरह पुण्य फल प्रदान करती है। आगामी 8 जून को हम आकाशवाणी के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाएंगे और 7 अगस्त को 50 साल आकाशवाणी छतरपुर अपनी स्थापना के मना रही है। आकाशवाणी से हमारा व्यक्तिगत नाता विगत 48 वर्षों से बदस्तूर जारी है। इसको रेडियो पर सुनने में हमारी सबसे ज्यादा मदद आकाशवाणी छतरपुर करता है। यहाँ से बुंदेली साहित्य, संगीत, कला, खेल, विज्ञान, इतिहास आदि विषयों पर सभी वर्गों जैसे युवा, किसान, महिला और बालक एवं वृद्धजन के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। यहाँ के प्रसारक, कंपियर्स और कार्यक्रम अधिकारी अपने तकनीकी स्टाफ की मदद से रेडियो के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर कार्यक्रमों को प्रसारित और अनुप्रसारित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय महत्व के सभी आवश्यक कार्यक्रमों का अनुप्रसारण यहां से निरंतर किया जा रहा है, चाहे अयोध्या स्थित श्री राम लला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण हो या हालिया सोमनाथ अमृत पर्व की लाइव कवरेज। आकाशवाणी के सभी कर्मठ प्रसारकों का मेरे निजी जीवन में अहम योगदान है। जब भी मैं आकाशवाणी सुनता हूं तो गुनगुना उठता हूं ये गीत।

कार्यक्रम का ये अगला ईमेल प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आराध्या और सार्थक चंसोलिया ने। आप लिखते हैं, दोस्तों इस समय विवाह शादियों का दौर जोरों पर है। हमने भी कुछ शादियों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हमारे आकाशवाणी केंद्र के परिवारों में भी शादियां हुई होंगी या कहीं शामिल हुए होंगे। विवाह भी एक पारंपरिक रस्म है। दूल्हे का सज धज कर बग्घी पर सवार होना और घोड़े पर बैठना, साथ ही पीछे पीछे बाराती ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए चलते हैं, फिर आकाश में रंग बिरंगी आतिशबाजी होती है और जो देखते ही बनती है। दूल्हे का द्वार चार, फिर जयमाल की स्टेज पर बरमाल व साथियों का हंसी मजाक बहुत ही अच्छा लगता है। शादी की और अन्य रस्मों के बाद जब दुल्हन की विदाई का समय आता है तो उस समय वधू की आंखें नम हो जाती हैं और सभी वधू और वर पक्ष के लोगों की भी आंखें नम हो जाती हैं। वधू के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उस समय जो विदाई गीत बजते हैं, मानो ऐसा लगता है कि अपने घर की ही बच्ची विदा हो रही हो और मेरी भी आंखें उस समय नम हो गई। बस यही सोचते सोचते मेरी होंठ गुनगुना उठे ये गीत।

कार्यक्रम का ही अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना गौहर और चंद्रेश गौहर का। आप लिखते हैं, मित्रों जिंदगी हमेशा वैसी ही नहीं होती।

जैसी हम उसे देखना चाहते हैं। ये प्लान बनाते हैं, सपने सजाते हैं, हर चीज को अपने हिसाब से हम चलाना चाहते हैं, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जब सब बदल देता है वक्त। वो रास्ता जिस पर हम चल रहे होते हैं अचानक खत्म सा लगने लगता है और हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ और क्यों ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं, हमारी जरूरत के हिसाब से ही चलती है। कभी वक्त हमें रोक देता है ताकि हम गलत रास्ते से बच जाएं, और कभी हालात हमें तोड़ते हैं ताकि हम पहले से ज्यादा मजबूत बन सकें, और जो कभी हम खो देते हैं वो हमें कुछ बेहतर पाने के लिए तैयार सा कर रहा होता है। हमें लग सकता है कि हम कुछ सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। याद रखना, हर देरी का दर्द, हर ठोकर हमें ले जाने की तैयारी में है जहां हम सच से डिजर्व करते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, वक्त पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा, परसों अच्छा ही होगा। आज हमारी समझ में नहीं आ रहा, कल हमें बड़ी सीख मिलेगी। जिंदगी हमारी चाहत से नहीं, हमारी कहानी से बेहतर बनती है। आज जब भी अतीत की यादों में झांक कर देखता हूं, कुछ जिंदगी के बारे में सोचने लगता हूं, तब होंठों पर चला आता है ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है जब आप गुनगुना उठे। आप सभी अपने ईमेल भेज सकते हैं bhavdiyachhatarpur@gmail.com। अभी कार्यक्रम में आप अपने मेल भेजें और अपनी इस थीम के साथ गाना भी सुन सकते हैं। ये अगला मेल हमें अभी अभी प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है ग्राम पोस्ट गौना कुसमार थाना सौजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर से दीपक नामदेव, कैलाश नारायण नामदेव, सूरबी पायल नामदेव ने। आप लिखते हैं, साथियों बेटी बेटा और बेटी को हम अपने परिवार में अधिक महत्व देते हैं। जब बात होती है बेटी की तो उसे कई नाम से हम पुकारते हैं। बेटी जब हमारे घर में जन्म लेती है तो देवी का स्वरूप मानी जाती है, और जब बेटी की शादी होकर वो हमारे घर आती है तो बहू जननी और जीवनदायिनी के रूप

में कई रूप सामने आते हैं। अगर इस संसार में बेटी नहीं होती तो हम आप लोग कहाँ से होते, किससे माँ कहते, किसे बहू कहते, किसे दादी कहते और किसे अपने रिश्तों में हम जागते। बेटी हमेशा दो कुलों की शान होती है। जब बेटी का पिता अपनी बेटी की शादी करके विदाई करता है तो उसका घर आंगन सूना हो जाता है और कहता है कि बेटी तो अपनी ससुराल जा, वहां लक्ष्मी रूप में रहना और अपने ससुराल वालों का ध्यान रखना, और माता पिता की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसा ही वाक्य 8 मई को हमारे परिवार में भी हुआ और हमने बेटी को यही दुआएं दी कि बेटी तुझे अपने घर में सुखी संसार मिले। जब भी ऐसे विदाई के क्षण आते हैं तो मेरे होंठ गुनगुना उठते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का ये अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है वंदना त्रिपाठी का, इंदिरा नगर ओरई जालौन से। आप लिखते हैं, साथियों आज बट अमावस्या है। हिंदू धर्म में ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। ये व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से हमारे पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का हमें ईश्वर से आशीर्वाद मिलता है। वट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक सूर्य, चंद्रमा और आकाश रहेगा तब तक वट वृक्ष अक्षय मौजूद रहेगा। इसी क्रम में एक कथा सर्वाधिक प्रचलित है। सावित्री ने इसी वट वृक्ष के नीचे अपने दृढ़ संकल्प और पतिव्रत धर्म से यमराज को विवश कर दिया था और अपने पति सत्यवान को प्राण वापस करने के लिए, यानी सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे यमराज से। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के पेड़ के नीचे

उपचार विधि से, पूजा वार्जना सूत से, साथ प्रदक्षिणा करके, मीठा जल ग्रहण करके व्रत का पारायण करती हैं। साथ ही तन मन से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, मेरी सुहाग को सदा बनाए रखना। जब भी वट वृक्ष का ये दिवस आता है तो मैं गुनगुना उठती हूँ ये गीत।

कार्यक्रम का ये अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है यवतमाल विदर्भ महाराज से संतोष खर्से और विनोद खर्से का। आप लिखते हैं, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तुम्हारे बुलावे का इंतजार नहीं करता, मैं तो बस तुम्हारी ओर खींचा चला आता हूँ। मैं ये नहीं पूछता कि क्यों आऊँ, कब आऊँ या कैसे आऊँ, तुम कहो या ना कहो मैं फिर भी आऊँगा। मैं हर समय तुम्हारे पास रहूँगा, तुम कुछ करो या ना करो, तुम जैसे भी रहो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। रातों में तुम्हारे अकेलेपन को अपनी बातों से दूर करूँगा और तुम्हारे टूटते हुए अस्तित्व को भी कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे सिरहाने घंटों तक बैठ सकता हूँ, तुम्हें अपनी बाहों में समेट कर ये कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे पास हूँ और पास ही रहूंगा। मैं अपने हम सफर के बारे में ये सोचते हुए गुनगुना उठा ये गीत।

कार्यक्रम का ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है हरिविलास सिंह तोमर का, ग्राम तरसमा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से। आप लिखते हैं, दोस्तों लोक व्यवहार में इस मास को अधिक मास, मल मास इत्यादि भी कहते हैं। इस ज्येष्ठ मास में 17 मई 2026 के दिन रविवार से ये पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। इस मास में व्रत, उपवास, स्नान, दान, पूजन इत्यादि किए जाते हैं। व्रती को अक्षय फल प्राप्त होता है। जो व्रत करते हैं वो संपूर्ण अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार बीज के दान करने से बट जैसा दीर्घजीवी महान वृक्ष बनता है, जैसे ही मलमास में ये दिया हुआ दान अधिक फल हमें देता है। पुरुषोत्तम मास में कुएं, बापड़ी, तालाब और बाग आदि का आरंभ नहीं करना चाहिए। नवविवाहित वधु का प्रवेश, पृथ्वी, हिरण्य और तुला आदि का महादान, यक्षोपवीत संस्कार, मुंडन आदि कर्म भी वर्जित है। इस मास में प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ देकर उनका पूजन करना चाहिए और दान करना चाहिए। जब भी पुरुषोत्तम मास शुरू होता है तो मैं गुनगुनाता हूँ ये गीत।

कार्यक्रम का ये मेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है बसारी दरवाजा छतरपुर से राकेश वर्मा और पवित्रा वर्मा ने। आप लिखते हैं, दोस्तों इस समय भीषण गर्मी हो रही है, इस गर्मी में पशु पक्षी बेहाल हैं, उनको इस मुश्किल में पानी मुश्किल से ही मिल रहा है क्योंकि हर जगह पानी की व्यवस्था मुश्किल से ही हो पा रही है। सभी जीव जंतुओं को पानी मिले, इन सब का ध्यान रखना मानव का प्रथम कर्तव्य है। छतरपुर में जब भी मैंने इधर उधर देखा तो निःशुल्क प्याऊ लगे हुए हैं और केंद्र खुले हुए हैं। ऐसे अभियानों से मैं खुद जुड़ा और मैं अपने घर के बाहर एक प्याऊ स्वयं के खर्चे पर शुरू कर दिया। दोपहर शाम और सुबह मैं पानी भरता हूँ और निर्जीवों को पानी पिलाता हूँ। हम सबका परम कर्तव्य यही है कि हम दूसरों के काम आए और खासकर पानी और अन्न दूसरों को देते रहें, क्योंकि कबीर साहब भी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। यानी हमारे अंदर ही अच्छाई और बुराई है, इसलिए हमें अच्छाई को देखना है और खूब दान और पुण्य करना है। जब भी मैं ऐसे विषय में सोचता हूँ तो मेरे होंठ गुनगुना उठते हैं। ये

श्रोताओं, ये था आज का जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम। आप सभी मेल और पत्रों के माध्यम से जुड़ चुके हैं और जुड़ सकते हैं, और इस कार्यक्रम में प्रत्येक शनिवार को सुबह 9:30 से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। और हमारा मेल आईडी है bhavdiyachhatarpur@gmail.com bhavdiyachhatarpur@gmail.com। श्रोताओं, akashvani@90 आकाशवाणी अपनी विशाल यात्रा के 90वें वर्ष में संचालित है। आप सभी आकाशवाणी छतरपुर के फेसबुक पेज आकाशवाणी छतरपुर और यूट्यूब चैनल आकाशवाणी छतरपुर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें आकाशवाणी छतरपुर से। इसी के साथ ही आज का जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम यहीं समेटने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र अहरवार को और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति।

0: सहयोग था राजेंद्र कुमार अहिरवार का और प्रस्तुति थी रविंद्र कुमार प्रजापति की। मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: 10 बजने जा रहे हैं, आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों सूरज मानो आग उगल रहा है। जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दोपहर होते होते सड़कें सुनसान नजर आने लगती हैं। गर्म हवाओं और लू से बचने के लिए लोग चेहरों को सूती कपड़ों से ढककर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि पानी की व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खासकर जिले के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। प्रशासन क्राउलर बोरिंग मशीनों की मदद से नए पेयजल स्रोत तैयार कर रहा है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूरी हो चुकी 5 नल जल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। दूसरी ओर जिले में गेहूं खरीदी का काम भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। प्रशासन किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के साथ साथ मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी कर रहा है। इस साल रबी सीजन में गेहूं बेचने के लिए जिले से 4738 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिले के 5 प्रमुख उपार्जन केंद्रों पर अब तक 1346 किसानों से 60,727 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। भुगतान की करीब 90% राशि यानी 14,42,00,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में भी पहुंच चुके हैं। बड़वानी शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत खास अभियान शुरू किया है। नगर पालिका की IEC टीम घर घर पहुंचकर लोगों से स्वच्छता को लेकर फीडबैक ले रही है। इसी बीच जिले में लाडली उत्सव की खुशियां भी देखने को मिली। जिले के 1815 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में लाडली बेटियों और उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया। वहीं शिशु मृत्यु दर को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। कलेक्टर ज्योति सिंह ने मामलों की गहन समीक्षा करते हुए मृत शिशुओं के परिजनों से सीधे बातचीत की। उन्होंने इलाज के दौरान आई परेशानियों, स्वास्थ्य केंद्रों पर मिली सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। न्याय व्यवस्था को आसान और त्वरित बनाने की दिशा में भी जिले में बड़ा कदम देखने को मिला है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में लंबे 384 मामलों में से 294 प्रकरणों का समाधान हुआ और करीब 4,82,00,000 रुपए से अधिक की राशि के अवार्ड पारित किए गए, जिससे 588 लोगों को राहत मिली। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला मुख्यालय स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 326 युवाओं ने पंजीयन कराया। विभिन्न कंपनियों ने 68 युवाओं का चयन किया। जिले की कलेक्टर ने जलगंगा संवर्धन अभियान और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फॉर्म पॉन्ड, अमृत सरोवर, डगविल और वाटरशेड डेवलपमेंट के कामों की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर 3 सब इंजीनियर्स का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान भी शुरू हो गया है। आयुष विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में रोज सुबह ऑनलाइन और ऑफलाइन योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के 27 केंद्रों पर लोग योग के जरिए खुद को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निवाली में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कृत्रिम हाथ पैर शिविर लगाया गया। शिविर में 28 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया, जिनमें से 13 लोगों को मौके पर कृत्रिम हाथ और पैर उपलब्ध कराए गए। जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल का दौरा भी चर्चा में रहा। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण किया। खास बात यह रही कि उन्होंने अधिकारियों के साथ कारों के लंबे काफिले की बजाय बस यात्रा की। ग्राम ओझर में आयोजित रात्रि चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इन सब के बीच जिले की बेटी स्नेहा दावदी ने बड़वानी का नाम देशभर में रोशन कर दिया है। स्नेहा जिले की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है, जिनका चयन भारत के अंडर-18 टीम में हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर नई उपलब्धि हासिल की। अब वे जापान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां भी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। मकान सूचीकरण और गणना का काम तेजी से चल रहा है। कई प्रखंडकों और पर्यवेक्षकों ने समय सीमा में 100% लक्ष्य पूरा कर मिसाल पेश की है, जिसके लिए शासन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। बड़वानी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

बड़वानी जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था शिवपाल सिंह सिसोदिया का और वाचन किया था दीपा सिंह ने। ये आकाशवाणी है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर। पेश है फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम गीत सागर।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए सबरंग कार्यक्रम के अंतर्गत मिश्रित संगीत। इसमें हम आपको सुनवाते हैं भजन, गजल, गीत, फिल्मी धुन और फिल्मी गीत। कार्यक्रम में पहले सुनवाते हैं पंडित गोपाल शर्मा और पंडित सुखदेव कुमार की आवाज में भजन।

0: अभी आपने सुना भजन पंडित गोपाल शर्मा और पंडित सुखदेव कुमार की आवाज में।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में गजल।

अभी आप सुने थे गजल आशा भोसले की आवाज में। अब आपको सुनवाते हैं इंदीवर का लिखा गीत मुकेश की आवाज में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सबरंग कार्यक्रम के अंतर्गत मिश्रित संगीत। इसमें हम आपको सुनाते हैं भजन, गजल, गीत, फिल्मी धुन और फिल्मी गीत। अभी आपने सुना इंदीवर का लिखा गीत मुकेश की आवाज में। अब आपको सुनाते हैं ऑर्केस्ट्रा पर बजाए किस्मत फिल्म के गीत की धुन।

अभी आपने सुना ऑर्केस्ट्रा पर बजाई किस्मत फिल्म के गीत की धुन। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में रजनीगंधा फिल्म का गीत। गीत लिखा है योगेश ने, संगीत दिया है सरील चौधरी ने।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

हेड दिखा पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा।

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है।
1: इससे पहले आप सुन रहे थे सबरंग कार्यक्रम। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोले रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को भूपेंद्र कुमार वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

0: अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में गिरफ्तार फिल्म का गीत। इंदीवर का लिखा गीत था, संगीत दिया था पप्पी लहरी ने। इस गीत को पसंद किया था गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श साधक अलौकिक चंसोलिया। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पमणि वर्मा, नौखिलाल वर्मा। जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सोनकर, पिंकी आर्यन, कृष्णा पीहू का। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहौकर, निर्मला नाहौकर, विशाल नाहौकर। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष महरकर।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम का अगला गीत के लिए फरमाइश लिख भेजी है गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से बबेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा का। हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से था ये पत्र। ग्रामा पोस्ट वेटखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। मोहल्ला हलवाई शेरकोट जिला बिंदौर से मोहम्मद बक्कर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर का। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का। हिंगोली महाराष्ट्र से शायजी बोरखे, श्रीमती नंदा बोरखे, हनुमान बोरखे, उत्तम जमदाड़े। और यह हमको मेल प्राप्त हुआ है अनूप कुमार राजपूत, हिमांशु, भूपेंद्र राजपूत और इनके समस्त परिवार के लोग। कृपया मेल में अपना एड्रेस भी लिखें। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह राजपूत, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत का। पलवणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगे संघई, प्रीति संघई और पूरा संघई परिवार के लोग। शाहजीनगर देगरुज जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। ग्रामा पोस्ट तीतरा खरीदपुर जिला जालौन उत्तर प्रदेश से अंजलि जाटो, ऋषि जाटो। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि, रुद्रानी और कृष्णा केवट।

पड़वाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवीदीन अहिरवार, सुनीता, दिनेश कुमार, कपिल और पूजा वर्मा का अस्पताल लौट। केंद्रीय विश्वविद्यालय जिला सागर मध्य प्रदेश से चंदेश गोहर, श्रीमती बन्ना गोहर, मयंक एवं तन्वी गोहर का धाम। मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर मट्टू, संगीता मट्टू, हर्षित और वैभव मट्टू। गायत्री मोहर पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से शिवरान पांचाल, देवरान पांचाल, लक्ष्मी प्रसाद, प्रीति, नीतू, विनय, नेहा, सत्य, मोहिनी गुड्डी और अंकुश पांचाल का। गोना कुसमार थाना सोजना तहसील मेहरौनी जिला ललितपुर से दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, रामदेवी नामदेव, चाहना और अनन्या नामदेव। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कुली नंबर वन फिल्म का गीत कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज में। समीर का लिखा गीत है और संगीत है आनंद मिलन का।

जो भी श्रोता लाइव प्रोग्राम में अपने पसंद का गीत सुनना चाहते हैं आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है air छतरपुर 1976@gmail.com।

श्रोताओं, हमें गर्मियों में अपना ख्याल भी रखना है, अधिक से अधिक मात्रा में पानी भी पीना है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है क्योंकि हम इंसानों ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, उसका हर्जाना हम सभी को भुगतना पड़ेगा। कार्यक्रम की अगली पेशकश की है, लिखा है मेल पर रोनमी चचेरी छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी का। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसार और नरगिस खातून। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। ग्राम मामना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। और यहीं से सुनना चाहते हैं साधु बाबा, बीरन सिंह तोमर, संजय, दीपक और सोनू तोमर। अलीगंज, जिला एटा, उत्तर प्रदेश से दीपक शाक, ज्योति शाक और सक्षम शाक। भाटीपुरा, मोहब्बत प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज और आयुषी। ग्राम पीपर रोड, सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। रघुनाथपुरा, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। रामचबूतरा, कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शाविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुमना और एस मंसूरी। ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम, राजवाड़े। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुर में रोटी फिल्म का गीत। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना अश्वनी और विपुल कामड़े। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और बिलेस डिकेस्ट्रो। सर्विस से जुगल किशोर पटेल, शोभा सिंह, उत्कर्ष पटेल, उन्नति पटेल, प्रमोद पटेल, गीता पटेल। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, प्रगति नाचानी, मिथिल नाचानी, बाबू भाई और भारती देवी। सिंघाई नदी छतरपुर से राकेश दास कबीरपंथी, महंत बाबूदास साहेब, महंत धर्मदास साहेब, महंत सुखदेव दास साहेब, स्वामी प्रसाद दास कबीरपंथी, रामस्वरूप दास साहेब और कपूर सिंह घोष और रागनी घोष का। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंदेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। सकतपुर रोड जिला गुना मध्य प्रदेश से कमल सिंह कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, गोलू कृष्णा सेवा, बरसाबाई, पूनमबाई और मोहिनी कुशवाहा। ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद, लाल मोहम्मद, जाबिद खान, नजीर खान, सितारा खान, मौसमी अंजुम और मोहम्मद दिलसान पठान का। आप सबकी फरमाइश पर सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अपना देश फिल्म का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत बुद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

acá. गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि, शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य और कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीला, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू और नेहर का वंश बत्ता, बोरखेरा पिडामल जिला उज्जैन से विनोद मूनत, कुमारी नेहा जैन, दीपक मैंग मूनत, चेतन नाहटा, दीक्षा परी मूनत, बटेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटोदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, पेमलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी, तृप्तिश देवांगन, सनावाद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, मुरादाबाद से अयुब खान, इरम गुड़िया, सोएब खान और नाविद खान। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं रजिया सुल्तान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी का लिखा गीत है, संगीत खयाम का।

इस गीत को पसंद किया है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और श्री रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनमा दीवा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर, अभियानंद आर और परमानंद आर, सारिमपुर बक्सर से राज एच डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दिन के 11 बजे हैं। अब सुनिए

0: फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज हम बात करेंगे जिंदगी की किताब के उन पन्नों की जो भरे हुए हैं जज्बातों के रंग से, जिनमें शामिल होता है प्यार का रंग, मस्ती का रंग, खुशी का रंग, नाराजगी, दुख, दर्द, दूरी और दोस्ती का रंग भी। और इन रंगों पर कहीं गाढ़ी स्याही ढुलक जाती है तो कभी रोशनी का रंग बिखरता है, मगर हम नहीं रुकते और ना ही जिंदगी रुकती है। अपनी रफ्तार से जीने के लिए चलती चली जाती है, चलती चली जाती है और हम भी चलते रहते हैं उसी के साथ। तो आज इन रंगों के एहसास को आप बांटेंगे, बयां करेंगे मेरे साथ। मैं हूं आकांक्षा, आपके साथ कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। तो श्रोताओं, देर किस बात की है, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और साझा कीजिए इन एहसासों से जुड़े कुछ किस्सों को, बातों को हमारे साथ। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता कॉलर से। हेलो जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: जी जी बिल्कुल, बात आपकी गीत हमारी।
1: जी बोले, तो आज हमारा टॉपिक है कि हमारी जिंदगी की जो किताब होती है वो कई तरह के रंगों से भरी होती है। उसके हर पन्ने पे एक अलग ही रंग होता है, जिसमें प्यार का रंग होता है, मस्ती का रंग होता है, खुशी, दुख, दर्द, जुनून, दोस्ती का रंग भी उसमें शामिल होता है। तो हम ये चाहते हैं कि आज आप अपने जज्बात के इनमें से किसी भी रंग के एक एहसास के साथ जुड़ा अगर कोई आपका किस्सा है तो वो हमसे साझा कीजिए। पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं?
2: गांधी पार्क मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, दीदी मनोज नामदेव।
1: मनोज जी नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
2: बस दीदी बढ़िया है, आपका कार्यक्रम रेगुलर सुनते रहते हैं। बिल्कुल दीदी, और कहें कि आकाशवाणी भोपाल से तो हमारे श्रोता अपार प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बताया अब कैसे बता दूं मैं आपको।
1: वो हम आपके जज्बात समझते हैं, इसीलिए तो आज का विषय यही है कि अपने जज्बात के रंग का कोई उससे जुड़ा हुआ किस्सा या उससे जुड़ी हुई कोई बात हमसे शेयर कीजिए।
2: बिल्कुल दीदी, आपको मैं छोटा सा वाक्य बता दूं
1: जी।
2: कि दीदी जब मैं कहें कि छोटा था
1: जी,
2: तो इतना समझदार नहीं था, लेकिन मैं अपने जो पापा जी के साथ बैठा करता था, मेरे पापा जी क्या करते हैं सिलाई वाली जो मशीन चलाते हैं दीदी
1: जी,
2: तो आपका जो रेडियो स्टेशन है वो सुनते रहते थे। तो पहले भोपाल भी आता था और हमारे पास में शिवपुरी है वो भी आता था और हमारे पास में झांसी भी है वो भी सुनते थे। तो मैं सुनता रहा, बहुत दिन सुनता रहा, पर मेरे मन में एक कहें कि एक जिज्ञासा जगी कि इसमें ऐसा क्या होता है कि इसमें बढ़िया तो समय समय पर गीत आते हैं और समय समय पर इसमें कहें कि समाचार भी आते हैं और आज दिख रहे हैं तो आज इसमें मैच भी आ रहा है
1: जी।
2: तो मैं सोचता रहा, अब मेरे मन में एक जुनून से पैदा, उस दिन से ऐसा हुआ कि मैंने अब मन में ठान ली या आपका क्या कहें कि कसम खा ली, कुछ भी मान लो, तो उस दिन से जुनून ऐसा पैदा हो गया, ऐसा जुनून सवार हो गया मेरे ऊपर कि जब तक मैं सुबह से शाम तक रेडियो अगर मैं अपने शॉप पर हूँ तो सुनता ही हूँ, अगर शॉप पर भी नहीं हूँ तो कहीं भी हूँ, रेडियो बिना मेरे को चैन नहीं पड़ता।
1: बहुत अच्छी बात है। और आपको एक बात बताएं कि ये जो जुनून वाला एहसास है ये एक ख्वाहिश होती है कि आपने ये बना लिया है कि हाँ मुझे रेडियो सुनना है, और ये ख्वाहिश, ये जुनून बारिश की उन बूंदों की तरह होती है मनोज जी, कि जिसे पाने की चाहत में हम तो भीग ही जाते हैं और वो जो प्यास है वो बरकरार रहती है, या ये कहें कि बढ़ जाती है। अब आपको भी वो प्यास रहती होगी कि अब हमें सुनना है कि अब हमारे रेडियो में कौन सा प्रोग्राम आने वाला है।
2: बिल्कुल दीदी, और बताना चाहती कि अगर मैं रेडियो से नहीं जुड़ता तो काश अभी जहाँ हूँ वहाँ मैं नहीं पहुँच पाता। आधे से ज्यादा तो भूमिका रेडियो की है कि आज मैं यहाँ तक हूँ, कहीं कि इतने श्रोता है मेरे, इतने श्रोता है कि अगर मैं चाहकर भी श्रोताओं से अगर मिलता या उनसे बात करता तो मेरा कहीं कि जिंदगी निकल जाती, लेकिन श्रोताओं से

0: कभी मुलाकात या बातचीत नहीं हो पाती। इसलिए मेरे जिंदगी में रेडियो का इतना महत्व है, इतना महत्व है कि अगर मैं अपने मुंह से बताऊं तो शब्द कम पड़ जाएंगे।
1: वो हमें आपकी बातों से समझ में आ रहा है मनोज जी, आपको बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है रेडियो से, और हम चाहते हैं कि आपका ये प्रेम हमेशा बरकरार रहे। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
0: अगर आपका आकाशवाणी भोपाल की जितनी भी अनाउंसर हैं, अगर सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं को, तो आखिरी सांस तक रेडियो में छोड़ूंगा ही नहीं।
1: बिल्कुल, हम चाहेंगे भी नहीं कि आप छोड़ें हमारा साथ, लेकिन आशीर्वाद हमारा नहीं, ईश्वर का रहता है, हमारा तो साथ है आपके साथ,
0: बिल्कुल
1: ना, जो हमेशा बना रहेगा। मनोज जी, आपने कार्यक्रम में फोन किया, इतनी अच्छी बात हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीदी, आपको भी, सभी टीम को
1: जी।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, परिचय दीजिए अपना।
1: दीदी मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: बाबू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद दीदी आपको।
0: जी, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बातों के रंग की। हमारे जीवन के जो जज्बात हैं, जो एहसास हैं, कभी प्यार का, कभी खुशी का, कभी हमें दुख होता है, कभी दर्द होता है, तो आज हम जानना चाहते हैं आपके एहसासों से जुड़ा कोई वाक्या, कोई किस्सा या कोई बात जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं।
1: ये देखिए, अगर जीवन में जज्बात नहीं है
0: जी
1: तो जीवन का मतलब भी नहीं रहेगा। जज्बात तो होना चाहिए किसी बात का भी।
0: जी बिल्कुल सही
1: तो
0: बात है ये।
1: जज्बातों से जीवन में एक ऊर्जा मिलती है,
0: जी
1: तो हमें जज्बात को रखना चाहिए। और रह मुझे जज्बात जो है अपने देशभक्ति के लिए, ईमानदारी के लिए है। मैं ईमानदारी में विश्वास करता हूँ दीदी। मैं दुकानदार हूँ
0: जी,
1: तो मुझे ये जज्बात है ईमानदारी का।
0: बहुत बढ़िया।
1: हाँ,
0: ये
1: मैं अपने ग्राहकों से हमेशा ईमानदारी से बात करता हूँ। उनके प्रति मैं बहुत मतलब प्रेम रखता हूँ, चाहे वो कुछ भी रहे, मतलब मैं उनसे प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मेरे भगवान हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये मेरा जज्बात है कि मैं उनसे प्रेम रखता हूँ और इसी बात से वो मुझसे खुश भी रहते हैं।
0: जी तो यहाँ ये खुशी का एहसास है आपका, आपकी ईमानदारी में छुपा हुआ।
1: जी, कभी मैं बार्गेनिंग किसी बात में नहीं करता हूँ। सामान मांगा तो बोल देता हूँ भाई मांगा है,
0: जी
1: अब आपकी इच्छा लो ना लो, लेकिन मैं कभी बार्गेनिंग नहीं करता हूँ
0: जी
1: कि कुछ कम दे दो, कुछ कुछ किसी को बार्गेनिंग कर दो, ऐसी बात नहीं है। तो ईमानदारी मेरा जज्बात है।
0: जी और इस ईमानदारी के जज्बात से आपको खुशी मिलती है।
1: जी दीदी, बहुत खुश रहता हूँ। मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़ता है, मैं ईमानदार हूँ
0: जी
1: तो मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़ता कि मैंने कल क्या किया था क्या नहीं किया था।
0: जी तो ये जो खुशी है ना बाबू यादव जी, ये बहुत बड़ा रंग है, बहुत महत्वपूर्ण रंग है हमारे जीवन का।
1: जी दीदी बिल्कुल, मैं उसी तो नाम से जाना जाता हूँ, वो
0: जी
1: अगला ईमानदार है।
0: और ये ऐसा जज्बात है, इसकी तलाश में सारी दुनिया लगी हुई है, और अगर
1: जी
0: इसको
1: दीदी
0: हम
1: बिल्कुल,
0: सही ढंग से ढूंढेंगे ना तो ये हमें हर कहीं मिल जाएगी। बस हमारे नजरिए का फर्क होता है और उस पर निर्भर
1: हाँ हाँ
0: करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, सबका अपना अपना नजरिया है।
0: जी तो आपने अपना ये ईमानदारी वाला एहसास हमसे बांटा, इसके लिए बाबू यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जय बजरंग रेडियो सोता था बस ट्रेन बंडा पे लेके लक्ष्मण को चाय वाले बोला दीदी काफी पी लो।
0: आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉफी ऑफर की। जी, आप अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए।

0: लक्ष्मण देखो राव, हमने कही वेदी दी है, काफी पीते हैं, आप तो चाय पी लो।
1: हम चाय कॉफी सब पी लेंगे, आप इतने प्रेम से हमें पूछ रहे हैं तो हम भला ना कैसे कहेंगे लक्ष्मण जी।
0: हाँ
1: जी तो आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और
0: हाँ
1: इसका
0: जी
1: विषय हम आपको बता देते हैं। आज इस कार्यक्रम में बिखरे हैं जज्बात के रंग, हमारे जीवन से जुड़े हर एक जज्बात का एहसास, जो प्यार का हो सकता है, खुशी, दर्द, आपको कभी किसी ने तकलीफ दी हो तो उससे जुड़ा हम कोई किस्सा या कोई बात अगर आप हमसे बताना चाहते हैं उसे साझा कीजिए।
0: हाँ ये तो सही है। क्या हमारा छोटा भाई है जो मंजिला भाई, वो बिलर गया था थोड़ा, अब तो सही हो गया भगवान जी, बहुत परेशानी गई है। हाँ तो उसमें दिक्कत भाई है बहुत ज्यादा।
1: हाँ, तो आप उस समय तकलीफ में रहे होंगे।
0: हाँ बहुत ज्यादा तकलीफ में, 1-2 साल,
1: जी
0: अब तो सही लेन पे आ गया है। एक दुकान बंद भी करना पड़ी थी उसके पीछे ना,
1: अच्छा,
0: 3 दुकानें थी, तो ये अब 2 बच्ची हैं।
1: तो जब परिवार को देखना होता है उसमें कहीं कुछ परेशानी होती है तो अपने ही तो साथ देते हैं लक्ष्मण जी,
0: हाँ ये तो सही है।
1: है ना। और आप लोगों की लगन और मेहनत रही होगी उनको ठीक करने में कि वो आज ठीक हो गए हैं, है ना। तो
0: हाँ
1: ये
0: जी
1: देखिए जीवन है तो सुख दुख सब कुछ लगा हुआ रहता है हमारे
0: हाँ,
1: साथ।
0: सुख दुख आया जाएगा और जाएगा, चलता रहता है।
1: जी क्योंकि
0: अब
1: ये
0: पहले
1: जो
0: बहुत हमने भी क्या है, बहुत तकलीफ में रहे, पटी पेंट पे रही, सब पे रही, दूसरे के काम भी किया, मगर अब भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया है।
1: बहुत
0: अच्छा करोगे काम तो भगवान भी देगा साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जीवन की जो किताब है ना उसमें अगर एक तरफ खुशी रहती है तो कहीं ना कहीं दर्द तकलीफ से भी हमारा सामना होता ही है, और उस ये पल हमें मिलते हैं कि हम कैसे उससे बाहर निकलते हैं, कैसे उनको संभाल पाते हैं हम। जी और आपने संभाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमसे इतनी बड़ी बात साझा की उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण
0: ठीक है
1: जी।
0: दीदी, नमस्कार।
1: नमस्ते, नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। क्या हम जान सकते हैं हमारी बात किससे हो रही है?
1: बिल्कुल जान सकते हैं। मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ।
0: जी, मैं हूं आकांक्षा
1: अच्छा, आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया
0: जी।
1: बढ़िया। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बातों के एहसास की। हमारे जीवन में जो भी जज्बात हैं, प्यार का, दुख दर्द, खुशी, दोस्ती, जुनून, इन सब से जुड़ा अगर आपका कोई किस्सा है या कोई बात आप हमसे बताना चाहते हैं, वो हमसे साझा कीजिए।
1: तो बताइए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बोलने की। क्या बताया आपने? जी
0: देखिए, हमारा जो जीवन है उसमें कई तरह के रंग होते हैं। रंग मतलब
1: जी
0: एहसासों के रंग, जिसमें
1: जी
0: शामिल होते हैं प्यार का रंग, खुशी का रंग। कई बार
1: जी
0: हम पहली बार कुछ काम करते हैं या कोई हमें ऐसा मिल जाता है जिससे मिलके हमें बहुत खुशी होती है, तो वो हो गया
1: जी जी
0: खुशी का रंग। तो
1: जी
0: ऐसा कोई रंग आप साझा करना चाहते हैं हमारे साथ तो वो बताइए।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत बढ़िया आपने विषय रखा है। और जो विषय रखा है ये बिल्कुल हमारे आपसे ही लिमिटेड है, जो है जैसे हमारा आपका आकाशवाणी का नाता है। हम आपको नहीं जानते थे, आप हमको भी नहीं जानते थे, तो
0: जी
1: एक आकाशवाणी के माध्यम से जो है हम आपको जानते हैं और जितने श्रोता हैं उनको भी हम जानते हैं। बहुत अच्छा लगता है।
0: जी
1: और ये जान परिचय जो है केवल हमारी आकाशवाणी की ही देन है और उसी आकाशवाणी की वजह से ही हम सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं।
0: ये तो हो गई आकाशवाणी की बात कि आकाशवाणी से आप जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे आपको प्यार है, उससे बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनते हैं उसके जरिए। लेकिन हम जानना चाहते हैं आपके जीवन के एहसास का रंग। कभी
1: अच्छा
0: कोई ऐसी खुशी आपको मिली है या कभी किसी ने ऐसा चोट पहुंचाई है कि आप अंदर से टूट गए हों, आपको अच्छा नहीं लगा हो, तकलीफ है? क्योंकि जीवन में तो ये सब लगा हुआ रहता है ना।
1: हाँ हाँ जी, बात सही है बिल्कुल। बिल्कुल मुझे जो खुशी मिली है जीवन में वो शायद आप कहेंगे तो वो रेडियो से ही मिली है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और मुझे जितनी खुशी और जितना आनंद रेडियो सुन के आता है वो शायद कहीं नहीं आता है।
0: जी, ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे श्रोता ऐसे हैं।
1: जी जी जी जी बिल्कुल। मुझे बहुत आनंद आता है रेडियो के माध्यम से। जब मैं रेडियो सुनता हूँ, रेडियो के बारे में जब सोचता हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद मुझे रेडियो से ही मिलता है।
0: जी, फूलचंद पाल जी,
1: जी
0: देखिए, ये जो खुशी हमें मिलती है ना, तो ये ऐसी खुशी होती है मानो जिसे हम ढूंढ रहे थे वो यही है।
1: जी
0: और
1: जी
0: वैसे भी जिंदगी में आवाज देने वाले हमें बहुत मिल जाते हैं, मगर हम
1: जी
0: ठहरते वही हैं जहां अपनेपन और खुशी का एहसास होता है ना।
1: क्या बात, क्या बात है,
0: और
1: बहुत अच्छी बात।
0: मुझे आपसे बात करके यही लग रहा है कि आपकी

0: वो खुशी, आपका वो एहसास आकाशवाणी ही है।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी
1: मैं बता दूं जो है मैं आकाशवाणी से लगभग लगभग जो है बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरा जो मेरी मन में जो खुशी है, मेरे मन में जो आनंद है वो आज भी निकम हुआ है, बहुत ज्यादा है।
0: और हम चाहेंगे ये कभी कम ना हो, आपका ये आनंद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप हमसे जुड़े, हमसे इतनी अच्छी बात की, अपना एहसास हमसे साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मनोज विश्वकर्मा, ग्राम पनारी, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: मनोज विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी,
0: आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बात के खूबसूरत एहसास की, वो जज्बात जिनसे हमारी जीवन की किताब का हर एक पन्ना भरा हुआ है। जी, उसमें आप जानते ही हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी दुख होता है, तकलीफ होती है, कभी उसमें दोस्ती का रंग शामिल होता है। तो हम चाहते हैं कि आपका कोई एक ऐसा एहसास या कोई ऐसी बात हमसे साझा कीजिए जो आपके मन को छू गई हो या आपको कभी कुछ ठीक ना लगा हो, किसी भी तरह की बात।
1: मुझे तो ऐसा है जैसे कहीं जब कहीं बाहर जाते हैं या कहीं से किसी से मिलते हैं अजनबी व्यक्ति से,
0: जी,
1: तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति अपने से इतना खास या ऐसे जुड़ जाता है
0: जी,
1: जैसा अपन कभी सोचते भी नहीं थे कि इस प्रकार का व्यक्ति मिलेगा कभी।
0: जी
1: जी,
0: तो आपसे कभी ऐसे किसी व्यक्ति की मुलाकात हुई है?
1: हाँ, ऐसा हमारे एक मित्र है बिहार का, एक तो उससे हमारी ऐसी पहली दफा मुलाकात हुई थी और एकदम मुझे इतना वो हमारा करीबी बन गया,
0: जी,
1: अपने परिवार जैसा हो गया।
0: मतलब वो अजनबी थे और फिर आपके करीबी हो गए,
1: जी,
0: तो इस एहसास से आपको दोस्ती का रंग मिला,
1: जी जी
0: खुशी मिली। तो हालांकि वो आपसे बहुत दूर हैं, बिहार के आपके दोस्त हैं, तो है तो दूरी बनी हुई है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार भी है।
1: जी बिल्कुल
0: जी, आपने हमसे इतना अच्छा एहसास साझा किया, उसके लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, मेरी बात कैसे हुई मैडम?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ
1: जी, आकांक्षा
0: जी। नमस्ते
1: नमस्ते।

0: हेलो, नमस्कार
1: जी नमस्कार। जी
0: नमस्कार। आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
1: जी जी जी जी
0: हम जानना चाहेंगे हमारी बात किससे हो रही है।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी
0: राकेश जी, शिमला से
1: जी
0: बहुत
1: जी जी
0: दूर से आपने हमें फोन लगाया है।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के, क्योंकि जो मुझे सबसे ज्यादा आकाशवाणी भोपाल का मुझे फोन करके सुने उतना पसंद नहीं था जितना ये जो है बात आपकी गीत हमारे, ये पसंद क्यों होता है इस पे जो है अपने विचार रखने का अधिक अवसर मिल जाता है, तो इस पे मैं ज्यादा जुड़ता हूँ इस प्रोग्राम में।
0: बहुत बढ़िया। तो आज हमारा जो विषय है वो भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज कार्यक्रम में बिखरे हैं जज्बातों के रंग।
1: जी।
0: जज्बात जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, तो आप अपना कोई भी एक एहसास हमसे साझा कर सकते हैं, उस बारे में बता सकते हैं।
1: जी जज्बातों के जी जी जी बिल्कुल।
0: जी
1: तो मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जज्बातों के जो रंग होते हैं
0: जी
1: इस, क्योंकि मैं अपनी बात कहूँ तो अपने जीवन का मेरा एहसास ये है कि मैंने कभी अपने लाइफ में ये नहीं सोचा कि कभी जज्बातों पे मैंने अपने अपने पर हावी नहीं बन गया। कैसे हावी नहीं बन गया कि जैसे कि कई लोग मेरे से मित्र मिले हैं
0: जी
1: तो उनने मेरे को ऐसी बात कही जो वो बात टूटने वाली थी,
0: हाँ, मतलब आपको तकलीफ पहुंचाई बातों से।
1: मतलब कैसी तकलीफ, उनका कहने का मतलब था कि भाई अभी तो शायद आपके जो है माता पिता है अभी आपको सब आपके कर लेंगे कोई सेवा पानी, जब माता पिता नहीं होगी फिर क्या होगा, तो ऐसा क्या बोला गया था। तो मैं सुनता रहा
0: जी
1: इस चीज को,
0: जी
1: तो मैंने इस चीज को गौर से सुना, तो मैंने क्या किया कि मैं इनको जो है बोलने दो, क्योंकि बोलने वाले तो बोलेंगे, हमें अपने लक्ष्य पे खड़े उतरना चाहिए, क्योंकि बोलने वाले क्या नहीं बोलेगी, तो मैं इस चीज पे कभी तो मैंने इस चीज को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलत बात को
1: गलत
0: अगर
1: बात
0: हम अपने
1: को
0: ऊपर हावी होने
1: अगर,
0: देंगे तो नुकसान हमारा ही होता है।
1: क्योंकि ऐसा क्यों बोलते लोग, देखो अब देखो लोग अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं किसी की, तो ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए, कि ऐसा बोलना चाहिए कि चलो हम बाकी कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे, हम कुछ आपके लिए कर सके, तो आपको इच्छा होगी जानने की कि ऐसा क्या हुआ आपका जो ऐसा लोग बोल रहे हैं।
0: अगर आप बताना चाहते हैं तो
1: तो
0: बताइए।
1: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ, तो बचपन से ब्लाइंड हूँ, तो लोग जब मैं जब कोई भी आते थे अरे पूछते थे कि भाई इनको कब से दिखाई देता, मैं कहा बचपन से, तो लोग बोलते हे भगवान ऐसा क्यों किया, और बाकी तो चलो ठीक है अभी तो आप लोग करेंगे तो फिर बाद में क्या होगा, तो मैंने सोचा कि बाद में जो होगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन हम बाद के लिए हम अपने आज आज को जीना है, ना कि कल के लिए, कल के बारे में सोचते हैं कि कल क्या होगा, कल जो भी होगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन अभी हम जो आज में जी रहे हैं तो हम बड़ी खुशी से जी रहा हूँ मैं, बढ़िया से आज आकाशवाणी केंद्र से आपके माध्यम से लोगों से दोस्तों से बात हो रही है और अपने विचार बांटने का अवसर हमें मिल रहा है
0: राकेश जी,
1: कि
0: आपकी ये बहुत अच्छी सोच है कि हमें आज में जीना है, आगे जो होगा देखी जाएगी।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी को बोलता हूँ जितने मेरे ब्लाइंड साथी है, कई बार आकाशवाणी लखनऊ पे है भोपाल में कहते रहते हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ मैं घर पे पड़ा रहता हूँ, मैं ये कह रखता हूँ कि आप ऐसा मत बोलो कि मैं घर पे पड़ा रहता हूँ,
0: जी
1: जो भी है अब आज आज में जियो कि कल की, अब ये मत सोचो कि भगवान ऐसा क्यों किया, जो भी किया है कहते ना कि भगवान एक चीज अगर छीनता है तो दूसरी चीज देते हैं, लेकिन हम

0: हेलो
1: नमस्ते कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए।
0: गोविंद जलोदिया खाटेगांव। बस
1: गोविंद जी कैसे हैं आप?
0: ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही है।
1: जी गर्मी तो है, मौसम गर्मी का है तो गर्मी तो होगी।
0: अरे पर बहुत ज्यादा ही मतलब है।
1: देखिए हम इंसान क्या होते हैं ना, ठंड होती है तो कहते भगवान कितनी ठंड है, अभी गर्मी है तो गर्मी में भी हम परेशान हैं। अच्छा आज कार्यक्रम चल रहा है बात आपकी गीत हमारे,
0: हाँ
1: इसमें हम बात कर रहे हैं जज्बातों के रंग की।
0: हाँ
1: हम आपसे कोई एक ऐसा किस्सा या कोई ऐसी बात जानना चाहते हैं जिसने कभी आपको बहुत खुशी दी हुई हो या दिल को छू गई हो, या कभी किसी की बात से आपको बुरा लगा हो जिससे आप कह भी नहीं पाए, ऐसी अगर कोई बात है तो वो हमसे साझा कीजिए गोविंद
0: वो
1: जी।
0: जो है मेरे को अभी तक याद आ रही है कि मेरी शादी हुई थी और मैंने वो पिक्चर है नी चुपके चुपके देखी थी। मतलब चोरी चोरी पिक्चर थी वो, तो
1: जी
0: पर चुपके किसी को मालूम नहीं पड़े, मतलब ऐसा।
1: अच्छा, चुपके चुपके आपने चोरी चोरी मूवी देखी थी।
0: हाँ
1: अच्छा आपकी
0: तो
1: शादी
0: उसमें फिर
1: वाले
0: वो
1: दिन।
0: गाना भी था मन भावन के घर जाए।
1: तो ये था आपके जीवन का एक खुशी वाला किस्सा जो जुनून से भरा हुआ था। ठीक है, आपने इतना अच्छा।
0: दीदी से भी अपन बात करते हैं नहीं तो उनको बड़ा वो रहता है कि यार वो बड़ा सिनेमा का बड़ा वो। मैं वैसे दीदी मैं सिनेमा में नौकरी करता था,
1: अच्छा बहुत अच्छा
0: खातेगांव में भी मैनेजर रहा मैं टाकीज में।
1: जी। ठीक है गोविंद जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और इसी के साथ फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 11:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत 1,32,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी की फसलें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। किसानों को ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस और आधुनिक तकनीक की मदद दी जाएगी। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रूपये का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21,00,000 का राष्ट्रीय सम्मान और 5,00,000 के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई है। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को 9,522 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने आज उज्जैन पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती दर्शन में दर्शन लाभ लिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश का पहला गीत ये रहा। फरमाइशी नाम और बाकी की जानकारियां गीत के बाद।

अमर अकबर एंथोनी फंक का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश का गाया हुआ। धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल थे आनंद बख्शी के। सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी साथियों ने, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश, इनकी चिट्ठी आई है। और अगला खत लिख भेजा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, अस्मा, सालिया, शोएब, पोतरा, मुस्तफा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई। साथ में है गांधी बाग आकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इन सभी दोस्तों की फरमाइश हमने पूरी की और अब हम पूरी करने जा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता और कीसु तासु भगत। डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी, अनिष्का और तन्मय गजभिये ने कार्यक्रम के अगले गीत को सुनना चाहा है।

ऐ दिल है मुश्किल। इस फिल्म का गीत आपने सुना, धुन बनाई थी प्रीतम ने, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, आवाजें थी अरिजीत सिंह, बादशाह जोनिता गांधी और नक्श अजीज की। और अब हम पूरी करने जा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, सरोजनी और कुंती साहू, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता जी का गाया हुआ ये गीत।

इस गीत को रचा है गुलजार ने, संगीत तैयार किया है विशाल ने, फिल्म का नाम सत्या।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का वो नगमा जिसे गाया है भूपेंद्र सिंह ने, खयाम के संगीत निर्देशन में बोल हैं निदा फाजली के। और सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक की आर

साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, प्रभाकर जोंघले और आरती जोंघले ने इस गीत को सुनना चाहा है गौतम नगर जिला नांदेड़ से। श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित आर्य ने ये चिट्ठी लिख भेजी है गोल बाजार बक्सर से। इन दोस्तों की फरमाइश ये रही।

0: वक्त के। और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 पर भी आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से दोपहर के 12:25 होने जा रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

12:30 हुए हैं। ये समय है संग्रहालय से का। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं पंडित विष्णु शर्मा की मूल अमर कृति पंचतंत्र पर आधारित कहानियां। आज इसकी तीसरी कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार श्रोतागण, आशा है आप सब सकुशल हैं एवं पंचतंत्र की महान कथाओं को सुनने के लिए व्यग्र होंगे, तो हम भी प्रस्तुत हैं। पिछली कथा में आपने सुना कि किस प्रकार अपने ही पैरों पर दमनक ने कुल्हाड़ी मारी। संजीवक और पिंगलक की मित्रता से सभी पशुगण दुखी थे। अब दमनक ने योजना बनाई कि किस तरह दोनों को अलग करें। करकट के संदेह करने पर दमनक ने कहा कि अगर योजना सुनियोजित हो तो वो अवश्य सफल होता है, जैसे कौलिक की कथा।
1: किसी नगर में कौलिक तथा रत्कार नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही गांव में रहते थे। एक बार समीप के नगर में बड़ा सा मेला लगा, वो दोनों भी मेला घूमने गए। विभिन्न नटी नर्तक एवं चारणों से पूरा मेला सुशोभित था। अनेक देशों से आए दर्शनार्थी भी थे। तभी कौलिक ने सामने से एक विशाल हाथी पर चढ़कर एक अद्भुत सर्वलक्षण संपन्न सुंदरी राजकन्या को आते देखा। उसे देख उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया, होश खोकर धरती पर गिर पड़ा।
2: मित्र कौलिक उठो, क्या हो गया है तुम्हें? ये दशा कैसे हो गई तुम्हारी? तुम्हारे माथे पर भी पसीना आ गया है। उठो मित्र, उठो।
3: पानी, पानी, पानी।
2: ये लो पानी, लो लो। आराम से बैठो। कुछ स्वस्थ महसूस कर रहे हो?
3: हाँ मित्र, स्वस्थ तो हूँ, पर चैन नहीं है।
2: तुम इस तरह अकस्मात बेहोश कैसे हो गए?
3: मित्र, यदि तुम जानना ही चाहते हो तो मेरे दुख को सुनो। अगर तुम मुझे अपना मित्र समझते हो तो मेरी चिता सजाने का प्रबंध कर दो मित्र।
2: ये क्या कह रहे हो मित्र? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने का उपाय अवश्य करूंगा।
3: नहीं मित्र, नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे दुख का कोई उपाय हो सकेगा। बस अब तुम विलंब न करके मेरे क्रियाकर्म की तैयारी करो।
2: मित्र कौलिक, चलो क्षण भर के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि तुम्हारा कष्ट असाध्य है, फिर भी एक बार तो मुझे बताओ, जिससे अपने को अक्षम मानकर मैं तुम्हारे साथ अग्नि में प्रवेश हो सकूं, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा।
3: सुनो मित्र, हाथी पर बैठकर जो कन्या मेले में दिखाई पड़ी थी, उसे देखने के बाद से ही कामदेव ने मेरी ये दशा कर दी थी।
2: ओ,
3: मैं उस राज कन्या के वियोग कष्ट को सहने में असमर्थ हूँ। मैं उसे अपनी बाहों में भींचना चाहता हूँ और जानता हूँ यह असंभव है, अनुचित है, परंतु क्या करूँ? कामाग्नि से जल रहा हूँ, क्या करूँ मित्र, क्या करूँ?
2: मित्र, यदि इतनी सी बात है तो समझो भाग्य से हमारा कार्य बन गया। आज ही उसी राजकन्या से तुम्हारा मिलन हो सकता है।
3: क्या क्या कह रहे हो रत्कार? जिस अंतापुर में वायु को छोड़कर किसी का जाना संभव नहीं, वहाँ राजकन्या से हमारा मिलन कैसे?

0: संभव? कहीं कहीं तुम मेरा परिहास तो नहीं कर रहे हो मित्र?
1: नहीं नहीं मित्र, अब तुम देखो मेरी बुद्धि का चमत्कार।
2: और फिर कौलिक को सांत्वना देकर रथकार ने उसी क्षण वरुण वृक्ष की लकड़ी से दो भुजाओं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, किरीट तथा कौस्तुभ से युक्त एक यंत्र संचालित गरुड़ का निर्माण किया। फिर उस गरुड़ पर विष्णु के रूप में कौलिक को बैठाकर उसे यंत्र संचालित करने की विधि को दिखाते हुए कहा,
1: इस यंत्र द्वारा रात्रि के समय तुम अंतःपुर में प्रवेश करके अपने वाक चातुर्य से अपने को नारायण के रूप में प्रस्तुत करो।
2: रथकार की बात को सुनकर कौलिक विष्णु रूप में राजकन्या के महल में जा पहुंचा।
3: कौन कौन है वहां झरोके पर?
4: मैं विष्णु हूँ। राजपुत्री, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं क्षीर सागर में लक्ष्मी को छोड़कर चला आया हूँ। मेरे साथ परमानंद का अनुभव करो सुंदरी।
3: भगवान भगवान, मैं क्या इतनी भाग्यवान हूँ? मुझे आपके दर्शन हुए, परंतु मैं मनुष्य योनि की हूँ, आप पवित्र हूँ, और आप तीनों लोकों में सबसे पवित्र हैं, वंदनीय हैं, अतः आपसे मेरा मिलन कैसे हो सकता है प्रभु, कैसे?
4: सुंदरी, तुम ठीक कहती हो, किंतु तुम मेरी गोप कुल से उत्पन्न राधा हो, मेरी प्रथम स्त्री हो। अब तुमने यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया है, इसलिए तो मैं भी यहाँ चला आया।
3: यदि यही बात है तो भगवान चलिए, हम पिता महाराज के पास चलते हैं, वे सारी बातें जानकर प्रसन्नता से मुझे आपके हाथों में सौंप देंगे।
4: प्रियसी, तुम्हारा कथन उचित है, परंतु अगर तुम्हें मुझ पर संदेह है तो चलो प्रिय, हम गंधर्व विवाह कर लेते हैं, और यदि फिर भी तुम प्रस्तुत नहीं हुई तो मैं तुम्हारे पिता का सपरिवार सर्वनाश कर दूंगा।
3: प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, आप क्रोधित ना हो प्रभु, आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
2: राजकन्या ने कौलिक से गंधर्व विवाह कर लिया, और उस दुष्ट कौलिक ने उसका कामदेव के शास्त्र के अनुसार उपभोग किया। प्रातः काल होने पर दूसरों की दृष्टि पड़ने से पहले ही अपने घर को लौट गया। अगले दिन पुनः राजमहल गया। इस प्रकार उस राजकन्या के साथ रहते हुए कौलिक का समय आनंद से बीतने लगा। शुरू शुरू में तो राजमहल में किसी को उसके आवागमन की भनक भी नहीं लगी, परंतु धीरे धीरे दास दासियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। कंचुकियों ने भी राजकन्या के खंडित अधर को देखकर आपस में खुसुर पुसुर करना प्रारंभ कर दिया।
5: अरे शैला, क्या मैं जो देख रही हूँ तुमने भी वो देखा?
6: अरे अरे, तनिक धीरे बोलो, कहीं ये बात महारानी के कानों में चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। वैसे मैंने तो ये पहले ही भांप लिया था, अब तो राजकन्या के अंगों में पुरुष साहचर्योत्तर लक्षण है।
5: परंतु मुझे ये समझ नहीं आता, चारों ओर से सुरक्षित इस अंतापुर में ऐसी घटना कैसे संभव है?
6: देखो कंचुकी, मुझे लगता है कि हमें महारानी को इस घटना से अवगत कराना चाहिए। वो हम पर कितना विश्वास करती हैं, हमें उन्हें अंधकार में नहीं रखना चाहिए।
5: मुझे तुम्हारी बातें ठीक लगती हैं। चलो, अब विलंब करना व्यर्थ है,

0: महारानी की जय हो।
1: शैला कहो क्या संदेश लाई हो?
0: क्षमा चाहती हूँ महारानी, समझ में नहीं आता कि कैसे कहूँ, परंतु आपको सूचित करना भी आवश्यक है।
1: ऐसी क्या बात है, जो भी कहना है निर्भय होकर कहो, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है।
2: बात ये है कि हमने अपनी आँखों से तो कुछ नहीं देखा, परंतु कुछ संदेह है कि अंतापुर में राजकन्या के पास कोई पुरुष प्रवेश करता है। आपकी आज्ञा क्या है?
1: ये क्या कह रही हो, ऐसे लग रहा है मेरे कानों में किसी ने गर्म सीसा उंडेल दिया हो।
0: महारानी हो सकता है कि ये सब सत्य ना हो।
1: मेरे पैरों के नीचे से धरती फिसल रही है
2: महारानी,
1: मगर ये बात सत्य है तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे महाराज को सूचना देनी होगी।
0: महारानी
3: असंभव, ये कैसे हो सकता है रानी, हमारी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती। ओह, अब क्या होगा, किस दुष्ट ने ऐसा कर्म किया, क्या उसे अपने प्राणों का तनिक भी भय नहीं? ओह, कन्या का पिता होना सचमुच दुखदाई है। चलिए महारानी, हम अभी राजकन्या से यथार्थ की जानकारी लेते हैं।
4: प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री।
1: पापिन, कुल कलंकनी, इस प्रकार तूने अपने शील का खंडन क्यों किया?
3: कौन है वो जो अपने प्राणों के मोह को छोड़कर इस दुर्ग समान अंतपुर में आने का दुस्साहस करता है?
1: बोल, सत्य बोल।
4: आप क्रोधित ना हो, अपनी पुत्री पर विश्वास रखें। आपके दिए संस्कार मैं भूली नहीं हूँ। माँ, यहाँ आने वाला पुरुष कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात विष्णु है। वही प्रतिदिन रात्रि के समय गरुड़ पर चढ़कर यहाँ आया करते हैं।
3: क्या कह रही हो पुत्री, ये कैसे संभव है, स्वयं नारायण यहाँ आते हैं? आपने हमें इस बात की जानकारी पहले क्यों नहीं दी, हम भी प्रभु के दर्शन कर लेते।
4: नहीं पिता महाराज, उन्होंने हमें निषेध किया था, मेरे अलावा वो किसी को दर्शन नहीं दे सकते, ना ही बात कर सकते हैं। मैं उनसे गंधर्व विवाह कर चुकी हूँ। पिताश्री, यदि आपको मेरी बातें असत्य लगती हैं, तो आज ही रात्रि में छिपकर आप स्वयं अपने नेत्रों से नारायण के दर्शन कर सकते हैं।
1: महाराज हम धन्य हो गए, आपकी भाग्य वृद्धि हो, साक्षात नारायण से हमारी कन्या ने गंधर्व विवाह किया है, ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है।
3: आप सत्य कहती हैं महारानी, आज हम दोनों भगवान नारायण को रात्रि में छिपकर खिड़की से देखेंगे।

0: महारानी, रात का पहला पहर तो बीतने को आया और अभी तक कोई नहीं आया है।
1: धैर्य रखे महाराज। वो देखिए महाराज, गरुड़ पर साक्षात विष्णु आकाश मार्ग से आ रहे हैं। वाह, अद्भुत।
0: हाँ महारानी, हम और हमारा कुल धन हो गए। इस ब्रह्मांड में मुझसे बढ़कर धनी और भाग्यवान कोई नहीं है। हमारी संतति का उपभोग स्वयं नारायण कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा। अब मैं सारे संसार का स्वामित्व लूंगा और सभी मेरे दास होंगे। मेरा जमाता स्वयं विष्णु भगवान है। सारे सीमावर्ती राजागण मेरे अधीनस्थ होंगे।

राजा तो उन्मादित हो गए, सभी राज्यों पर चढ़ाई करने लगे, सभी के साथ युद्ध छेड़ दिया और वीर राजाओं के हाथों परास्त होने लगे।

0: पुत्री, तुम्हारे जैसी कन्या और विष्णु जैसे जामाता के रहते हैं, क्या यह संभव है कि राजागण मुझसे युद्ध करें और मुझे किले में बंदी बनाने का दुस्साहस करें? तुम जामाता से कहो कि मेरे शत्रुओं का विनाश कर दे, नहीं तो कल सूर्य उदय तक वो हमारे दुर्ग को नष्ट कर देंगे।
1: जी पिताश्री,

0: सुंदरी, रात्रि के इस मधुर बेला में तुम्हारा साथ कितना आनंददायक है। परंतु तुम शांत क्यों हो? कोई चिंता?
1: भगवान, भगवान आपके रहते मेरे पिता शत्रुओं से घिरे हुए हैं। ये कैसे संभव है? आप कृपया उनके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश कर दीजिए प्रभु।
0: सुभगे, तुम्हारे पिता के शत्रुओं की संख्या ही कितनी है? तुम निश्चिंत रहो, मैं क्षण मात्र में अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनको तृण की तरह छिन्न भिन्न कर डालूंगा।
1: हाँ भगवान, हाँ, आप नहीं करेंगे तो उनकी सहायता और कौन करेगा? कल प्रातःकाल दुर्ग में विनाश हो जाएगा प्रभु। दुर्ग के अंदर ईंधन रसद समाप्त हो चुके हैं। मेरी अवस्था देखिए, मेरी अवस्था को देखते हुए आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें।
0: सोचता हूँ दुर्ग के टूट जाने पर तो राजकन्या भी छूट जाएगी, ये तो और भी उत्तम होगा। मैं आयुध करुड़ पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से प्रकट हो जाऊंगा। संभव है कि मुझे वासुदेव समझकर शत्रुपक्ष भयभीत हो जाए और राजा की सेना उसे परास्त कर दे, और अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो क्या? प्रिय, मेरे रहते तुम्हारी आंखों में आंसू, ये मेरे लिए असहनीय है। अब मैं तभी तुम्हारा दर्शन करूंगा जब संपूर्णतः शत्रुओं का विनाश हो जाए। तुम अपने पिता महाराज से कहो कि प्रातःकाल वो सेना के साथ निकलकर शत्रु पक्ष से युद्ध करें। मैं आकाश से उनके शत्रुओं को निस्तेज कर दूंगा, वे आसानी से परास्त हो जाएंगे।
1: प्रभु, प्रभु,
2: कौलिक के वचन को सुनकर राजपुत्री ने अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया। पुत्री की बात को सुनकर राजा बड़े प्रभावित हुए। उधर कौलिक भी शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को लेकर गरुड़ पर चढ़कर आकाश मार्ग से युद्ध करने के लिए चल दिया। उधर एक मजेदार घटना घटी। त्रिकालदर्शी ने ध्यान लगाकर सारी घटना जान ली। उन्होंने गरुड़ से कहा,
3: हे गरुड़, क्या तुम्हें विदित है कि कौलिक काट के गरुड़ पर चढ़कर मेरा रूप धारण करके राजकन्या के पास जाया करता है?
4: हाँ देव, मैं उसके प्रत्येक कृत्य को जानता हूँ। उसका साहस अद्भुत है, परंतु अब क्या किया जाए?
3: मरने का निश्चय करके प्रतिज्ञाबद्ध होकर वह कौलिक आज युद्ध क्षेत्र में गया है, और यह निश्चित है वह आज वीर क्षत्रियों के हाथ से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होगा।
4: किंतु भगवान, उसके मरने के बाद सभी लोग ये कहने लगेंगे कि क्षत्रियों ने मिलकर वासुदेव और गरुड़ दोनों को पराजित कर दिया। इस अपवाद के फैलते ही लोग हमारी अर्चना बंद कर देंगे। कोई उपाय कीजिए ना प्रभु।
3: आप सत्य कहते हैं गरुड़देव,

0: आप तत्काल जाकर उस काष्ठमय गरुड़ के शरीर में प्रवेश करें।
1: जी।
0: सभी शस्त्रों को सजग करके मैं भी कौलिक के शरीर में प्रवेश करता हूं, जिससे वो शत्रुओं का विनाश कर सके।
2: और फिर स्वयं नारायण एवं गरुड़ ने सारे शत्रुओं को क्षण भर में परास्त कर दिया। राजा और प्रजा दोनों धन्य धन्य होने लगे।

0: वाह, आनंद ही आनंद है। ये तो मेरे पूर्व जन्मों का फल ही है कि तीनों लोकों के स्वामी आज मेरे जमाता है। उनके कारण ही मैं सीमावर्ती राजाओं को परास्त कर सका। प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न है।
1: पिताश्री प्रणाम। आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब आपके जमाता आपसे मिलना चाह रहे हैं।
0: क्या, अहो भाग्य, अहो भाग्य, आज मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। प्रभु आइए, प्रभु पधारिए।
2: मुझे लज्जित न करें, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं।
3: और फिर कौलिक ने महाराज को शुरू से अंत तक सारी घटना सुना दी। कौलिक के सत्य कथन को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने सोचा, ये शत्रुओं का विनाश करने वाला वीर, इससे सुयोग्य दामाद हमें कोई नहीं मिलेगा। उसने राजकन्या से कौलिक का विवाह करवा दिया। दमनक ने ये कथा सुनाकर कहा कि षड्यंत्र सुनियोजित ढंग से किया जाए तो ब्रह्मा को भी ज्ञात नहीं होता।

आगे करकट और दमनक क्या करेंगे ये आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की तीसरी कड़ी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। भारत और यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच अबू धाबी में हुए। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रखी मां बागदेवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए दो चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे और हर चरण में सिर्फ एक आवेदन मान्य होगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

हिंदी मातृभाषा नहीं अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने वालों की भक्ति है। मैं पुनः दोहराती हूँ कि हिंदी मातृभाषा नहीं अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने वालों की भक्ति है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ आपकी बहन स्मृति और मैं लेकर आई हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें होंगी ढेरों बातें और संगीत। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कार्यक्रम महिला सभा। श्रोताओं, किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम मात्र से नहीं होती है, उसकी पहचान उसके कर्मों से, उसके स्वभाव से, उसके पहनावे से और उसकी भाषा से होती है। जब हम कभी बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ टूरिज्म को देखते हैं, तो उनके बिना बताए ही उनके पहनावे से और उनकी भाषा शैली से उनके निवास स्थान का अंदाजा लगा लेते हैं। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है, जिसका जन्म सदियों पूर्व हुआ है। हाँ, मौखिक भाषा तक पहुँचने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी रही है। हमारी हिंदी भाषा भारत की राजभाषा, सांस्कृतिक धरोहर

की संवाहक है। एकता का सूत्र है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक दर्जे पर आई और ये दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई। यह भारतीय संस्कृत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाती है और देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ती है। श्रोताओं, भारत की भाषाई विविधता हमारे देश सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है। हमारी भारतीय भाषाओं का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका इतिहास अत्यंत समृद्ध भी है। आइए अपनी भाषा के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। पहला, संवैधानिक स्थिति। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया। इनमें हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत एवं अन्य भाषाएं शामिल हैं। भाषाई परिवार। भारत की भाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जैसे गद्य भाषा एवं पद्य भाषा। हमारी भाषा पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखित हैं। ये पुस्तकें NCERT, ICSE या राज्य बोर्ड के तहत तैयार की जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम बनाना है और साथ ही व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने की कला सिखाती है। अब आइए बात कर लेते हैं भारतीय भाषा की पुस्तक योजना के बारे में। तो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री और पुस्तकों को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं इसके उद्देश्य। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ बनाना है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि छात्रों को उनकी अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे विषय की समझ बेहतर हो। अनुवाद और मूल लेखन इसके तहत अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। साथ ही क्षेत्रीय लेखकों को मूल सामग्री लिखने को प्रेरित किया जाता है। उच्च शिक्षा पर ध्यान। यह योजना विशेष रूप से इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और विज्ञान जैसे तकनीकों पाठ्यक्रमों की पुस्तकों को स्थानीय भाषाओं पर उपलब्ध कराने पर जोर देती है। डिजिटल उपलब्धता। पुस्तकों को न केवल प्रिंट रूप में बल्कि ईबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि दूर दराज के छात्र भी इसका लाभ उठा सके और अपनी भाषा का भी महत्व समझें। अपनी भाषा अपनी पहचान, यही है भारत की शान। श्रोताओं, हमारी बातें अभी और होंगी, उसके पहले सुनते हैं यह गीत जिसे आवाज दी है सुनिधि चौहान और करीना कपूर ने। A daughter is a daughter.

0: की परी।
1: तो इस गीत के बाद मैं स्मृति पुनः प्रस्तुत हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा में। श्रोताओं, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जब हमारे पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तब से आज तक आकाशवाणी जन जन तक देश विदेश की खबरों, संगीत, आवश्यक जानकारी व मनोरंजन करती आई है। आज भी बहुत से लोग हैं जो रेडियो को बड़ी ही उत्सुकता के साथ सुनते हैं। तो एक ऐसी ही श्रोता हमारे बीच हैं, पुष्पा सिंह जी, जो रीवा जिले के माँ गायत्री शक्तिपीठ की ट्रस्टी हैं, जिन्हें सुनते हैं एक भेंट वार्ता के माध्यम से। तो आइए सुने यह भेंट वार्ता।
2: श्रोताओं, आज हमारे बीच मौजूद हैं पुष्पा सिंह जी, जो कि रेडियो की बहुत अच्छी श्रोता हैं और आज भी रेडियो से इनका बहुत ही गहरा लगाव है। पुष्पा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्ते बहन स्मृति जी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रेडियो के लिए मुझसे कुछ जानना चाह रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी है। और रेडियो रेडियो के तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रेडियो की बात ही अलग थी। हम तो बचपन से रेडियो के इतने शौकीन थे कि कोई भी काम करते थे तो रेडियो ही चला के काम करते थे और आपका पता ही नहीं चलता था कि क्या हमारा काम पूरा हो गया। और हम बड़े प्रेम से सारे काम हमारे होते थे और खासकर महिलाओं के कार्यक्रम, महिलाओं के लिए जो आते थे। और मैं गीतों की बहुत शौकीन थी, चाहे वो फिल्मी हो चाहे भजन हो, उनको मैं बहुत अच्छे से सुनती थी और मैं बहुत शौक थी। हालांकि मुझे विविध भारती के तो सारे ही प्रोग्राम बहुत पसंद थे, चाहे बिना का गीत माला हो, चाहे हवा महल हो, हवा महल की कहानियां आज भी हम सुनते हैं, कभी भी मन हो जाता है। मैं टीवी के बजाय रेडियो को सुनना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे हमारे काम भी होते। टीवी तो हमको देखना पड़ता बैठ के, लेकिन रेडियो में हम काम भी करते रहते हैं और हम सब सुनते भी रहते हैं।
2: यानी कि इसमें कोई समय की बर्बादी नहीं होती है।
3: समय की हमारी बर्बादी नहीं होती है बहन, और जो है हमारे काम भी अच्छे से होते रहते हैं। और कई बार हवा महल का जो प्रोग्राम आता है, पुरानी जो छोटी

0: छोटी सी कहानी अपने पति पत्नी की आपसी वार्तालाप इतना मेरे को पसंद आता है और हम लोग उसके लिए बड़े बेकरार रहते थे। और बिना का गीत माला कौन सा गाना टॉप पे आएगा, आज ये कौन सा गाना, ये बड़ी उत्सुकता हमारे मन में रहती थी। और फौजियों के लिए फौजियों के लिए कार्यक्रम में वो भी बहुत पसंद था। मैं रेडियो की इतनी बड़ी प्रशंसक हूँ कि मैं क्या बताऊँ, कितनी तारीफ करूँ। हर प्रोग्राम ही उसके सब बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे समाचार हो, चाहे बिना का गीत माला हो, और चाहे हवा महल हो, या छोटी छोटी कहानियाँ हो, या महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम होता है उसमें तरह तरह के व्यंजन बनाना भी बताते हैं, तो बहुत पसंद आते हैं। कई बार हम लोग बहुत ट्राई करते थे कि आज ये आया है बना के देखते हैं, क्योंकि पहले जमाने में ये तो होता नहीं, गूगल तो होता नहीं था। तो हम रेडियो पर जो आती थी व्यंजन विधि उसको सुनते थे और फिर बनाने का प्रयास करते थे।
1: जी
0: तो बहुत अच्छा लगता था हमें, बहुत ही मतलब कहाँ तक मैं उसकी तारीफ करूँ। आज भी हम उसी तरह से रेडियो के प्रशंसक हैं, चाहे कितना ही भी आ गया है, जब यहाँ बहुत सारी चीजें आ गई
1: है, आया है,
0: लेकिन उसका मुकाबला
1: आज भी नहीं है।
0: आपसी बहनों की जो चर्चा होती है, जब दो बहनें आपस में बात करती हैं, तो लगता है कितनी अपनत्व है कितना। और फरमाइशी प्रोग्राम में गांव-गांव से टीवी में कहाँ आता है, गांव से आज भी हम जब सुनते हैं ना फरमाइशी प्रोग्राम, तो जो बताते हैं ना, हम तो किसानी का काम करते हैं, हम तो सिलाई का काम करते हैं, हम तो खेत में बैठ कर रेडियो सुन रहे हैं, तो इतना अपनत्व तो लगता है कि हम पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। फरमाइशी प्रोग्राम जो है उसमें जो आता है, इतना अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है कोई ये सब अपने जुड़े हुए हैं, सब हमारे ही है, कहाँ कहाँ से कितना जाते हैं, अपने अपने पत्र भेजते हैं, कितनी खुशी होती है जब उनके पत्र मतलब पढ़ते हैं,
1: पढ़े जाते हैं हमारे नाम पढ़े जाते हैं, तो
0: बहुत खुशी होती है। मैं भी पहले बहुत पत्र लिखती थी, एक आध बार मेरा भी नंबर आया है, और मैं भी पहले रेडियो में प्रोग्राम देती थी, तो गीत में भी मैंने प्रोग्राम दिया है अपना, और चर्चा में वैदिक संस्कृति के ऊपर भी मेरा एक प्रोग्राम हुआ था कि भारतीय नारी जब और अब, इसमें हमारा प्रोग्राम हुआ था। तो रेडियो का तो कोई वो ही नहीं है,
1: बिल्कुल
0: तोड़ नहीं है, चाहे कितना भी आधुनिकता आ जाए और कितना ही हो जाए, लेकिन रेडियो हमारे लिए आज भी उतना ही आवश्यक है और बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे किसी काम पर उससे इफेक्ट नहीं पड़ता,
1: बिल्कुल
0: नहीं पड़ता है, चाहे हमारे काम भी चलते रहते हैं और हम सुनते भी रहते हैं।
1: बिल्कुल पुष्पा जी, आपने अच्छे से जानकारी दी, आप वाकई में रेडियो की एक अच्छी श्रोता हैं, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की खुशी में आज आपसे हमारी बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी।
0: मेरी तरफ से भी बहन स्मृति बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके उत्सुकता को व्यक्त कर सकूं और आपके लिए कुछ थोड़ा सा अपना समय दे सकूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो बहनों, अभी हमने सुनी है भेंटवार्ता जिसमें बात कर रही थी पुष्पा सिंह जी। श्रोताओं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है भारतीय भाषा के बारे में, तो हमारी भाषा का कोई तोड़ तो नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी हर प्रांत की, हर क्षेत्र की भाषा की अपनी अलग पहचान होती है, एक रस होता है, और साथ ही भाषाओं में और अधिक रस कब पड़ता है, जब कोई लेखक या शायर अपने शब्दों में या भाषा को मिश्रित करता है, तो लोग मंत्रमुग्ध होकर भाषा का आनंद लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही शायरा सकीला बानो भोपाली के बारे में, जो शायरा होने के साथ साथ कवयित्री और मंच संचालिका भी थी। उनका जन्म 1940 में भोपाल में हुआ था। वो खास तौर पर उर्दू शायरी और मुशायरों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुत के लिए जानी जाती थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे उस दौर की पहली मशहूर महिला शायरों में से एक थी, जिन्होंने बड़े बड़े मुशायरों में मंच संभाला और अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज, अंदाज और हास्य से भरी शायरी लोगों को बहुत पसंद आती थी। सकीला बानो भोपाली ने देश विदेश के कई मुशायरों में भाग लिया और उर्दू साहित्य को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें मुशायरों की मलिका भी कहा जाता है। उनकी शायरी में प्यार, समाज, महिलाओं की भावनाएं, जिंदगी के अनुभव झलकते थे। वे कई फिल्म

फिल्मों एवं रेडियो कार्यक्रमों से भी जुड़ी रही। आइए सकीला बानो के बारे में कुछ और सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। सकीला बानो को कम उम्र में ही संगीत और शायरी में रुचि थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही शायरी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी कव्वाली को केवल धार्मिक मंचों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मनोरंजन और सामाजिक संदेश का माध्यम भी बनाया। उनकी गायकी में उर्दू शायरी, सूफी अंदाज और हल्का भी शामिल होता था। वो अपनी तेज आवाज, आत्मविश्वास और मंच संचालन के लिए मशहूर थी। चूंकि उस दौर में महिला का मंच तक पहुंच पाना एवरेस्ट चोटी तक पहुंचने से कम नहीं था, इसलिए उनके रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें आईं। लेकिन सकीला बानो हार न मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से लोगों का मन जीता और महिला कलाकारों के लिए नई राह बनाई, और इस तरह लोगों के मन में अपनी छाप छोड़ने के बाद सन 2002 में सकीला बानो की मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी लोग सकीला बानो को बड़े सम्मान से याद करते हैं। तो आइए हम भी उनके सम्मान में सुनते हैं ये कव्वाली।

बहनों, गर्मी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। तेज धूप और चुभती गर्मी ने इंसान का हाल बेहाल किया है। घर से बाहर निकलना दुर्लभ होता जा रहा है। ऐसे में हमें खुद की सुरक्षा का ध्यान बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे को सफेद कपड़े से ढक कर रखें और पानी की बोतल साथ रखें। और हाँ, धूप से लौटने पर एक सांस में ज्यादा पानी ना पिएं, थोड़ा थोड़ा करके पिएं। साथ ही मसालेदार खाने से थोड़ा परहेज करें और ठंडक वाले भोजन को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे दही, छाछ, खीरा, ककड़ी, नींबू, पुदीना, खिचड़ी या मूंग दाल, बेल का शरबत आदि। इसी कड़ी

में हम आज जानेंगे मुनगे की कढ़ी बनाने की विधि। तो सबसे पहले जान लेते हैं कढ़ी को बनाने की सामग्री। सामग्री है एक कप खट्टा दही, दो तीन चम्मच बेसन, दो साबुत लाल मिर्च, राई छोटा चम्मच, मुनगा 8-10, हल्दी, सरसों का तेल, मेथी, करी पत्ता, लहसुन व नमक। अब आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले मुनगे को छीलकर छोटे छोटे लगभग 2-2 इंच के टुकड़े कर लें और तेल में फ्राई कर लें। अब एक बर्तन में दही, बेसन व पानी का मिश्रण तैयार करें। इसके बाद कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गर्म करें और राई, मेथी दाना, साबुत लाल मिर्च, लहसुन तथा हल्दी का तड़का लगाएं। तड़का ठीक से सुनहरा हो जाने पर दही बेसन के मिश्रण को भी कढ़ाई में डालें और अंदाजे कि मिश्रण न ज्यादा गाढ़ा हो और न ज्यादा पतला, और बड़े चम्मच से धीरे धीरे चलाते रहें। कढ़ी में उबाल आने पर मुनगे के टुकड़े को डाल दें, साथ ही स्वाद अनुसार नमक भी डालें और ठीक से पकाएं। अब इसे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, यह दोनों में ही लाजवाब लगती है और सेहत से भरपूर होती है। खास करके गर्म के मौसम में मुनगे की कढ़ी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो बहनों, अंत में सुने एक और गीत जिसे आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

बहनों, अभी हमने सुना ये गीत जिसे आवाज दी थी शंकर महादेवन ने, और इसी गीत के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक दीजिए अपनी बहन स्मृति को इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोता बहनें अभी सुन रही थी कार्यक्रम।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मणिमाला सिंह और साथियों के गाये इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करती हुई एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है सुगम संगीत। कलाकार है मुकुल सोनी।

0: संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

शंकर जयकिशन के संगीत से सजा गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीत संगीत एक बार फिर हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन का। फिल्म है आरज़ू।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म आरजू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश नूली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत भी करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करनी होगी।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मरीजों के निशुल्क डेंगू और मलेरिया की जांच की जा रही है। जबलपुर में आज न्यायपालिका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश शामिल हो रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजनरी एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आधारित इस सेमिनार में न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर चर्चा की जा रही है। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग

0: के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में बोधशाला को राजा भोज के समय का वाग्देवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। सतना जिले के चित्रकूट में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के 37 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात में भी तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, धार और देवास सहित कई जिलों में तेज लू चलने की संभावना जताई गई है। विश्व कप T20 से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने शनिवार सुबह उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित अन्य खिलाड़ियों ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी सर्किल जेल के मुलाकाती क्षेत्र में लीगल एंड हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसमें बंदियों और परिजनों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी गंभीर अनुवांशिक रक्त विकारों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आज रायसेन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीबीएसई ने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब

0: 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत

0: के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम

0: के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश का पहला गीत आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज में। हसन कमाल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने। फिल्म है एतबार।

एतबार फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इसकी फरमाइश हमें सीतामणि बिहार से भेजी थी अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, रुबीना, आरिज, अरहान, हमजा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा की भी यही पसंद थी। इसी गीत को सुनना चाहा था बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद अजीज की आवाज में। इंदिवर की रचना है राजेश रोशन का संगीत और फिल्म है आखिर क्यों। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने। भागचंद साहू, अजय साहू, राज साहू, करिश्मा, प्रेमबाई और साहू परिवार के सभी सदस्यों ने राजेंद्र नगर गंज बासौदा विदिशा से ये पत्र भेजा है। खुरई तिगड्डा ग्राम कल्याणपुर वीर से फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं मनीष कुमार पाराशर, परी, आकांक्षा, राधिका, नीना, खुशी, प्रेम नारायण, हीराबाई, हेमंत, अभिषेक, मोहित, मयंक, अनीता, सविता, पूनम, रविशंकर, निरंजन, राकेश, मुकेश, तरुण, प्रवेश, नमन, पवित्र दुबे और उनके सभी साथी।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला गीत जगजीत सिंह की आवाज में। फिल्म राही के लिए इस गीत को लिखा है नक्शलायल पुरी ने। संगीत जगजीत सिंह का है और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला खां, नसीम बेगम, आयशा खां, हादिया, अस्मा, सालेहा, शोएब और उनके परिवार के सभी सदस्य। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेगी से भागवत वर्मा। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से एमएम राजावत, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और राजावत परिवार के सभी सदस्य। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत

और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत भूपेंद्र सिंह की आवाज में। फिल्म है एक नया रिश्ता। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। फरमाइशी पत्र प्रमिलागंज आलौट जिला रतलाम से आया है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की फरमाइश है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और हार्दिक और वंश बत्ता ने इस गीत को सुनना चाहा है। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की भी यही पसंद है।

एक नया रिश्ता। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की आवाज में। इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

कि समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। गृहमंत्री अमित शाह आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान श्री शाह विभिन्न समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए दो चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 37 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के हैग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नीदरलैंड

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जो आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। शाम 6 बजे का समय रहेगा आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का तीसरा भाग। इस विशेष भेंटवार्ता में आप सुनेंगे यादें, अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अनिल श्रीवास्तव से ली गई भेंटवार्ता।

7:21 का समय रहेगा ग्राम सभा कार्यक्रम का। 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 से चित्रपट संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:15 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। अब मीडियम वेव पर यह प्रसारण यहीं विराम पाता है। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इससे ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञान और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। और आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

मोबाइल ऐप प्रसार भारती न्यूज जोन IR और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में लीजिए सुनिए।

दोस्तों, आजकल ड्रोन सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत जरूरी हो गए हैं। ड्रोन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इसमें युवाओं के लिए ढेर सारे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम निवेश में अच्छी कमाई और तेज तरक्की संभव है। कैसे, जानते हैं हमारी आज की युवाणी में। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, ड्रोन का इस्तेमाल अब कई क्षेत्रों में हो रहा है। कृषि में किसान ड्रोन से दवा का छिड़काव करते हैं जिससे समय और पैसे दोनों बचते हैं। डिलीवरी कंपनियां भविष्य में ड्रोन से सामान पहुंचाने की योजना बना रही हैं। आपदा प्रबंधन में बाढ़ या भूकंप के समय ड्रोन से बचाव कार्य किया जाता है। इसके अलावा फिल्म निर्माण, रक्षा, निगरानी, मैपिंग और सोलर प्लांट जांच जैसे कामों में ड्रोन का बड़ा रोल है। तो इसमें क्या क्या जॉब्स मौजूद हैं, ये जानते हैं। दोस्तों, इसमें है ड्रोन पायलट, ड्रोन ट्रेनर, ड्रोन टेक्नीशियन और रिपेयरिंग, डेटा एनालिस्ट जो कि ड्रोन से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं, ड्रोन सॉफ्टवेयर डेवलपर, ड्रोन सर्विस कंपनी शुरू करने वाले उद्यमी। दोस्तों, भारत सरकार ने ड्रोन नियम 2021 बनाकर इस क्षेत्र को आसान बना दिया है। अब 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति DGCA से लाइसेंस लेकर ड्रोन उड़ा सकता है। कई ITI, पॉलिटेक्निक और प्राइवेट संस्थान सस्ते कोर्स चला रहे हैं। इसमें 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप जॉब या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कमाई की बात करें तो शुरुआत में 20,000 से

40,000 रुपए महीना आसानी से मिल सकता है। अनुभव के साथ 1,00,000 रुपए तक सैलरी या प्रति प्रोजेक्ट अच्छी कमाई संभव है। गांव कस्बों में भी कृषि ड्रोन सर्विस देकर आप अच्छा व्यवसाय चला सकते हैं, तो इसमें तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दोस्तों, 2025 से 2030 के बीच ड्रोन इंडस्ट्री भारत में हजारों करोड़ का कारोबार करने वाली है। इसलिए अगर आपको टेक्नोलॉजी, उड़ान और नई चीजें सीखना पसंद है तो ड्रोन क्षेत्र आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों, आज पढ़ाई के साथ साथ ड्रोन कोर्स करके आप खुद को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। मेहनत और सही ट्रेनिंग के साथ ये क्षेत्र न सिर्फ रोजगार देगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा भी बनाएगा। तो अब आप भी अपने ख्वाबों की उड़ान भरिए एलिसा मेंडोसा और मोहित चौहान के गाए हुए इस खूबसूरत गीत के साथ।

स्केल बैठाना। जब हम इन सबको संतुलित मतलब बैलेंस्ड रखते हैं तब हम स्वस्थ खुश और सफल रहते हैं। तो अगर आप भी हेल्दी हैप्पी और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इनमें सबसे पहले है आपकी फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य। तो रोज कम से कम 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करें, चाहे वॉकिंग हो, योगा हो या फिर जिम। साथ में अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। ज्यादा जंक फूड से बचें। रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। आपने सुना होगा, तन चंगा तो मन चंगा। इसके बाद आती है आपकी मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य। अब क्योंकि तनाव आजकल बहुत आम है तो रोज 10 से 15 मिनट ध्यान मतलब मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। बुक्स पढ़ें, म्यूजिक सुनें या अपना कोई शौक पूरा करें। और हाँ, निगेटिविटी से दूर रहें और छोटी छोटी खुशियों को इम्पोर्टेंस दें। अब है आपके काम और आराम के बीच का संतुलन मतलब वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, काम तो जरूरी है लेकिन काम के अलावा परिवार के साथ समय बिताएं, दोस्तों से मिलें और छुट्टियां मनाएं। ऑफिस के बाद फोन बंद करके परिवार के साथ डिनर करें। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है वरना बर्नआउट हो जाता है। आपके रिश्ते और सामाजिक जीवन मतलब रिलेशनशिप्स एंड सोशल लाइफ का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अच्छे रिश्ते हमारी जिंदगी को मजबूत बनाते हैं। माता पिता, लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ समय बिताएं और जरूरतमंदों की मदद करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। और ये सब होगा समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट से। आप हर दिन का प्लान बनाएं, जरूरी काम पहले करें और नहीं बोलना सीखें। दोस्तों, हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जीने वाले लोग ज्यादा एनर्जेटिक और क्रिएटिव होते हैं और बीमारियों से दूर भी रहते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वो अपनी लाइफ को मजे से जीते हैं। तो जब वो अपनी लाइफ को इतने अच्छे से जीते हैं, खुश रहते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करें। रोज एक नई अच्छी आदत डालें। सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश ना करें, बस कोशिश करें कि जीवन के हर पहलू को थोड़ा थोड़ा समय मिले, क्योंकि हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। जब हम बॉडी, माइंड, वर्क एंड रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखते हैं तब लाइफ मीनिंगफुल और जॉयफुल बन जाती है। तो आइए आज से ही हम सब मिलकर संतुलित जीवन मतलब हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाएं। और अब आपको सुनवाते हैं हिमेश रेशमिया और सुनील जी चौहान की खूबसूरत आवाज में ये मशहूर गीत।

दोस्तों, आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में संतुलित जीवन शैली मतलब बैलेंस्ड लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी हो गई है। संतुलित जीवन का मतलब है काम, आराम, स्वास्थ्य, परिवार और खुशी के बीच सही तालमेल।

0: और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं शिवांजलि तिवारी से आकाशवाणी के 90 साल होने पर हुई हमारी बातचीत के कुछ अंश।
1: मैं तो बचपन से ही इसके साथ बड़ी हूँ। पुराने जमाने में टीवी मोबाइल कुछ नहीं था, तब गांव कस्बे में आकाशवाणी ही सबसे बड़ा साथी था। मेरे दादाजी कहते थे, बेटा आकाशवाणी झूठ नहीं बोलता। आज के फेक न्यूज वाले समय में तो एक कितनी बड़ी बात है। 1947 की आजादी, 1962 का चीन युद्ध, 1971 की जंग, सब कुछ आकाशवाणी ने ही बताया। अब तो स्मार्टफोन आ गए, रील्स ने सब बदल दिया, लेकिन फिर भी आकाशवाणी का अपना स्वाद है। लोकल भाषाओं में कार्यक्रम, क्षेत्रीय गाने, संस्कृति, बातें, ये सब मोबाइल वाले एप्स में कहाँ मिलेगा। मेरी माँ अभी भी दोपहर को महाभारत ये पुरानी कहानियाँ सुनती है, शाम को युवावाणी, महिला सभा, चौपाल, गृहलक्ष्मी, यह सभी कार्यक्रम हमारा पूरा परिवार सुनता है। 90 साल में आकाशवाणी ने बहुत कुछ देखा है, ट्रांजिस्टर से लेकर अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तक, लेकिन जो चीज नहीं बदली है वो है विश्वसनीयता और भारतीयपन। आज भी दूर दराज के गांवों में जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा, वहां रेडियो आज भी राज करता है। 90 साल मुबारक हो आकाशवाणी। उम्मीद है अगले 90 साल भी आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहेंगे। आज इस तरह से आपसे बातें करके आपका हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
0: दोस्तों, अभी आप शिवांजलि तिवारी को सुन पा रहे थे, जिन्होंने आकाशवाणी को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की खूबसूरत आवाज में ये मशहूर गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ समय हो चला है हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मोरते चित्रकला के बारे में। दोस्तों, मोरते चित्रकला एक ऐसी कला है जिसमें कलाकार बिना जीवित चीजों के चित्र बनाता है। इसमें फूल, फल, किताबें, बर्तन, बोतल, खिलौने या घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को सजाकर उनका चित्र बनाया जाता है। इसे इंग्लिश में स्टिल लाइफ पेंटिंग कहा जाता है। ये चित्रकला मुख्य उद्देश्य वस्तुओं के आकार, रंग, प्रकाश और उनके छाया को सुंदर तरीके से दिखाना होता है। मोरते चित्रकला सीखने से बच्चों और कलाकारों की देखने और समझने की क्षमता बढ़ती है। जब कोई कलाकार किसी वस्तु को ध्यान से देखता है, तब उसे उसकी बनावट, रंग और आकार का सही ज्ञान हो पाता है। यही कारण है कि ये चित्रकला कला सीखने की शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस कला में सबसे इम्पोर्टेंट बात है संतुलन और सजावट। कलाकार पहले वस्तुओं को अच्छे से सजाता है, फिर पेंसिल से हल्की रूपरेखा बनाता है, उसके बाद रंगों का उपयोग करके चित्र को आकर्षक बनाया जाता है। प्रकाश और छाया का सही उपयोग चित्र को जीवंत बना देता है। दोस्तों, मोरते चित्रकला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये धैर्य और एकाग्रता भी सिखाती है। इस कला को बनाने में समय और ध्यान दोनों की जरूरत होती है, इसलिए मन को शांत करने में भी ये मदद करती है। आज के समय में स्कूलों, आर्ट कॉम्पिटिशन और प्रदर्शनियों में मोरते चित्रकला का विशेष महत्व है। कई कलाकार इस कला के माध्यम से अपनी कल्पना और रचनात्मकता को लोगों तक पहुंचाते हैं। कहा जा सकता है कि मोरते चित्रकला एक सरल, सुंदर और उपयोगी कला है। ये हमें साधारण वस्तुओं में भी सुंदरता देखने की प्रेरणा देती है और हमारी कला प्रतिभा को निखारती है। ये कोई आज की नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: कवि श्री राग तेलंग।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष के सफर पर आयोजित विशेष परिचर्चा, जिसका संचालन कर रही हैं आभा श्रीवास्तव। लीजिए प्रस्तुत है

0: एक विशेष परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं
1: कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हुए, यह यात्रा जो निरंतर चलती रही और हम यहाँ तक आ गए हैं। हमारी आकाशवाणी की यात्रा 90 वर्ष पूर्ण कर रही है। यहाँ परिचर्चा में आप सभी ने उपस्थित होकर जो अपनी एक पहचान कायम की है और इस परिचर्चा को स्पंदित किया है, उसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और अभी हम सभी से रूबरू होंगे तो आकाशवाणी के 90 वर्ष, एक युग, एक आवाज, एक विरासत, स्वर सरिता का प्रवाह है यह। भागीरथी प्रयास की तरह निरंतर प्रवाहित है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए, निर्माण, परिवर्तन, बदलाव, नवाचार, चुनौतियां और भविष्य। आकाशवाणी जो शब्द स्वर लहरी दूर दूर तक सुनाई देती है, स्वर कभी नहीं मरते, ध्वनि का जादू संपूर्ण सृष्टि में छा जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे आकाशवाणी नाम दिया था। आवाज दूर दूर तक जाती है, शब्दों की यात्रा है यह, इसे हर कोई महसूस करता है और आत्मसात करता है। आकाशवाणी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सबकी आवाज बन गई है और समाई हुई है मनो मस्तिष्क पर। प्रत्येक कर्मचारी, साहित्यकार, संगीतकार, समीक्षक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, तर्क वितर्क एवं प्रतिभाओं को उकेरती, शब्द चित्र खींचती तरंगायित ध्वनि एक सशक्त गरिमामय सुसंस्कृति के साथ आवाज के रूप में गुंजायित है आकाशवाणी, जिसके 90 वर्ष पूर्ण हुए, जो शताब्दी की ओर इस यात्रा में यहाँ तक पहुँची। इस आवाज को आज हम नमन करते हैं, स्वागत करते हैं और दूर तक ले जाने का प्रयास करेंगे, इसकी जीवंतता बनी रहे। भक्ति संगीत से प्रारंभ होता है, रेडियो अनेक बहुमूल्य कार्यक्रमों को समेटे हुए जन जन की आवाज बन गया है, विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों को समेटे हुए है, जैसे बुंदेली सुगंध हम यहाँ सुनते हैं अपने बुंदेलखंड में, इस तरह से बोलियों को भी रेडियो ने आवाज दी है, बोलियों की जीवंतता बनी हुई है। इसके योगदान और उद्देश्य को भुलाया नहीं जा सकता। युवाणी जो युवा की प्रतिभाओं को सहेजती है, जैसे कि महादेवी वर्मा जी ने भी कहा है कि चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है आकाशवाणी से। यह हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों की क्षमताओं को उभारती है। इसी के साथ नारी जगत है, नारी सम्मान कर उनकी प्रतिभाओं की पथगामी है। विज्ञान पत्रिका विज्ञान को प्रोत्साहन करता है, ऐसा प्रोग्राम है यह, और रोजगार कैरियर संबंधित कार्यक्रम प्रेरणाप्रद हैं, जो समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। देश दुनिया की खबरों से परिचित कराते कार्यक्रम हैं, समाचार हैं, कोने कोने से कोने कोने तक पहुंचाती आवाज। तो हम अब प्रारंभ करते हैं अपनी परिचर्चा, और इसके साथ हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न समाजसेवी, साहित्यकार और इसके साथ में अपार क्षमताओं को जो लिए हुए हैं।

0: हमारे छतरपुर के सशक्त हस्ताक्षर हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ पर चिकित्सक भी हैं, तो हर क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रतिभाएं हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार मैं इन सभी का नाम सामने लाती हूँ। हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी और व्यवसायी प्रकाश चंद्र जैन जी, समाज सेवी हैं आप, ये सभी समाज सेवी हैं हमारे बीच में। आदरणीय पंकज जैन जी, आदरणीय कवि अवनिंद्र खरे जी, आदरणीय डॉक्टर सुनील शर्मा जी, आदरणीय शंकरलाल सोनी जी समाज सेवी, आदरणीय के चतुर्वेदी जी डॉक्टर, आदरणीय आलोक टिकरिया जी समाज सेवी भी हैं आप, आदरणीय संजय शर्मा जी बड़े स्तर पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, आदरणीय आरपी कुरील जी आपका भी यहाँ बहुत ही गरिमामय प्रभाव है, आदरणीय दिल्ला राम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी की प्रतिभाएं बहुमूल्य हैं, आदरणीय इंजीनियर जेपी भट्ट जी भी यहाँ उपस्थित हैं और आदरणीय रामजी अग्रवाल जी उपस्थित हैं। विभिन्न प्रतिभाओं को लेकर आप सभी छतरपुर जिले के लिए बल्कि एक राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। आदरणीय काशीराम प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। आदरणीय उपेंद्र प्रताप सिंह जी लक्की यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी समाज सेवी हैं और भी बहुत से क्षेत्रों से आप सभी जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं आकाशवाणी के प्रभारी आदरणीय विनोद पुष्पत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। और इसके साथ अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी वार्ता। तो अभी तक तो मैंने इसके विषय में कुछ प्रकाश डाला है और अब हम अधिक वक्त ना लेते हुए सीधे मैं यहाँ पर आवाज देती हूँ यहाँ पर आदरणीय के चतुर्वेदी जी को कि आकाशवाणी से आप यहाँ जुड़े हुए हैं 50 वर्षों से, तो आप क्या अनुभव करते हैं, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे।
1: सबसे पहले मैंने रेडियो 1962 में देखा, हमारे घर में रेडियो नहीं था, चंद्रनगर ग्राम में हम रहते थे और वहाँ की पंचायत से चाइना वार युद्ध का जो विवरण होता था वो हम लोग पट्टी पे बैठ के सुना करते थे। फिर हमारे पिताजी ने रेडियो खरीदा और 1963 में हमने उसमें रेडियो में प्याज की खीर बनाने की विधि सीखी और उसके ऊपर हमारी और हमारी बहन की अच्छी पिटाई भी हुई थी। वो बन नहीं पाई थी, रेडियो से सीखी थी लेकिन वो बन नहीं पाई। उसके बाद फिर हम लोग छतरपुर आ गए और छतरपुर में सौभाग्य की बात है कि आकाशवाणी हमारी आदरणीय श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी साहब ने ये सैंक्शन लिया यहाँ पे। पहले ये झांसी में बनने वाली थी पर उनके प्रयासों से ये छतरपुर में आई और सौभाग्य की बात है कि यहाँ का जो ठेकेदार अग्रवाल साहब थे वो हमारे मकान में किराए से ही रहते थे, तो इसका बिल्कुल आंखों देखा, इसका जो निर्माण कार्य हुआ करता था रोज शाम को वो बताया करते थे। उसके बाद मैं पोस्टग्रेजुएशन करने के बाद मैं 1978 में सर्विस में आया और सर्विस में आने के बाद फिर मैं छतरपुर में जब आया तो यहाँ आकाशवाणी में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1984 से हम यहाँ आकाशवाणी से जुड़े हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में हम शिरकत करते रहे। यहाँ पर हमने यहाँ परिवार कल्याण के बारे में काफी अपने लेख प्रस्तुत किए, वैक्सीनेशन के बारे में काफी लेख यहाँ से प्रस्तुत किए और ये आकाशवाणी वास्तव में बहुत ही अच्छा माध्यम है प्रसार प्रचार का और लोगों को जागृत करने का बहुत बड़ा माध्यम रहा है। अब जरूर टेलीविजन आ गया और भी काफी ऐसी चीजें आ गई जैसे मोबाइल में ही आजकल काफी लोग व्यस्त रहते हैं, पर एक जमाना था जब केवल आकाशवाणी हुआ करती थी और लोग बड़े चाव से सुना करते थे। अभी भी लोग आकाशवाणी से और इनके म्यूजिक से प्रभावित रहते हैं और अच्छा काम करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर के चतुर्वेदी जी, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अभी आपने बहुत अच्छा इसमें एक चर्चा की और इसके साथ में अब मैं आमंत्रित करती हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्हें विचार पद्धति की तीव्रता जनमानस से जोड़ती है, आदरणीय आलोक टिकरिया जी जो समाज सेवी हैं।
2: जी धन्यवाद। आकाशवाणी का जो 90 वर्ष चल रहा है और छतरपुर में आकाशवाणी स्थापित हुए जो 76 में हुई थी, निश्चित रूप से इसकी जो क्रेज हुआ करती थी एक समय में बहुत ज्यादा थी, हर किसी को इनके कार्यक्रमों का इंतजार रहता था। जब मैं छोटा था ये 87-88 की बात है, तो यहाँ पे मैं

0: छोटे भाई बहन को, बहुत सारे बच्चों को लेके आता था। शुक्रवार एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, शायद शुक्रवार को रिकॉर्डिंग हुआ करती थी बच्चों की, और उसका रविवार को प्रसारण होता था। शाम को समय बाल भारती बाल सभा करके कुछ कार्यक्रम होता था जिसका बहुत इंतजार रहता था। इसी तरह से यहाँ पे जो मैच होते थे, यहाँ बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में बहुत यानी अपना नेशनल लेवल के जो फुटबॉल मैच हुआ करते थे उसकी कमेंट्री भी यहाँ पे आकाशवाणी छतरपुर के द्वारा प्रसारित होती थी, और जो भी मैच होते थे उनका प्रसारण आकाशवाणी द्वारा किया जाता था, जिसका हम सभी को इंतजार रहता था। अगर कभी उसमें भी मिलाने का सिस्टम रहता था, उसको लीवर से घुमा से आकाशवाणी केंद्र मिलाया जाता था, कभी सिग्नल नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही, तो उसको ऊपर नीचे आए तिरछा आड़ा वाड़ा करके और आवाज ताकि क्लियर रहे देखते सुनते थे। एक कार्यक्रम होता था 12 बजे के आसपास आता था, बहुत सुंदर सुंदर गाने आते थे, उसका हमेशा हर किसी को बहुत सारे लोगों को, चूंकि उस समय कुछ समय पहले अगर अपन जाए तो उस समय भी रेडियो भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था और आकाशवाणी ही केवल एक मनोरंजन का संसाधन था, तो उस समय जो फिल्मी गाने आते थे उसको बहुत चाव से लोग बाग सुनते थे देखते थे। इस तरह से जो आकाशवाणी का सफर, और आज मन जरूर बेहद दुखी होता है कि जो हमारे मनोरंजन का साधन रहा और जो आज वो सेकेंडरी में चला जा रहा है, कुछ गौण रूप धारण करता जा रहा है, और जो मोबाइल के माध्यम से सारे मनोरंजन के साधन है, लेकिन जो आकाशवाणी से जुड़े हैं, रेडियो से जुड़े हैं, वो उसकी उनके लिए आज भी उतनी ही महत्ता है जितनी पहले थी।
1: बहुत ही अच्छा, आदरणीय आलोक टिकरिया जी ने भी इसके संबंध में चर्चा की। तो आकाशवाणी को पूरी दुनिया ऑल इंडिया रेडियो AIR के नाम से जानती है, उसमें आज भी अधिकांश लोग रुचि रखते हैं। यह केवल एक रेडियो नेटवर्क नहीं है, ये भारत की आवाज है। उसमें समाहित घटनाएं, क्षमताएं, भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, रचनात्मक सभी परिस्थितियां उभर कर सामने आती हैं। जन जन तक पहुंचता है समाचार। 23 जुलाई 1927 से 2017 तक के 90 साल में इसके देश से जुड़े सभी कार्यक्रम, और इस तरह से देश के जन जन से जुड़कर सभी को जगाया, हंसाया, प्रतिकूल परिस्थितियों से अवगत करवाया, अश्रुपूरित भी किया और बनाया निर्माण का सुंदर सा महल और आस्थाओं के दिए स्वर। 1 लाख शब्दों में इसकी पूरी कहानी समेटना मुश्किल है, लेकिन हम इसके 9 दशकों के सफर की सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। शुरुआत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली। सिर्फ 2 से 5 घंटे प्रतिदिन प्रसारण, कार्यक्रम अंग्रेजी में अधिक भारतीय भाषाओं में कम हुआ करते थे। 1940 में आजादी की लड़ाई और विभाजन का दौर था, ये दशक AIR के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण रहा। दूसरा विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल का अकाल और देश बंटवारे से जूझ रहा था। मुख्य योगदान भी है इसमें, जो कुछ इस तरह से हैं, जैसे समाचार सेवा शुरू 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ AIR की न्यूज सर्विस बनी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से AIR के माध्यम से दिल्ली चलो का आह्वान किया था। 15 अगस्त 1947 में पंडित नेहरू जी का भाषण AIR से लाइव प्रसारित, यह आजाद भारत की पहली आवाज थी। अभी हम फिर आगे बढ़ेंगे, इसके साथ मैं यहाँ पर आवाज दे रही हूँ आदरणीय संजय शर्मा जी को।
2: आज हम अपने आकाशवाणी की एक तो गोल्डन जुबली मना रहे हैं आकाशवाणी छतरपुर की, और 90 वर्ष हमारे आकाशवाणी को हुआ है पूरे देश में। निश्चित ही एक गौरवशाली पल है हमारे लिए कि हम वहां निवास करते हैं, महाराज छत्रशाल की धरती पे, जहां की हमारी आकाशवाणी छतरपुर है। निश्चित ही इस आकाशवाणी ने हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी, चाहे बालक हो और चाहे वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए ये आकाशवाणी अपने कार्यक्रम प्रसारित करती है। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें ये आकाशवाणी के द्वारा, रेडियो के माध्यम से जो कार्यक्रम मिलते हैं वो बड़े विश्वसनीय रहते हैं। आज भी हम आकाशवाणी की जो न्यूज सुनते हैं बड़ी विश्वसनीय रहती है। कभी कभी टीवी की न्यूज जो देखते हैं और सुनते हैं वो इतनी विश्वसनीय नहीं होती है। कोरोना काल में

0: निश्चित ही जब फेक न्यूज का जमाना था, फेक न्यूज फेंकी जाती थी, तो हम आकाशवाणी के जो भी प्रसारण आते थे, चाहे वो चिकित्सीय मेडिकल के तौर पे हो या जो भी न्यूज आती थी, उस पर विश्वास करते थे। आज भी आंख मूंद पर, आंख बंद करके हम लोग आकाशवाणी के कार्यक्रमों और उनकी न्यूज पर, उनके प्रसारण पर पूर्ण विश्वास करते हैं। एक खुशी की बात है कि आज हम अपनी छतरपुर आकाशवाणी की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। और जब हमारे पिताश्री आकाश रेडियो सुनते थे, तो आप लोगों को ये अवगत करा दें कि उसकी पहले 7.5 रुपये और फिर 15 रुपये फीस लगती थी। यानी कि हम जब रेडियो रखते थे तो हमें उसका शुल्क भी देना पड़ता था कि तब हम रेडियो सुन पाते थे, लेकिन आज हमें ये बिल्कुल निःशुल्क सुनने मिलता है। और हमारी छतरपुर आकाशवाणी ने बहुत ही अच्छे लोक संगीत के क्षेत्र पर बड़े बड़े कलाकार दिए, साथ में कमेंटेटर भी दिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कमेंटेटर यहाँ से निकले हैं। और लोक संगीत क्षेत्र में इतने अच्छे कलाकार निकले जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम किया। और हमारी बुंदेलखंड की संस्कृति व्यंजनों को पूरे भारतवर्ष में इसको प्रसारित किया गया, और उसका आज आदमी पूरे भारतवर्ष में उसका स्वाद लेके बनाते हैं और रेसिपी जो कहते हैं अपन लोग उसका आनंद लेते हैं। तो निश्चित ही आकाशवाणी बहुता सुखाय बहुता हिताय का एक जो वास्तव में इसका मोटो है जो वो बहुत ही अच्छा है। और हम लोग खुश नसीब हैं कि हम लोगों को छतरपुर जैसे आकाशवाणी मिली है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आजकल समय बदलता है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, निश्चित ही समय के साथ चलना पड़ता है। पहले आकाशवाणी को टक्कर दी, प्रतिस्पर्धा दी टीवी ने, अब आजकल मोबाइल दे रहा है, इंटरनेट दे रहा है, और अब AI का जमाना आ गया है। तो निश्चित ही हमारी आकाशवाणी उन सभी प्रतिभाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। और हमें खुशी है कि आज हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं। और जब इसका उद्घाटन हुआ था तब भी मैं छोटा था, तब मैं आया था, और आज जब गोल्डन जुबली मना रहे हैं तब भी मैं उपस्थित हूँ। आपने हमें यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आदरणीय संजय शर्मा जी। जैसा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इसका मोटो है, अभी आपने इस पर प्रकाश डाला। और सच है कि इतनी विभिन्न क्षमताओं को लेकर, विभिन्न प्रकार के समाचारों को लेकर और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को लेकर जो आकाशवाणी चलती रही है, उसने बहुत कुछ झेला भी है। तो भागीरथी गंगा ऐसे ही नहीं उतरी और ऐसे ही अभी भी वह प्रवाहित नहीं हो रही है। प्रदूषण अभी भी उसके लिए चिंतन का विषय है। तो बंटवारे का दर्द हमारी आकाशवाणी ने भी झेला, पीड़ादायक समय के साथ उसे भी झकझोरा गया। 1947 में लाहौर, पेशावर, ढाका स्टेशन पाकिस्तान चले गए। भारत के पास केवल 6 स्टेशन शेष बचे। तो 1947 में AIR के पास 2,75,000 रेडियो लाइसेंस थे, अर्थात बहुत कम लोग श्रवण कर पा रहे थे। 1950 विविध भारती और राष्ट्र निर्माण का दशक था। आजादी के बाद AIR का मकसद बदला, अब ये सरकार की आवाज से जनता की आवाज बन गई। बड़े बदलाव इस तरह से भी रहे, जैसे 1995 में आधिकारिक नाम इसका दिया गया था आकाशवाणी, तो इसे आकाशवाणी नाम से अपनाया गया था और ऑल इंडिया रेडियो अंग्रेजी नाम बना। तो 3 अक्टूबर 1957 विविध भारती शुरू हुई और इसे तो सभी ने सुना ही है, इसका आनंद सभी ने लिया है। फिल्मी गानों पर से बैन हटा, ये AIR का सबसे लोकप्रिय चैनल बना। बिना का गीतमाला ने इतिहास रचा। तो इस तरह से भी इसकी एक बड़ी रोचक यात्रा रही है। अमीन सयानी की आवाज घर घर पहुंची। राष्ट्रीय कार्यक्रम 1952 में नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्ले शुरू। पूरे देश को एक सूत्र में बांधा गया। तो इस तरह से अभी हम और आगे बढ़ेंगे। और मैं यहाँ पर आवाज दे रही हूँ, स्वतंत्रता जो हमारी इसकी आकाशवाणी की एक पहचान है कि स्वतंत्र रूप से यहाँ पर सभी कलाकार आते हैं और हमारे भारत की जो स्वतंत्रता है उसका एक इतिहास रचते हैं और उसे फिर से वह उस जकड़न से पीड़ित ना हो, इसका प्रयास रहता है। और जो यह आकाशवाणी है, यह राष्ट्र की चेतना को जगाती है। तो अब हम इसके साथ यहाँ पर आमंत्रित करते हैं समाज सेवी आदरणीय शंकरलाल सोनी जी को, कि वो भी यहाँ पर अपनी कुछ बात रखेंगे।
2: छतरपुर आकाशवाणी के 50 साल गोल्डन जुबली, भारत के आकाशवाणी के 9 दशक 90 साल पूरे हुए। आज हम

0: बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं कि आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में हम सभी समाज सेवी, साहित्यकार, चिकित्सक, तरह के जितने लोग हमारे लोग हैं यहाँ प्रतिष्ठित, बहुत सारे लोग यहाँ पर आज उत्सव की तरह मना रहे हैं। ये हमारा गौरव है कि हमारे बुंदेलखंड का ये बहुत ही ख्याति प्राप्त आकाशवाणी केंद्र है। इसकी आवाज बुंदेलखंड नहीं बल्कि बहुत दूर दूर तक सुना करते थे। उस जमाने में रेडियो ही सब कुछ हुआ करता था। हमारी आवाज, हमारी बात रेडियो के माध्यम से जाती थी। हमें ये वो याद है जब 77, 78, 79 में इसी आकाशवाणी में कुछ दिन हम लोगों ने कार्यक्रम भी किए। कॉलेज से हम यहाँ आया करते थे, उमेश शुक्ला, चीनी राजा, देवेन वासुदेव और तीरे करके हम लोग एक अजय सूत, हम लोग एक नाटक खेला करते थे यहाँ पर। देवेन वासुदेव कमेंट्री किया करते थे बनाई टूर्नामेंट की। यहाँ जितने कवि सम्मेलन या मुशायरा हुआ करते थे उनकी डायरेक्ट रिलीव हुआ करते थे। भरत श्रीवास्तव और राकेश शुक्ला के छतरपुर जिले की चिट्ठी आया करती थी। ये वो संस्थान है कि यहाँ पर जिले भर के क्या पूरे क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का जितना भी लोकगीत से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, उनका स्वर संगीत हमको आकाशवाणी से मिला करता था। अमीन साहिनी की आवाज जो रेडियो से आती थी बिना कट टॉप, रात का जब समय होता था, बुधवार का दिन होता था, लगता था चलो भाई रेडियो के पास बैठे मधुर संगीत की धुन सुने। अपने खत के माध्यम से फरमाश से आया करती थी, बाल मेला हुआ करते थे, युवाणी होती थी, खेती किसानी होती है और तरह तरह के आयोजन छतरपुर आकाशवाणी है यहाँ पर दिए हैं। और ये गौरव है कि हमारा बुंदेलखंड का जलियांवाला चरणपात का है, उसका बहुत ही अच्छा प्रेषण नाटक आदरणीय तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तिवारी जी और उनके साथियों ने इसका इस रेडियो से निकाला। वह पूरे देश भर में गया था और इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम निकला था वो कि जिस तरीके से पंजाब का जलियांवाला कांड का नाम गौरवान्वित हुआ था, वैसे ही बुंदेलखंड का जलियांवाला चरणपात का कल गौरवान्वित किया गया था। और ये आयोजन हर क्षेत्र में करते हैं, सामाजिकता भी है, स्वच्छता भी है, जल संरक्षण भी है, पर्यावरण भी है, वृक्षारोपण है, हर तेज में अपने कार्यक्रम किया करते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बुलाते हैं, कैरियर गार्ड देते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं तो चिकित्सा का ज्ञान देते हैं, सुरक्षा का बताते हैं, पुलिस को बुलाते हैं तो सूचना तरह की देते हैं। आपके माध्यम से आकाशवाणी से जो भी खबर आती है विश्वसनीय पक्की होती है, तो आदमी को विश्वास भरोसा होता है। यह आकाशवाणी की देन है और हमें तो ये गौरवान्वित है कि यह हमारा बुंदेलखंड का आकाशवाणी के जो छतरपुर में है, ये एक शान है यहाँ की। और आसपास के जितने भी आकाशवाणी और मध्य प्रदेश में भी है उनमें सबसे श्रेष्ठ रूप में इसको गिना जाता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। यहाँ के जो कार्यक्रम अधिकारी रहे उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा, चाहे कहीं भी आकाशवाणी हो लेकिन छतरपुर आकाशवाणी में सभी को अवसर अपने प्रतिभा का निकालने का दिया गया है। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से गौरव बना रहे और हमारे जो भी यहाँ के स्टेशन के कार्यक्रम अधिकारी डायरेक्टर भी हैं वो अपना नाम यहाँ से इसी तरीके से गौरवान्वित करते रहें और हम लोगों को इसी तरीके से छतरपुर की आकाशवाणी से जोड़ कर रखें। और जो भी शासन की योजनाएं हैं, भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो चाहे जिले की हो, वे आपके माध्यम से आज ही मिलती हैं और मिलती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें आशा है कि आप इसके 90 वर्ष और 50 साल और भी व्यापक रूप से बनाएंगे और आपके साथ पूरा शहर क्या पूरा प्रदेश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।
1: बहुत ही अच्छा अभी अपना उद्बोधन जैसा दिया और आकाशवाणी के संबंध में चर्चा की आदरणीय शंकरलाल सोनी जी ने।

तो इस पर हम जैसे कि चर्चा करते जा रहे हैं, 1950 में 6 स्टेशन थे, 1960 तक 30 हो गए। युवा सेवा 1956 में युवाणी दिल्ली से शुरू हुआ, युवाओं के लिए युवाओं द्वारा कार्यक्रम। तो युवा जागृति थी यह एक, इनकी क्षमताओं का भी विकास होता रहा।

1960 से कुछ समय स्वर्ण युग रहा। हरित क्रांति से लेकर आपातकाल तक ये दशक रेडियो का स्वर्ण युग था। उस समय टीवी नहीं था, रेडियो ही सब कुछ था और ताज उसी पर सजा हुआ था। कुछ यादगार रूपरेखाएं भी रही हैं। कृषि दर्शन 1966 में हरित क्रांति के लिए किसानों तक नई तकनीक पहुंचाई। इस तरह से खेती के बोल जैसे कार्यक्रम क्रांति लेकर आए। 1971 जो युद्ध था, भारत पाक युद्ध की पल पल की जानकारी, पल पल की खबर AIR से।

0: कार्यक्रम क्रांति लेकर आए। 1971 जो युद्ध था, भारत पाक युद्ध की पल पल की जानकारी, पल पल की खबर AIR से दी गई। समाचार प्रभात और आज के समाचार पर पूरा देश टिका रहता था। आपातकाल 1975-77 विवादित दौर रहा और 1977 को मद्रास से पहला FM स्टेशन शुरू, नाम था FM रेनबो। 1970 तक AIR 100% भारत को कवर कर चुका था। 85 स्टेशन 59 भाषाओं बोलियों में प्रसारण हुआ। 1980 क्रिकेट रामायण और टीवी की चुनौती रही। 1982 में एशियाई खेलों के साथ टीवी पर रंगीन प्रसारण प्रारंभ हुआ। रेडियो की बादशाहत को चुनौती मिली। एक दिन चुनौती हर किसी उठते हुए सूरज को, जागते हुए सूरज को झेलनी ही पड़ती है, तो यहाँ भी AIR के लिए एक चुनौती थी, लेकिन AIR ने हार नहीं मानी और फिर भी वह एक पहचान बनी। क्रिकेट कमेंट्री जसदेव सिंह, सुशील दोषी की आवाज में क्रिकेट का बॉल बाई बॉल कमेंट्री ने दीवानगी पैदा की। 1985 तक 100 मिलियन रेडियो सेट भारत में थे। 1990 उदारीकरण, FM क्रांति और प्राइवेट रेडियो की एंट्री। 1991 में उदारीकरण आया। 1993 में सरकार ने FM चैनलों को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला। तो इस तरह से भी इसका एक सफर रहा है। इस सफरनामे को अभी हम और बढ़ाएंगे आगे, और इसके साथ मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर सुनील शर्मा जी को। बहुत समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, बाकी सबके अपने अपने पद हैं, लेकिन उसके साथ जो सभी लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी जो हमारे साथ प्रतिभाएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको मैं एक बार पुनः नमस्कार करती हूँ।
1: मैं देश की सभी देशवासियों को 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं और 50 वर्ष पूरे के उपलक्ष्य में छतरपुर की जनता भी बधाई की पात्र है, और मैं उनको भी नमन करता हूं जिनके प्रयास से आकाशवाणी का उद्घाटन हुआ था, जिनके प्रयास से आकाशवाणी क्षेत्र बनी थी, स्वर्गीय आदरणीय मम्मी जी विद्यावती जी चतुर्वेदी। लगभग 80 से अधिक वार्ताएं मैंने इस आकाशवाणी छतरपुर से दी है, और मुझे इसका पहला कॉन्टेक्ट जब मंडलोई साहब थे तब मिला था, मुझे ऐसा याद है अच्छी तरीके से। और इस आकाशवाणी ने गांव-गांव तक कृषि के क्षेत्र में जिनको जानकारी नहीं थी उन किसानों को बहुत लाभान्वित किया है, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी गांव-गांव तक जनमानस तक पहुंचाई है, और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए हैं। जहाँ तक मनोरंजन की बात है, बहुत सारी कवि सम्मेलन, गजल्स और बहुत अच्छी म्यूजिक से संबंधित जानकारियाँ और प्रोग्राम इस आकाशवाणी को जनता के द्वारा जनता के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए ये आकाशवाणी भी बधाई की पात्र है। और आज भी बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं और जानकारियाँ जनता के लिए पहुंचा रही है, जिससे हमारे देशवासी और शहर के वासी बहुत लाभान्वित है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं, धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया, आदरणीय डॉक्टर सुनील शर्मा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बताया कि किस तरह से सभी लोग आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। तो AIR ने मुकाबला कैसे किया, इसको भी हम जाने। यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं, और आकाशवाणी की यात्रा में जो उतार चढ़ाव आए, 1997 प्रसार भारती AIR और दूरदर्शन को सरकारी नियंत्रण से थोड़ा आजाद करने के लिए प्रसार भारती स्वायत्त निगम बना। FM गोल्ड और इस तरह से AIR ने FM चैनल मजबूत किए। मेट्रो शहरों में युवाओं को टारगेट किया गया, और DTH रेडियो 1990 के अंत में डायरेक्ट टू होम सेवा शुरू हुई, बिना टावर के पूरे देश में साफ आवाज, इंटरनेट पर एंट्री। 1998 में भी इस तरह से आकाशवाणी गवर्नमेंट इन लॉन्च हुआ। दुनिया भर में भारतीय सुनने लगे, और 2000 तक पहुंचते पहुंचते डिजिटल युग में कदम रखा। मोबाइल, इंटरनेट, प्राइवेट FM का तूफानी दौर रहा। AIR ने अपने पुराने पन को बदला, क्योंकि नवाचार की आवश्यकता आ ही जाती है, तो इसमें भी कुछ नवाचार अपनाए गए हैं। AIR ने अपने पुराने पन को बदला, नए कदम के साथ फिर यात्रा जारी रही, और इस तरह से DTH विस्तार और भी आगे बढ़ा आकाशवाणी, और फिर मन की बात 3 अक्टूबर 2014 को माननीय PM नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। AIR को फिर से प्रासंगिक बना दिया। 100 करोड़ से अधिक लोग जिसे सुनते हैं। तो इसके साथ में हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं एक जानी मानी हस्ती को। यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय

0: उपेंद्र प्रताप सिंह जी।
1: एक लाइन जो हमेशा मेरे दिमाग में असर करती थी, हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं और अब आपके सामने प्रस्तुत है। ये दो लाइनें जो थी वो हमेशा एक मेरे मन में रोमांच पैदा कर देती थी। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मेरी जो यहाँ पर उपस्थित लोग हैं उसमें उम्र सबसे कम होगी, तो उस उम्र के हिसाब से मैंने अपने बचपन में आकाशवाणी को भी जिया है और अब आकर यूट्यूब को भी देखा है। तो इस पूरे बदलाव की प्रक्रिया में मैं साक्षी रहा हूँ। आकाशवाणी का सबसे जो अलग अलग कार्यक्रमों की आपने चर्चा की, तो एक बच्चा होने के समय जब मैं अपना बचपन व्यतीत कर रहा था उस समय आकाशवाणी जीवन में हम लोगों के बड़ा महत्वपूर्ण था। खासकर हम लोग बड़ा स्पोर्ट्स के शौकीन थे, तो उस समय जब मैच होते थे तो उसकी लाइव कमेंट्री या समाचारों में उसके जो विवरण आते थे वो हम लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते थे। उस समय हम लोगों के घर में टीवी नहीं हुआ करती थी और एक यही माध्यम था जब हम लोग मैच के जो समाचार हैं वो सुन लेते थे। उस समय काफी सारे कार्यक्रम आते थे जिसमें जो कृषि का कार्यक्रम था वो बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन विश्वास मानिए कि एक बच्चा होने के समय वो हम लोगों को बड़ा बुरा लगता था उस समय कि अब ये बीच में अचानक कहाँ कृषि का कार्यक्रम आ गया, न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है। और फिल्मी गाने जो आते थे उसके लिए हम लोग हमेशा, मतलब आजकल के जो नई युग के लोग हैं उन्हें तो शायद ये पता भी नहीं होगा कि उस समय गाने सुनने कितने कठिन होते थे। आकाशवाणी वो माध्यम था जिससे पुराने और नए गीत आते थे और जब वो गीत आते थे तो सारा परिवार इंतजार करता था उस रेडियो को लगा के, और बहुत खुशी का मौका रहता था जब सारा परिवार एक साथ बैठकर और रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से वो सारी चीजें सुनता था। तो मैं उसका साक्षी रहा हूँ। समय बदला और हर जगह बदलाव हुए, आकाशवाणी ने भी बदलाव करे जो समय की आवश्यकता होती है। और निश्चित रूप से अभी भी जब भी समय मिलता है हम लोगों का, खासकर जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो गाड़ी में जब आकाशवाणी जब फ्री होते हैं तो कई घंटों तक आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते हैं और काफी व्यापक रूप से बदलाव किया है। साथ ही जो आवाज और जो बोलने का लहजा आकाशवाणी ने दिया है, जो हम, मुझे लगता है हमारे छतरपुर को सबसे बड़ी सौगात इस आकाशवाणी ने दी है, वो हमारे बोलने का लहजा है जो एकदम बदल के ही रख दिया। इस आकाशवाणी केंद्र के 50 वर्ष पूरे होने पर सबसे बड़ा जो सुनहरा ये है, वो बहुत सारे कमेंटेटर जो निकल के आए वो इसीलिए क्योंकि जो लहजा था ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको बोलने का, और जो किस बात को किस तरीके से बोला जाता है, कितने आराम से धीरे धीरे सांसों का कहाँ प्रयोग किया जाता है, उस हिसाब से बोलने पे छतरपुर में बोलने की प्रतिभाओं को निखारने में इस आकाशवाणी केंद्र ने अपना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने बचपन में आकाशवाणी को देखा है और फिर बड़े होते होते इसको बदलते स्वरूप में भी देखा है, तो निश्चित तौर पर इसका महत्व हर एक छतरपुर वासी के दिलो दिमाग पर हमेशा रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि ये बदलाव, चूंकि प्रकृति का नियम होता है, तो ये बदलाव और भी क्रियान्वित तरीके से, क्रिएटिव तरीके से जारी रहे और लगातार समय के साथ इसमें और भी सारे बदलाव करते जाएं जिससे ये हम सभी लोगों के लिए प्रासंगिक बना रहे और जो हमारी बचपन की सुखद यादें हैं वो जीवन भर हम लोगों के साथ चलती जाएं। धन्यवाद।
0: बहुत ही अच्छा, आदरणीय युवा समाज सेवी उपेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपने साथ जो बताया अपने वक्तव्य में, अपनी परिचर्चा में, वह निश्चित ही एक गरिमा में वक्तव्य है, एक चिंतनशील अभिव्यक्ति है कि हम आकाशवाणी के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें और इसकी यात्रा को जारी रखें। सुखिया सब संसार है, खावत है अरु सोवत है, दुखिया दास कबीर है, जागत है अरु रोवत है। तो आकाशवाणी से जुड़ी हुई संपूर्ण प्रतिभाएं निश्चित ही अब इसके शतक के लिए, शताब्दी के लिए तैयारी कर रही हैं और लोग चाहते हैं कि यह अपने सफरनामे को जारी रखे और आगे बढ़े, दूर दूर तक इसकी आवाज जाए। इसके साथ हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी को कि वह भी अपने कुछ विचार यहाँ प्रस्तुत करेंगे।
2: सर्वप्रथम आकाशवाणी के स्थापना दिवस के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के, तो उस यात्रा के संदर्भ में एक छोटी सी चार लाइन है। तरंगों में बस्ती भारत की पहचान है, आकाशवाणी देश की सच्ची शान है। स्थापना दिवस पर नमन उस आवाज को जिससे जुड़ा हर दिल और हर इंसान है। आकाशवाणी।

0: छतरपुर जब सुबह 5:55 पर एक देश गान के साथ शुरू होता है, उसी से यात्रा इसकी चालू हो जाती है और लगभग 1980 से हम आकाशवाणी छतरपुर से जुड़े हुए हैं। इस बीच सुनील केशव देवधर जब रहे, उनका चिंतन सुनने के लिए बहुत लालायत रहते थे कि उन्होंने जो चिंतन की प्रस्तुति दी तो ऐसा लगने लगा कि छतरपुर में एक आवाज जो हर दिल चाहता था कि उनका चिंतन हम सुने, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे प्रतिभा के क्षेत्र में हो, आकाशवाणी छतरपुर का एक अद्वितीय स्थान रहा है। यहाँ पर कई बार हमको आने का मौका मिला, जैसे स्वास्थ्य के लिए हंसना और होम्योपैथी चिकित्सक के रूप में कई इंटरव्यू यहाँ पर आकर के हमने दिए और हमारे जैसे सभी चिकित्सक और अन्य समाज सेवी समय समय पर छतरपुर आकाशवाणी में आकर के अपना प्रतिभा का यहाँ पर योगदान देते रहे। छतरपुर आकाशवाणी एक ऐसा केंद्र रहा जहाँ से कई प्रतिभाएं निकली, हमारे देशराज पटेरिया हूँ या छतरपुर में जैसे कि कंपेयर्स के रूप में अविराम पाठक, जो कवि के रूप में, कई कलाकार ऐसे हैं जो छतरपुर आकाशवाणी से प्रेरित होकर के और देश में जाकर के अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इस स्थापना दिवस पर हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और हमारी आशा है कि जैसे समय समय पर पहले हम पोस्ट कार्ड आया करते थे, लोग अपना नाम सुनने के लिए लालायत रहते थे, फिर हेलो फरमाइश आया तो लोग अपना उसमें बात किया करते थे और आज हम मन की बात के रूप में प्रधानमंत्री जी को एकत्रित होकर के सुनते हैं। हमें आशा है कि इसी तरीके के नवीन कार्यक्रम आते रहेंगे और आकाशवाणी का सफर यूं ही चलता रहेगा, यही हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को।
1: बहुत अच्छा, डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी ने आकाशवाणी के बहुत से विषयों पर प्रकाश डाला। सचमुच देश के प्रति भी एक जज्बा जगा देती है, जो संकटों में चीख हम देते नहीं, जिंदगी की भीख हम लेते नहीं, हर समय तैयार हैं प्रस्थान को, मौत की तारीख हम देते नहीं। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं ये। तो हर जज्बे को जो जगाता है, जो हर इतिहास रचता है, जो भविष्य की रूपरेखा गढ़ रहा है, वह आकाशवाणी हम लोगों के लिए एक आधारशिला है। और इसके साथ में मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पंकज जैन जी को, हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं।
2: 50 साल बेमिसाल, 1976 से शुरू हुआ सफर आज तक निर्वाध रूप से अपनी पूरी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखते हुए आज भी चालू है। हमारे पेरेंट्स बताते थे कि तत्कालीन जो सांसद विद्यावति चतुर्वेदी जी थी, उस समय उनके लिए दो ऑफर आए थे छतरपुर के लिए, या आकाशवाणी या मेडिकल कॉलेज। तो उस समय उन्होंने आकाशवाणी को महत्वता देते हुए छतरपुर के लिए आकाशवाणी को चुना था और झांसी के लिए मेडिकल कॉलेज चुना गया था, जबकि मेडिकल कॉलेज उस समय। तो आप आकाशवाणी की विरासत, आकाशवाणी का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 1970 में उन्होंने मेडिकल कॉलेज को महत्व ना देकर आकाशवाणी को महत्व दिया। ये हमारी विरासत है छतरपुर में। आज भी सब सर्वाधिक सुनने वाला स्टेशन जितना भी आकाशवाणी है हमारा, जब सुबह होती थी बचपन में हमें याद है, रात में जब बिना का गीतमाला आया करती थी तो रात में रजाई के अंदर रख के ट्रांजिस्टर कान में लगा के हम लोग सुना करते थे। अमीन साहिनी की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। आज भी ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है आकाशवाणी का जिसको आकाशवाणी से प्रसारण ना किया गया, बच्चे से लेके बूढ़े तक, नौजवान से लेके आज भी अगर कुछ बाल मेला कार्यक्रम उस समय हुआ करता था, बाल सभा, हमारी भी बहुत जिज्ञासा रहती थी छतरपुर स्टेशन जाया जाए, लेकिन उस समय पॉसिबल नहीं हो पाता था। आज उस स्टेशन में बैठ के ये वार्ता होना हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। सबसे पहले हम इस समय 50 साल पूरे होने पर जितने भी श्रोता हैं आकाशवाणी छतरपुर के, उन सबको बधाई देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो प्यार, जो स्नेह आकाशवाणी छतरपुर को दिया है उसे बरकरार रखें, इसकी जीवंतता बरकरार रखें, क्योंकि आकाश आज भी आकाशवाणी से सुना गया हर गीत कानों में वो रस घोलता है कि जो हमें किसी भी अन्य मीडियम से नहीं हासिल होता। आज भी जब आकाशवाणी के सुना हुआ गीत कानों में आता है वो प्यार, वो स्नेह उस गीत में पाया जाता है। तो इसको ऐसे ही प्यार देते रहें, इसकी जीवंतता बनाए रखें, ये हम सभी का कर्तव्य है और ये बहुत गौरव की बात है कि हम 50वें साल में चल रहे हैं और उसी स्पीड के साथ चल रहे हैं, आज भी कम नहीं हुआ। हम जब कार में सफर करते हैं तो FM और OAM छतरपुर चलाकर जाते हैं तो जो गाना की स्वीटनेस उसमें मजा आती है, वो जो

0: कि टैग लगा होता है उसमें सूटने से मजा नहीं आती है। पुनः 50 वर्ष पूरे होने के ऊपर आकाशवाणी छतरपुर के समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन है, साधुवाद।
1: बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया भी अपना एक छोटा सा पंकज जैन जी ने। निश्चित ही यहाँ आसपास के कलाकार आते हैं हमारे छतरपुर आकाशवाणी में, और कलाकारों को एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल मिलता है। और जो कलाकार होते हैं, जो प्रतिभावान होते हैं, क्षमतावान होते हैं, तो उनके अंदर जो परोपकार की भावना होती है वह कुछ इसी तरह से होती है कि तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही नहीं पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। वो अपनी संपत्ति, जो सज्जन होते हैं, अपनी संपत्ति का संचय कुछ कुछ समाज सेवा के लिए भी करते हैं। इसी तरह से कलाकार होता है, कलाकार का मन बड़ा कोमल होता है। और इसके साथ में हम आमंत्रित करते हैं यहाँ पर आदरणीय अवनींद्र खरे जी को, जो कवि भी हैं, समाजसेवी भी हैं, अपना अस्तित्व बराबर से सभी स्थान पर बनाए रहते हैं।
2: छतरपुर आकाशवाणी का, जैसा कि बताया, 50 वर्ष हो गए। आकाशवाणी से तो हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। बहुत समय से आकाशवाणी से मेरे बड़े पिताजी अंबिका प्रसाद जो दिव्य जी थे, उनकी यहाँ पर 3 बार पूरा उनका जो गांधी पारायण उन्होंने लिखा था, 3 बार उसका पूरा प्रसारण हुआ। और मेरे बड़े भाई साहब किंजल के जी भी यहाँ थे, तो उनके साथ मुझे बहुत सी परिचर्चाएं करने का अक्सर मैं आता रहता था। और मैंने रेडियो से कमेंट्री भी की है, या फुटबॉल में बनर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ करता था तो वहां पर वो ले जाते, तो वहां पर मैंने कई बार सुनाया। और एक बार मेरी आवाज भी सिलेक्ट हो गई, तो मेरा लेटर जब मिला था आकाशवाणी का, वो करीब 1 माह बाद मिला था। फिर मैं यहाँ दिल्ली भी गया, मैंने दिखाया मेरे को सिलेक्शन मिला है, बोले जी तो आपका टाइम निकल गया। उसके बाद उन्होंने बहुत उपचारिता करने के बाद भी नहीं मिला। तो आकाशवाणी से मेरा बहुत ही अच्छा, आज भी मैं कई साल में 3-4 2-3 बार प्रोग्राम यहाँ तक, 22 तारीख को पुनः मेरी रिकॉर्डिंग आएगी। और जब मेरे यहाँ सबसे पहली बार रेडियो आया था, तो उस समय मैं छोटा था, तो मैंने रेडियो सबसे पहले ऑन किया, वो छतरपुर, तो उसमें गाना आया था चल चल मेरे साथी हो मेरे हाथी, तो याद है आज भी। मेरे पिताजी सर्विस के दौरान वो एक रेडियो मनफी मिनी मास्टर लेकर गए थे, तो हम लोगों की जिज्ञासा बड़ी जी क्या है सब देखा, तो बोले जैसे ही ऑन किया सबसे पहला मैंने देखा था हाथी मेरे साथी का वो गाना आया था। तो आकाशवाणी से हमने बहुत सी यहाँ भी प्रोग्राम, सागर में भी मैंने आकाशवाणी से अनेक कार्यक्रम, जबलपुर, इलाहाबाद, कई आकाशवाणियों में जाता रहता हूँ। लेकिन जो मजा अपना छतरपुर आकाशवाणी मेरा वो इतना आनंददायक कहीं नहीं मिला है। सागर में अवश्य जो भाई साहब के साथ मुझे असरानी जी और अपने जो शक्ति कपूर, बहुत से फिल्म एक्टर, 1 अप्रैल को एक कार्यक्रम हुआ होता था हर साल, किसी ना किसी हास्य कलाकार को बुलाया जाता था, तो सब लोगों के साथ उनके साथ में रिकॉर्डिंग में अपने साथ उनका सामान उठाने के बोले चलो मुन्ना चलते हैं, तो एक वो भी एक यादें मेरे जिम्मे जुड़ी हैं। और चूंकि किंजल जी यहाँ बहुत लंबे समय तो उन्हें आकाशवाणी में सेवा दी थी, आज यहाँ उनके बीच उनकी स्मरण को मैं ताज करता हूँ। और आप सब लोग जितने आए हैं आज, उनको सबको बहुत बहुत बधाई। और आकाशवाणी से मेरा सुबह, आज भी सुबह 5:45 जब 5:57 पे आता वंदे मातरम से लेकर पूरा सुबह पूरा 10 बजे तक हमारा रेडियो चलता रहता, आज भी मैं रेडियो का बहुत ही शौकीन हूँ। और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई।
1: बहुत अच्छी बात कही आदरणीय अवनींद्र खरे जी ने। सचमुच सभी लोग कितने इससे जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से, और उसे सभी आत्मसात कर रहे हैं। और अब हम चाहते हैं कि आकाशवाणी ने भारत को क्या दिया। इसकी विरासत बहुत ही अनमोल है, भाषा और संस्कृति का संरक्षण, और इस तरह से अधिकांश बोलियों में कार्यक्रम लोक संगीत, नौटंकी, बंडयानी को मंच दिया गया, और भीमसेन जोशी जी को भी घर घर पहुंचाया गया, राष्ट्रीय एकता से भी बांधा गया, विविध भारती ने उत्तर दक्षिण को जोड़ा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही गाना गूंजा, आपदा में साथी 199, ओडिशा साइक्लोन 2004, सुनामी 2013 में उत्तराखंड, बाढ़ जब सब ठप हुआ, AIR चलता रहा चलता रहा, बैटरी वाले रेडियो ने जान बचाई, इसकी लाज रखी, इसकी यात्रा रुकने नहीं दी। महान आवाजें मेलविन डी मेलो, देवकी नंदन पांडे, अमीन सयानी, लता मंगेशकर की ए मेरे वतन के लोगों, इस गाने को AIR ने आवाज दी। शिक्षा, ज्ञानवाड़ी, इग्नू के कार्यक्रम, UPSC की तैयारी, लाखों छात्र जिसमें टीचर बने, अभी और भी इसकी यात्रा है। अब इसके साथ हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय काशी प्रसाद जी, आप भी यहाँ बहुत ही जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से।
3: संचालक महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहे हैं, स्थापना दिवस के 50 साल बेमिसाल शुभकामना सभी को, देशवासियों को।

0: एक्चुअल में जो आकाशवाणी है जो तीन बेस पे काम करता है, एक VHF, एक HF, एक स्काइप। इसकी खोज करने में जो है वैज्ञानिकों को जो है बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा। जो हम आप लोगों को मिला है एक बहुत बड़ी विरासत है ये, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात को विराम देते हैं।
1: धन्यवाद आदरणीय काशी प्रसाद जी, आपने अपनी बात रखी। और इसके साथ में अब मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय RP कुरिल जी को कि आप भी कुछ चर्चा करें, कुछ बताएं।
2: सभी को बहुत बहुत बधाई 50 वर्ष पूर्ण होने पर। मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं। भारत में रेडियो के प्रसारण की शुरुआत 1923 में हुई, उसके बाद 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नियमित प्रसारण शुरू किया। इसके पश्चात 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। इसके बाद 1957 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। रेडियो का महत्व, रेडियो ने शिक्षा, समाचार, संगीत, खेती और सरकारी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विशेष महत्व रहा है और मैं तो विशेष शौकीन रहा हूँ रेडियो का। मैंने पहली बार 1975 में रेडियो खरीदा था, मेरे पास आज भी रेडियो है, मैं डेली सुनता हूँ रेडियो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद कुरिल सर। और इसके साथ में मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ दिल्ला राम जी को। आदरणीय दिल्ला राम जी, आप भी कुछ चर्चा करेंगे इसके विषय में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्राम बनपुरा का रहने वाला हूँ। छोटे छोटे थे तो हमारे स्वर्गीय श्री तीर्थ राम खरे माठ साहब थे, वो ही पहली बार रेडियो ले आए। गांव में चबूतरा पर रख देते थे, वो ही सुनाते थे। अधिकतर लोग पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी गागर में सागर भरते हुए आपने अपनी बात कही। सचमुच ऐसा ही है इसका प्रभाव। और अब इसके पश्चात मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय इंजीनियर JP भट्ट जी को।
4: 50 वर्ष हो गए हैं, सबको बधाइयाँ। इस संदर्भ में कुछ बताना चाहता हूँ कि कितने कितने फायदे हुए यहाँ। सबसे बड़ा फायदा तो हमें अभी बैठे बैठे हम जो सोच रहे हैं, मेरी बेटी US में है तो वहाँ ये किसी स्टूडियो में जाती है, काम करती है
1: जी,
4: घंटे दो घंटे के लिए। तो वहाँ जो फिल्मी गाने गाए जाते हैं वो ब्रॉडकास्ट करती है, वो यहाँ हमारी मैसेज जो है वो सुना करती है। और कहीं जिनके जिनके नंबर है उसके बाद वो लगा देते थे तो वो वहाँ के गाने, इंडियंस गाने फिल्म के, वो सुना करती है डेली। बोले वो लगाओ उसके टाइम आ गया 9 बजे, सुबह 9 बजे वो सुनाती है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम यहाँ बैठे इंडिया में और अमेरिका की आवाज़ सुनने को मिल रही है। अमेरिका में लड़की बैठी है, उसकी आवाज़ सुनी है, वो जी बदौलत आकाशवाणी की है, और नहीं तो कैसे हो सकते थे। और दूसरे बात, किसानों को हमारे गाँव में हमने देखा है, अभी भी लोग बाग रेडियो जिनके पास है एक एक दो, तो वो प्रोग्राम आता है कि कितना खाद डालना चाहिए, कृषि कौन कौन सी, उस संबंध में जो है। कोई एक बार कुशवाहा जी हमारे पास आए, बोले भैया अपना रेडियो तो लगा दो तो ना, वहाँ चालू नहीं हो रो। तो भैया ने जो है, छोटा भाई रहता है वहाँ गाँव में महिवा में, उसने लगा के बता दिया कि हाँ ये प्रोग्राम आ रहा है, इस समय इडली लग जाएगी, एक डालना चाहिए, वो डालना चाहिए, खाद डालना, इस तरह की हमने किसानों के मुँह से सुनी है। तो वो भी फायदा है आकाशवाणी से हुआ है। दूसरा व्यक्तिगत मैं अपनी बात बताऊं, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में यहाँ 80-81 में आया, तो यहाँ पे बिजली की समस्या, आकाशवाणी में जनरेटर लगा हुआ था, यहाँ दिक्कत रहती थी बहुत ज्यादा। तो इसके लिए एक सब स्टेशन बनाया सागर रोड पे, वो सब स्टेशन का काम मैंने करवाया, लगा रहा, एक इंजीनियर थे तो उनके साथ वो सब स्टेशन बना सागर रोड पे। तो इस तरह से मैंने भी, मेरा भी इसमें योगदान किसी न किसी रूप में रहा।
1: धन्यवाद आदरणीय भट्टी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह से आप सभी लोग आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। क्षेत्र में आप सभी ने पूरी आत्मीयता से अपना सहयोग भी दिया है और यह एक ध्वनि का जो जादू है उस पर भी आपने प्रभाव डाला। इसके पश्चात मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सौरभ तिवारी जी को।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सर्वप्रथम तो मैं पूरे आकाशवाणी परिवार को, समस्त श्रोताओं को बधाई देता हूँ कि 50 वर्ष ये स्वर्णिम अवसर ये पूर्ण हुए हैं। पूरे समस्त स्टाफ को और पूरे आकाशवाणी परिवार को, श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई 50 वर्ष पूर्ण होने पर। निश्चित रूप से आकाशवाणी का योगदान हमारे जीवन में बहुत है। जिस प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान आवश्यकता है, उसी प्रकार से जीवन में कला संगीत की भी आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि छतरपुर आकाशवाणी जो रही है वो अनेक अनेक कलाकारों को मंच देती रही है, चाहे वो गायक हो, चाहे वादक हो, चाहे कवि हो, अथवा अन्य प्रकार से जो व्यक्ति जिस कला में निपुण था उस कला को निखारने का काम सदैव ही आकाशवाणी ने किया है। आकाशवाणी ने मंच दिया।

0: है और केवल कला के क्षेत्र में ही नहीं, हम देखते हैं चाहे वह शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे किसानों से संबंधित समस्याएं हो, या फिर खेल जगत की बात हो, या अथवा सूचनाओं का आदान प्रदान अथवा शासकीय योजनाओं की जानकारी इत्यादि, प्रत्येक क्षेत्र में आकाशवाणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन जैसा कि परिवर्तन संसार का नियम है, वो परिवर्तन आया एक युग था जब एक घर में रेडियो हुआ करता था और आसपास के लोग आया करते थे, ऐसा मैंने सुना है, हालांकि देखा नहीं है चूंकि आयु कम है। लेकिन इतना बड़ा योगदान, प्रत्येक जानकारी पहुंचाना ये आकाशवाणी का सदैव ही रहा है। उसके बाद धीरे धीरे युग समय का परिवर्तन हुआ और फिर टीवी आए, टीवी के बाद मोबाइल आए, लेकिन आकाशवाणी इस समय भी विभिन्न सॉफ्टवेयर इत्यादि के माध्यम से लोगों तक, लोगों के मोबाइलों में भी पहुंच रहा है। तो इसके लिए बधाई है। संगच्छध्वम संबदध्वम संभो मनांसि जानताम का ये सबको साथ लेकर के और पूरे राष्ट्र की एकता के लिए और राष्ट्र को पुनः समृद्ध बनाने के लिए आकाशवाणी निरंतर प्रयत्नशील है और प्रयत्न करने से ही सफलता हासिल होती है। और आकाशवाणी छतरपुर का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है वह आगे भी इसी प्रकार से जगमगाता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: धन्यवाद सौरभ जी, आप युवा हैं और बहुत अच्छा आपने प्रकाश डाला कि मनोरंजन बहुत ही आवश्यक है। व्यक्ति काम करते करते थक जाता है और तब उसे एक सार्थक मनोरंजन की आवश्यकता होती है और पूरी रोचक शैली के साथ आकाशवाणी ही एक ऐसा क्षेत्र है जो सबको सकारात्मक ऊर्जा देता है। और इसके साथ अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रामजी अग्रवाल जी को कि आप भी यहाँ पर अपनी कुछ बात रखेंगे।
2: बुंदेलखंड की धरती को हार्दिक हार्दिक नमन। आकाशवाणी के 50 साल पूर्ण होने पर हार्दिक सभी को बधाइयां। बुंदेलखंड की धरती को नमन है। इस प्रकार के जो आयोजन आकाशवाणी द्वारा किए गए हैं उसमें सबसे बढ़िया कार्यक्रम था बाल बच्चों का बाल मेला और कृषि दर्शन गीतमाला। सभी को हार्दिक शुभकामना।
1: धन्यवाद, आपने भी अपनी छोटी सी चर्चा में बहुत सारी बातें बताई। और अब इसके साथ मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आकाशवाणी प्रभारी और जो छतरपुर में इस समय आप इस आकाशवाणी केंद्र के केंद्र बिंदु हैं, तो आदरणीय विनोद पुष्पत जी, आप बहुत ही सार्थक तथ्य पर प्रकाश डालेंगे।
3: आज की परिचर्चा का विषय आकाशवाणी के 90 वर्ष और इस अवसर पर हम आज इस परिचर्चा को आयोजित कर रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम अपने सभी अतिथियों और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। आज ये भी एक बहुत सौभाग्य का विषय है कि जब हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं उसी समय पर आकाशवाणी छतरपुर के भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसा संयोग बिरले ही आकाशवाणियों के साथ होगा, लेकिन ये आकाशवाणी छतरपुर का सौभाग्य है कि जब हम आकाशवाणी के 90 साल पूरे कर रहे हैं उसी वर्ष में हम आकाशवाणी छतरपुर के 50 साल पूरे कर रहे हैं। अभी विभिन्न श्रोताओं ने आकाशवाणी की विभिन्न उपलब्धियों और विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की। मैं भी इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आकाशवाणी का बहुत अच्छा स्वर्णिम युग रहा है और आज भी है। एक जमाना था कि जब लोग घड़ी रेडियो साइकिल ना मिलने पर शादियाँ भी तोड़ दिया करते थे। इससे भी आकाशवाणी के महत्व प्रदर्शित होता है कि रेडियो या आकाशवाणी उस समय कितना महत्वपूर्ण था। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदलती है और टेक्नोलॉजी बदलने के साथ साथ हर चीज नए स्वरूप में आती है। आकाशवाणी में रेडियो का स्वरूप भी आपने देखा होगा, पहले एक बड़े आकार का रेडियो होता था, उसकी टेक्नोलॉजी अलग थी। आज छोटा रेडियो आया, उसकी टेक्नोलॉजी अलग आई। फिर इसके बाद सेमीकंडक्टर रेडियो आया और अभी वर्तमान में आप मोबाइल के माध्यम से भी रेडियो सुन सकते। आकाशवाणी का जो भी मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड है उसके परिवर्तन को मैंने पास से देखा है और इस वार्ता के माध्यम से मैं आकाशवाणी के श्रोताओं को इस बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। आकाशवाणी में सबसे पहले रेडियो के कार्यक्रम चलते थे, उस समय दूरदर्शन भी नहीं था, तो उस समय आकाशवाणी का एक छत्र राज होता था। बाद में दूरदर्शन आया और दूरदर्शन और आकाशवाणी ने लिसनर्स का स्पेस शेयर किया। इसके बाद में प्राइवेट चैनल आए और अभी YouTube भी आया। सारे चैनल अब जितने भी श्रोता हैं उनके ध्यान को अपने अपने खींचने में लगे हुए हैं।

0: आकाशवाणी भी अपना कार्यक्रम अच्छे से अच्छा बना करके प्रस्तुत कर रहा है। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए तरीके से कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि आकाशवाणी में पहले मीडियम वेव और शॉर्ट वेव का बहुत ज्यादा महत्व था, लेकिन वर्तमान में आकाशवाणी में शॉर्ट वेव का प्रसारण लगभग बंद हो चुका है और शॉर्ट वेव की जगह इंटरनेट रेडियो ने ले लिया है, जिससे हम बहुत दूर बैठ करके भी रेडियो का आनंद ले सकते हैं। आकाशवाणी में पिछले 10 सालों में इंटरनेट पर बहुत अच्छे तरीके से रेडियो का प्रसारण जारी है। इंटरनेट के दो ऐप रेडियो के हैं, जिसमें न्यूज ऑन एयर और वेव्स ऐप, जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न प्रसारणों का लाइव प्रसारण होता है। साथ ही वेव ऐप में बहुत सारा जो पुराना रिकॉर्डेड मटेरियल है वो भी श्रोताओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। अगर आप फिर से रामायण देखना चाहें, महाभारत देखना चाहें या शक्तिमान देखना चाहें, तो वो आप वेव ऐप के माध्यम से आज फिर से भी देख सकते हैं। ये अपने आप में टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन के कारण ही संभव हो सका है। तो आकाशवाणी भी नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो निरंतर नए नए तरीके से अपने प्रसारणों को जारी करता जा रहा है और श्रोताओं से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आकाशवाणी का महत्व इस बात में भी है कि जहां दूसरे चैनलों की विश्वसनीयता उतनी नहीं है, आकाशवाणी की विश्वसनीयता आज भी सबसे ऊपर है। ये अपने आप में एक आकाशवाणी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज भी लोग कई माध्यमों से समाचार प्राप्त करने के बाद भी इंतजार करते हैं कि आकाशवाणी या दूरदर्शन से उस समाचार की पुष्टि हो जाए। ये अपने आप में हम लोगों के लिए एक गर्व करने की बात है कि आज भी हमारी विश्वसनीयता सबसे ऊपर। और आकाशवाणी का कार्यक्रम जितना स्तरीय है, आप दूसरे चैनलों पर देखेंगे तो वो स्तर अभी भी नहीं है। यहाँ के कार्यक्रमों का शब्दों का स्तर, यहाँ के कार्यक्रमों का कंटेंट बहुत ही उच्च स्तरीय होता है। यहाँ के कलाकार भी बहुत ही प्रतिभाशाली योग्य व्यक्ति होते हैं। जबकि आप दूसरे FM चैनल या अन्य जगह देखेंगे तो वो चीज नहीं है। यूट्यूब की चर्चा भी आजकल बहुत ज्यादा होती है कि यूट्यूब के कार्यक्रमों के कारण आकाशवाणी के कार्यक्रम पीछे आ रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि यूट्यूब में जो गाने के कार्यक्रम आते हैं उसमें उसके साथ में जो एक श्रृंखलाबद्धता है उस चीज की बहुत कमी रहती है। आकाशवाणी में जो गाने प्रसारित किए जाते हैं उसमें एक विषय वस्तु को भी चुना जाता है, साथ में उनमें क्रमबद्धता भी रहती है और गानों के साथ में उसके बारे में एक बेसिक जानकारी भी दी जाती है। इसीलिए लोग जब ट्रेवल करते हैं, कारों में रहते हैं, तो विविध भारती को पसंद करते हैं, ना कि यूट्यूब। आकाशवाणी का ये स्तर निरंतर बना रहे और हम लोग नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आज पुनः आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने और आकाशवाणी छतरपुर के 50 साल पूरे होने पर आप सभी को और श्रोताओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई।
1: धन्यवाद आदरणीय विनोद पुष्पत जी।

0: जरा।
1: आपने इस पर अभी बहुत ही सार्थक प्रकाश डाला। तो निश्चित ही जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। तो अभी भी आप लोगों की ऊर्जा बनी रहेगी और मंथन करके, गोते लगाकर अभी भी ऐसे ऐसे कलाकारों को आप सामने लाएंगे, मूंगा मोती के रत्नों की चमक बरकरार रहेगी, वह जगमगाते रहेंगे और यह सार्थकता बनी रहेगी। आवाज सुनाई देती रहनी चाहिए। आवाज का जादू समाप्त नहीं होता है, संघर्ष व प्रयास के साथ यह यात्रा जारी रहेगी और हम शताब्दी तक पहुंचेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की परिचर्चा यहीं तक हम समाप्त करते हैं।

आकाशवाणी के 90 वर्ष एवं आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष के सफर पर आयोजित विशेष परिचर्चा अभी आप सुन रहे थे, जिसका संचालन कर रही थी आभा श्रीवास्तव। मोबाइल ऐप प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकधारा कार्यक्रम। इसमें आज कलाकार हैं मगनलाल प्रजापति। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं मगनलाल प्रजापति से ये भजन।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: लीजिए अब सुनिए मगनलाल प्रजापति से ये कहरवा।

ये कहरबा अभी आप सुन रहे थे मगनलाल प्रजापति से। श्रोताओं, लोकधारा कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। इसमें आज कलाकार हैं मगनलाल प्रजापति। कार्यक्रम लीजिए, सुनिए इन्हीं के स्वर में ये ढिमरियाई।

0: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
3: लीजिए अब सुनिए मगनलाल प्रजापति से ये देवी भजन।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मगनलाल प्रजापति को आप सुन रहे हैं लोकधारा कार्यक्रम के माध्यम से। लीजिए अब सुनिए इन्हीं के स्वर में ये गारी।

बुंदेली व्यंजन पर केंद्रित इसी लोकगीत के साथ लोकधारा कार्यक्रम का ये सफर अब यहीं समाप्त होता है। इसमें आज कलाकार थे मगनलाल प्रजापति, ढोलक पर इनके साथ संगत कर रहे थे दीपक कुशवाहा और बेंजो पर थे जब्बार खान। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कल सुबह 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत सुनिए हिंदी काव्य पाठ इकबाल फजा से। सुबह 8:30 पर सुनिएगा धारावाहिक गीत गीता, इसका आप सुनेंगे भाग 4, शीर्षक होगा ज्ञान कर्म सन्यास और योग। लोकरंग में सुबह 9 बजे कलाकार होंगे राजा लाल विश्वकर्मा, इनके साथ ढोलक पर संगत करेंगे दीपक कुशवाहा और बेंजो पर होंगे जब्बार खान। 9:30 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। 10:30 पर हम लेकर आएंगे साप्ताहिक पत्रोत्तर कार्यक्रम भव्य, सहयोग राजेंद्र कुमार अहरवार का होगा और प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल आप सुनेंगे दिन में 11 बजे फोन करेंगी सुने कार्यक्रम, 12 बजे होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम, 12:30 पर संग्रहालय से, 1 बजे होगा महिला सभा कार्यक्रम, 2 बजे फिल्म संगीत, 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा, इसमें भी सुने बाल मन से क्रम में कृष नामदेव को, साथ ही होगी रोचक जानकारी और 2:50 पर सुनेगा फिल्म संगीत। ये सभी कार्यक्रम कल आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन सकेंगे। कल शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति में प्रसारित किया जाएगा। शाम 6 बजे भजन संध्या में कलाकार होगी अनुराधा पोटवाल।

शाम 6:30 पर कल लोकधारा में कलाकार होंगी खुशी तिवारी। शाम 7:20 पर ग्रामसभा कार्यक्रम में आप सुनेंगे धारावाहिक अटकन चटकन, इसका आप सुनेंगे कल भाग 4। भेंटवार्ता होगी, विषय होगा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, काम एक लाभ अनेक, विषय पर डॉ प्रदीप कुमार यादव से की गई बातचीत। और साथ ही होगी आज की सीख, रात 8 बजे भोपाल से पेश करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में।

कल रात 8:15 पर भोपाल से हम आपको सुनवाएंगे भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम डगर विकास की, विषय ग्रीन इंडिया मिशन। कल रात 9:30 पर दिल्ली से होगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कुछ गुमशुदा सूचनाएं। पहली गुमशुदा सूचना के रूप में गुमशुदा युवती का नाम है श्रीमती पूजा पत्नी जय सिंह, निवासी राम चबूतरा कालपी, थाना कोतवाली कालपी, जनपद जालौन। इनका रंग सांवला है, कद करीब 5 फुट के करीब है। मेहरून कुर्ती, काला पलाजो और लाल दुपट्टा इन्होंने पहने हुए हैं। इनके साथ 5 साल का एक बालक भी है। ये दिनांक 23 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को सुबह 8 बजे घर से मेडिकल पर दवाई लेने की कहकर निकली थी।

इसके बाद ये वापस नहीं आई। इनके बारे में यदि किसी को भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रभारी निरीक्षक थाना कालपी जनपद जालौन का नंबर है 9454030596। क्षेत्राधिकारी थाना कालपी जनपद जालौन का नंबर है 9454 01429। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है तो इन नंबर पर संपर्क करके इन्हें सूचित कर सकते हैं। एक और संपर्क सूत्र इनके यहां का नंबर है 7318529968। ये सूचना यहीं समाप्त होती है। अगली गुमशुदा सूचना के रूप में हमें प्राप्त हुई है। गुमशुदा युवती का नाम है कुमारी खुशबू, पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी अजनारी, पोस्ट चिल्ली, तहसील उरई, थाना कोतवाली उरई, जनपद जालौन से। इनकी उम्र 25 वर्ष है। बाल इनके लंबे काले हैं, रंगोरा है, लंबाई करीब 5 फुट 2 इंच के करीब है। आंख कान नाक सामान्य है। इनके बारे में यदि कोई भी किसी को सूचना प्राप्त होती है तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है हल्का प्रभारी का नंबर है 7607580191। एक और नंबर है क्षेत्राधिकारी शहर 9454014427। ये दिनांक 8/4/2026 को रात्रि 1 बजे से घर से लापता हो गई हैं। इनके बारे में यदि कोई भी आपको जानकारी प्राप्त होती है तो जो नंबर अभी बताए गए हैं उन नंबर पर संपर्क करके उन्हें सूचित किया जा सकता है। फिलहाल ये सूचना भी यहीं समाप्त होती है। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकरंजन। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की, साथी होगी आज की सीख, विषय होगा छाती जुड़ाना। मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: 10 मिनट होने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की न्यायपालिका को 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना होगा, कहा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हैग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा सिर्फ भारत में हो रहे हैं।
1: आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है।
0: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आज जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री बेघवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की यह पहल साधारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले डिजिटल पुलिस नेटवर्क के उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश मिसाल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी ने मानव जीवन को सरल बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: खास करके आज के समय में जब FIR से लेकर के बीच की बहुत सारी कड़ी होती है, फॉरेंसिक लैब से लेकर के कई सारे प्रकार के तंत्र रहते हैं, उन सब के आधार पर हम त्वरित गति से जो जिसकी आवश्यकता उसको लाभ मिले उस तक मदद पहुंचाए। क्योंकि न्याय का मतलब ही है विलंब से छुट्टी, न्याय का मतलब ही है अन्याय से मुक्ति।
0: शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका है। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news on AIR

0: newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि डेंगू बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता, जागरूकता और सतर्कता बहुत जरूरी है। स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन कर मरीजों की निःशुल्क डेंगू और मलेरिया की जांच की गई। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक बोधशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वागदेवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। धार जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने कहा कि शहर में शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं।
2: शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, आम जनता अपना रूटीन वर्क, रेगुलर जो रूटीन वर्क कार्य करे वो कर सके, इस प्रकार का कोई भय ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लगभग 1000 का फोर्स हमें उपलब्ध कराया है, जिसको विभिन्न फिक्स पैकेट और सेंसिटिव एरियाज में लगाया गया है। जैसे कि सीसीटीवी सर्वेलेंस के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस की नजर बनी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि या कोई भी इस पर पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
1: राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। वहीं डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्णा जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के मुख्य अभियंता शैलेंद्र शुक्ला द्वारा सागर जिले के खुरई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। बच्चों में मानसिक क्षमता, स्मरण शक्ति और ब्रेन एक्सेस कौशल हेतु आगर मालवा में 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। खंडवा में डोडवाली अमावस्या आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सीहोर के बुधनी सिविल अस्पताल में पोषण टोकरी वितरण कार्यक्रम किया और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। शिवपुरी कलेक्टर ने आज बिछोर में सनघट्टा सिंचाई परियोजना अंतर्गत सनघट्टा डैम का निरीक्षण किया। नीमच जिले में आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर जमुनिया कला के औषधालय परिसर में योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुना जिले में किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के विकास खंडों में कृषि रथ के माध्यम से जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज किया गया। मंडला में आयोजित आदि उत्सव के दूसरे दिन रामनगर में जनजाति संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली विरासत की छटा देखने को मिली। संपर्क अभियान 2026 के अंतर्गत अशोकनगर जिले में 11 स्थानों पर विद्युत समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ग्राम सभा सुनने वाले सभी पंचन खा राधा बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम। देखो पंचो, अपन एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हर दिन एक अपनो अलग ही महत्व लेके आउत है, हर दिन को उत्सव के रूप में मनाओ जाते हैं। तो यही श्रृंखला में आज है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, जो हर साल 16 मई का मनाओ जाते हैं। 16 मई 1960 का भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेनन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की याद में जो दिन मनाओ जाते हैं, जो दिन विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका को जश्न मनावे के लाने यूनेस्को द्वारा आयोजित करो जाते हैं। इको मुख्य उद्देश्य लोगन खां प्रकाश और प्रकाश पे आधारित तकनीक के बारे में जागरूक करबो है। प्रकाश से हमें देखने की क्षमता मिलत है और ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण में सहायक भी होती, और सौर ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण में सहायक सोई होते हैं। लेजर और फाइबर ऑप्टिक्स जैसी तकनीकें संचार और चिकित्सा में उपयोगी हैं। प्रकाश विज्ञान ने आधुनिक तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तभी तो कहते हैं प्रकाश है विकास का आधार। और ऊर्जा बनाए उज्जवल भविष्य बनाए, ऊर्जा बचाएं उज्जवल भविष्य बनाएं। आज के दिन को मुख्य उद्देश्य विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ावो, ऊर्जा संरक्षण को मुख्य उद्देश्य है। ये संदेश हम जन जन तक पहुंचाऊत हैं और ऊर्जा के उपयोग के लाने लोगन का प्रोत्साहित करबो और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करबो भी आज के दिन को महत्वपूर्ण काम है। तो सब जने मिलके बोले सौर ऊर्जा अपनाएं, पर्यावरण बचाएं। जो दिन याद दिलाऊत है कि कैसे प्रकाश हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को अटूट हिस्सा है, जो ज्ञान, आशा और प्रगति को प्रतीक सोई है। तो इन्हीं बतकावन के संगे लेते हैं एक अल्प विराम और मिलते ही अल्प विराम के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: देखो बंचो, आज है शनिवार और अपने श्रोतन का इंतजार रहा थे उनके फोन कॉल्स पे आधारित बुंदेली लोकगीतन के फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकरंजन। तो सुनत हैं हेलो लोकरंजन, प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति जोगी। सो लो सुनो।

0: हेलो लोक रंजन,
1: हेलो लोक रंजन सुनने वाले सभी भैया बहनन का राधा बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम। तो देखो भैया बहन हरो, लोक रंजन कार्यक्रम में फोन कर भी किलाने अपनो एसटीडी कोड है छतरपुर को 076-82। इसके संगे अपने फोन नंबर है 241-588 और एक और फोन नंबर है 298-029। और आप हर शुक्रवार खां दोपहर में 3:30 तक हर शुक्रवार खां फोन कर सकत हुई किलाने, और यही के संगे संगे हर शनिवार खां शाम के 7:20-8 के बीच में आप अपनी फरमाइश के लोकगीत सुन सकत हो। तो देखो भैया बहन हरो, अब लोक रंजन कार्यक्रम की शुरुआत करत हैं और देखो जाओ आगो अपनो पहनो फोन कॉल। हेलो,
2: राजेंद्र यादव बोल रहा शोर से।
1: हाँ भैया, और सुनाओ क्या हाल चाल है भैया?
2: सब बढ़िया है, तो गर्मी लग चुके हैं और थोड़ी बहुत खेती भी मूंग की लगी है।
1: अच्छा अच्छा, तो कब आओगे भैया?
2: मूंग भी लगो है और उड़दा भी थोड़े लगे हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो इस साल की खेती कैसी रही अपनी? जो
2: खेती तो मैम ठीक है, अभी पानी गया था, वो भी इतना हवा हवा तो काफी थोड़ा बहुत नुकसान भी हो गया है, और बाकी फसल ठीक है।
1: अच्छा अच्छा,
2: 2-4 दिन में मतलब कटाई लग जाएगी।
1: अच्छा अच्छा, तो का सुन बुचाओ भैया आज? अपन
2: आज सुनवा दियो, कन्न भूषण पाठ आपको कोई भी लोकगीत।

0: भूषण पाठक जी को कौनो भी लोग गए। चलो भैया, और घर में सबके का हाल चाल है?
1: घर में सब ठीक है, मम्मी पापा सब लोग, भैया भाभी लोग सब लोग ठीक है घर में।
0: चलो चलो, तो सब जनन का सुनवाते हैं जो चंद्रभूषण पाठक जी को लोकगीत, ठीक है भैया?
1: नमस्ते
0: जी, नमस्कार।
2: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्कार भैया, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
2: मैं ग्राम पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवीदी नहर वाला बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: जी भैया जी, बताइए।
2: आज हमको लोकगीत सुनना है।
0: जी भैया, किसका लोकगीत सुनना चाहेंगे?
2: आज चंद्रभूषण पाठक जी की आवाज में सुनवा दो आप गीत।
0: ठीक ठीक ठीक, और सुनाइए क्या हाल चाल है?
2: और सब बढ़िया है बहन जी।
0: खेती किसानी में क्या चल रहा है?
2: अभी थोड़ा घर पे शादी थी तो उसमें बिजी बने रहे।
0: अच्छा अच्छा, किसकी शादी हो गई भैया?
2: एक लड़का की थी, एक लड़की थी परिवार में।
0: अच्छा अच्छा, परिवार में। जी जी
2: हाँ, तो अब तक उसमें बिजी बनी रहे। अब तो टाइम मिला तो हमने कहा चलो फोन लगाए लोक रंजन में।
0: जी जी बिल्कुल,
2: तो सफलता मिल गई है हमको।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को इंतजार रहता है आपके फोन कॉल्स में। ऐसे मत कहिए, हम हमेशा इंतजार करते हैं आपके फोन कॉल्स, आपकी चिट्ठियों का हमेशा स्वागत है आकाशवाणी छतरपुर में। तो आपको सुनवाते हैं चंद्रभूषण पाठक जी का ये लोकगीत, ठीक है?
2: जी नमस्ते बहन जी।
0: नमस्कार भैया, नमस्कार। हेलो, को बोल रहे हैं?
3: हाँ जी मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार भैया
3: जी, हम परशुराम जोशी ग्राम कलानी से।
0: अच्छा अच्छा, परशुराम जोशी जी। हाँ भैया नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: आपसे बात हुई तो अच्छे हो गए, बढ़िया मैडम।
0: अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, अच्छा ही रहना चाहिए हमेशा।
3: जी,
0: हम
3: जी।
0: सब लोगों की यही मनोकामना रहती है कि सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना
3: जी।
0: तो और भैया क्या चल रहा है अभी?
3: अब अभी हाल तो घर मकान का काम लगाए हुए मैडम।
0: अच्छा अच्छा, मकान बनवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो पहली मंजिल बन रही है कि दूसरी मंजिल बन रही है?
3: जी मैडम, पहली बन रही
0: है। अच्छा अच्छा, तो अभी इसके पहले कच्चा मकान था?
3: जी जी, कच्चा था।
0: जी जी, चलिए बढ़िया है, हमारी शुभकामना है आपका मकान जल्दी से और अच्छा तैयार हो।
3: जी, जी।
0: तो भैया क्या सुनना चाहेंगे आज?
3: आज हम मैडम चंद्रभूषण की आवाज सुनना चाहते हैं।
0: सुनवा
3: दीजिए मैडम। नमस्ते।
0: ठीक है, नमस्कार।

0: हेलो लोक रंजन।
1: हाँ लोक रंजन से भैया आपको बोल रहे।
0: उत्तम सिंह बघेल बात कर रहा हूँ मैं।
1: उत्तम जी बघेल जी भैया नमस्कार। हाँ। कैसे हैं आप?

0: बढ़िया
1: बढ़िया हैं। और खेती किसानी कैसी चल रही भैया?
0: खेती किसानी में कुछ नहीं है, धूप पड़ रही है।
1: अच्छा, अभी कुछ नहीं है।
0: अब बरसात हो जाए तब अब शुरुआत हुई है।
1: अभी जो पिछली साल कटाई भाई, सो कैसी रही खेती अपनी?
0: अब बढ़िया रही।
1: बढ़िया रही इस साल, है ना? तो घर में सबके का हाल चाल है? और
0: बस बढ़िया है।
1: ब्याह शादी है घर में कहू के की नहीं आवे?
0: शादी शादी हो गई है, 20 अप्रैल में थी अपनी बिटिया की थी।
1: अच्छा अच्छा, बढ़िया है। तो क्या सुनबो चाहे भैया आज? आप
0: सभी तो देवी हर बार का सुना दो कोई।
1: जी भैया बिल्कुल, चलो ले सुनवाओ थे अपन का।
0: जी जी।
1: हेलो,
2: जिला सागर पिपरिया करकट, संजीव अहिरवाल जी बात कर रहे हैं। दीदी जी।
1: जी जी, तो भैया क्या सुनना चाहेंगे आज?
2: हाँ, कविता अहिरवाल जी का सुनवा दो।
1: सुनवाते हैं आप, और सुनाइए भैया क्या हाल चाल है?
2: बस कुछ नहीं दीदी, बैठे थे तो थोड़ी ध्यान आई हमने की अब टाइम चल रहा है फोन लगाने का।
1: ध्यान करते रहना है बिल्कुल, है ना? और हर शुक्रवार को 3 से 4 फोन करिए लोक रंजन में सुनने के लिए, और प्रसारण सुनेगा आप शनिवार को शाम को 7:20 से, है ना? ठीक है भैया।
2: ठीक है,
1: धन्यवाद भैया, नमस्कार।
2: ठीक है, नमस्कार जी। जिला सागर तहसील बंडा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, चरण सिंह।
1: अच्छा अच्छा भैया, नमस्कार।
2: लोकगीत सुनना था मैम
1: जी। लोकगीत तो सुनना था, किसका सुनेंगे भैया?
2: कोई सा भी लोकगीत।
1: कोई सा भी सुनवाते हैं, चलिए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ भैया कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार भैया, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं ग्रामवा पोस्ट गोना कुशवाड़ थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में तो दीपक कुमार नामदेव बात कर रहा है दीदी।
0: जी जी जी ना दीपक भैया नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी बढ़िया है, आपको कॉल ही ट्राई कर रहे थे।
0: अच्छा अच्छा, कैसा माहौल है आपके यहाँ, कैसा चल रहा है अभी सब कुछ?
1: जी अभी तो शादी ब्याह चल रहा है तो खूब दुकानदारी भी चल रही है और बाजार मार्केट में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, साथ में गर्मी भी बहुत ही तेज धूप भी हो रही है।
0: हाँ भैया, चलो शादी ब्याह हो रहे हैं इतनी गर्मी में
1: जी,
0: थोड़ी दिक्कत तो होता ही है ना।
1: जी जी,
0: हाँ चलो आपकी दुकानदारी भगवान करे दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करो, आप ऐसी आपकी दुकानदारी खूब चले। तो कसन वो चाहो।

0: हेलो लोक रंजन।
1: हाँ लोक रंजन से बोल रहे भैया, आप कौन?
0: नमस्कार बहन जी।
1: नमस्कार भैया, नमस्कार। आप कौन बोल रहे भैया?
0: ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहे।
1: जी भैया, कैसे हैं आप?
0: हाँ बढ़िया हम, आप लोग कैसे हैं?
1: हम लोग भी बढ़िया हैं, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, हमारे श्रोता हमें सुनते रहें, बस यही तो चाहिए और क्या।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: आप लोगों के जो फोन कॉल्स आते हैं, आप लोग की जो चिट्ठियाँ आती हैं, उसी से हमारा मनोबल बढ़ता भी है कि हम और अच्छा, जितना अच्छा कर सकें आपके लिए, जो सुनवा सकें। तो भैया क्या सुनना चाहेंगे आज?
0: आज हमको सुननी है चिरैया की आवाज में।
1: सुनवाते हैं आप। नमस्कार।
0: ठीक है, नमस्कार।

0: लोक रंजन
1: हम बोल रहे हैं ग्राम खड़ी चिरा जिला अशोक नगर से आसाराम राजा के बहन जी।
0: जी जी जी भैया नमस्कार। भैया
1: नमस्कार।
0: अच्छा कैसे हैं भैया आप?
1: छे हेंगे।
0: की को सुनने बताओ?
1: देशराज पटेरिया को सुनवा दो।
0: अच्छा अच्छा देशराज पटेरिया जी को कहा सुनवो चाहो? देशराज पटेरिया जी को
1: कोई सा भी सुनवा दो।
0: अच्छा अच्छा ठीक है भैया आपको सुनवाओ थे देशराज पटेरिया जी को। नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: हेलो लोक रंजन से।
0: हाँ लोक रंजन से बोल रहे हैं भैया आप कौन बोल रहे हैं?
2: हाँ नमस्ते दीदी।
0: नमस्कार भैया। नमस्कार आप कौन?
2: हम पाठक मोहल्ला मोहन कला से पाठक हम पाठक बोल रहे दीदी।
0: जी जी जी भैया किसका सुनना चाहेंगे आज लोकगीत?
2: आज दीदी हमें देशराज पटेरिया जी का सुनवा दो।
0: देशराज पटेरिया जी का? जी बिल्कुल
2: जी दीदी
0: सुनवाते हैं आपको देशराज पटेरिया जी का। और सुनाइए भैया क्या हाल चाल है?
2: और दीदी बढ़िया है बस गर्मी तेज हो गई।
0: बस गर्मी तो बहुत पड़ रही भैया।
2: हाँ तो लू से बचाव करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया सुनवाते हैं आपको देशराज पटेरिया जी की आवाज में।
2: जी दीदी नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।

0: हेलो लोकरंजन से।
1: जी लोकरंजन से राधिका गुप्ता बोल रही हूँ।
0: जी जी दीदी नमस्कार।
1: नमस्कार भैया, आप कौन बोल रहे भैया?
0: मैं बीरेंद्र कुमार शुक्ला अपने गांव रतवास से बात कर रहे हैं।
1: जी जी जी रतवास से। जी भैया आपके पत्र मिलते रहते हैं?
0: हाँ बिल्कुल
1: बिल्कुल। और भैया का हाल चाल है?
0: सब बढ़िया है बहन। आज हमारी एक लोकगीत है छोटे लाल यादव जी की आवाज में।
1: छोटे लाल यादव जी की आवाज में? अच्छा
0: हाँ, एक लोकगीत है वो सुनवा दीजिए।

देखो भैया बहनरो, हमने आज सुनवाए आपका आप लोगों के मनपसंद लोकगीत, और यही के संगे आज को लोक रंजन कार्यक्रम समाप्त होते हैं। देव अपनी राधा बहन का आज्ञा पंचो राम राम।

0: हेलो लोक रंजन,
1: देखो पंचो, अब अपन सुनो ऐसो नोनो लोक रंजन कार्यक्रम। उम्मीद है आप लोगों का कार्यक्रम पसंद आओ हुए और ये नई बातों के संगे लिए थे छोटो सो अल्प विराम और मिलत हैं ई अल्प विराम के बाद।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
1: देखो पंचो, अपन सब जने कहूं ना कहूं ऐसा कहत रहा थे कि छाती जुड़ा गई, माने बहुत संतोष मिल गो, बहुत खुशी मिलवो या बहुत शांति मिलवो। जैसे अबे मोड़ा मोड़ियन को बारहवीं को रिजल्ट आओ यानी कि परिणाम आओ तो देख के बहुत बढ़िया लगो, छाती जुड़ा गई। लंबे समय से मोड़ा मोड़ी या परिवार को कोनो भी सदस्य बाहर गए हुए और सुरक्षित घरे आ जाए तभी देख के लगन लगा थे कि छाती जुड़ा गई। कोई लंबी बीमारी से सही हो जाते तो भी अपन कहा थे छाती जुड़ा गई, माने सीधी सी बात है जौन भी बात या खबर से मन की व्यथा या बेचैनी दूर हो जाए, हृदय खां शांति मिले और सुखद अनुभूति मिले। जब भी को कठिन काम या झंझट से मुक्त हो वो चाहे और समय पे मुक्त भी हो जाए तो कहा थे छाती जुड़ा गए। आजकल के समय में को अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करत है, जैसे विद्यार्थी पढ़ाई से बचबो चाहते हैं, कर्मचारी काम नहीं करबो चाहते यानी कि काम से बचबो चाहते हैं, और कछु लोग अपने परिवार के कर्तव्यन खां परिवार के कामन से बचबे के लाने भी कहते हैं कि छाती जुड़ा गई। पे अपन का ऐसो करने नहीं आ, काहे कि अगर अपन ऐसो करन लगे तो आगे आवे वाली अपनी पीढ़ी का अपन का सीख दे रहे, यानी कि ऐसो अपन का बच्चन का भी सिखाने हैं कि कछु से डराने नहीं आ। अगर पढ़ाई से डरा हो तो आगे कैसे बढ़ो। घर में को आवे की खबर सुन के कई बार तारो लगा के भग जात लोग बाग और कह देते की छाती जुड़ा गई। सो ऐसो नहीं करने आए कि अपने घर में मेहमान जो होते हैं, अतिथि जो होते हैं, वे भगवान के समान होते हैं। को आरो है तो उनको मन से जितनो अपन से हो सके उतनो स्वागत सत्कार करो चाहिए। विद्यार्थियों का भी इस चीज को विशेष ध्यान रखो चाहिए कि मेहनत करबे से सफलता मिलत है। अगर आज हम मेहनत कर ले हैं तो कल सफलता हमारे कदम चूम है, और अगर आज हम डरा हैं और चिमा के शांति से बैठ जाए कोने में, अरे को पढ़े माए शांति से बैठ जाओ, छाती जुड़ा गई। सो ऐसो नहीं करने है, का है कि अगर अपन ने ऐसो करो तो अपन आगे सफलता प्राप्त न कर पे हैं। यही समय होते हैं जब विद्यार्थी जीवन आपका दाव गौ है, जब आपके ऊपर कोनो जिम्मेदारी नहीं है, तो यही समय में अपन खा अच्छी मेहनत करने हैं और हमेशा ध्यान रखने हैं जहां भी अपन काम करत हैं यानी कि जहां अपन कर्मचारी हैं उते पे अपन खा जी तोड़ मेहनत करने हैं। ऐसो नहीं कि पराव काम तो आए अरे निपटाओ और मां चलो अपने घर, नहीं, अपन खा जिम्मेदारी से पूरी लगन से पूरी मेहनत से काम करने हैं। तभी तो कहत हैं कि अपनो धंधा करो दूसरे की नौकरी समझ के, यानी कि समय से जाओ और समय से आओ और समय से खूब मेहनत करो, और दूसरे की नौकरी अगर कर रहे हो तो अपने काम समझ के करो, यानी कि समय से बिल्कुल उठ के जाने हैं, नियम से मेहनत करने हैं कि जितनो ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं उतनी ज्यादा हमें सफलता प्राप्त हुई, उतनी ज्यादा आमदनी अपन की हुई है। तो ऐसो अपन का करने हैं, और अगर अपन ऐसो नहीं कर रहे हैं तो निश्चित बात है कि अपन का आगे कहूं ना कहूं इस चीज को मुआवजा भोगने पड़े। तो छाती जुड़ाने हैं, लेकिन जब अपन के मन में व्यथा हुई

जब कनु झंझट होए, कनु बहुत बड़ी मजबूरी होए, और उसे अपन खां जब निजात मिल जाए तब अपन खां जो मुहावरा को प्रयोग करना है, यानी कि छाती जुड़ा गई, आज हमारे बच्चा अपनी लाइन से लग गए, आज हमारे बच्चा खां अच्छी उन्नति मिल गई, आज हमने कौन बहुत अच्छो काम करो, कौन बहुत गरीब की मदद कर दे, तब हम अपन ई बात को प्रयोग कर सकते हैं कि छाती जुड़ा गई। लेकिन हमेशा हमेशा जब आप नहीं सीखने आए कि काम चोरी करो, काम ना करो, घर में कोई आ जाए सो मुंह बना के बैठ जाओ।

की छाती जुड़ा गई। लेकिन हमेशा हमेशा जब आप नहीं सीखने आए कि काम चोरी करो, काम ना करो, घर में कोई आ जाए सो मुंह बना के बैठ जाओ कि अरे हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है, मूड में पट्टी बांध के पड़ रहे कि छाती जुड़ा गई, अरे भैया हमारे बस की नहीं है, अरे हम तो ना कर पावी, सो ऐसो नहीं करने आए। भैया बहन का करत है कई बार को के आवे की खबर सुनी सो पहले झूठी बोल दे कि हम तो घरे है ही नहीं है, हम तो निकल गए, हम तो हार में है, हम तो इतने हैं, हम तो होते हैं, सो ऐसो नहीं अपन का करने आए, अपन का सबको स्वागत सत्कार करने हैं, सबको मान सम्मान करने हैं। और अब बढ़ाओ थे अपने कार्यक्रम का आगे और आपका बताओ थे कल की ग्राम सभा के कार्यक्रम। तो कल की ग्राम सभा में अपन सुने धारावाहिक अटकन चटकन और भेंट वार्ता हुई है। भेंट वार्ता को विषय हुई है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई काम एक लाभ अनेक विषय पे डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव से बातचीत हुई है। तो इन्हीं बातन के संगे अब हो रही है जाबे की बेरा। तो निश्चित रूप से आज अपन ने जो कछु भी बतकाव करे हैं तो अपने भैया बहन इन बातन को निश्चित रूप से ध्यान रखें और आगे जीवन में ऐसे काम करें जिसे दूसरन को भलो हुए, कोई को नुकसान न होवे, अपन अच्छे से अच्छे कर्म करने की कोशिश करने हैं, अच्छे काम करो, समय पे करो और अपनों समझ के करो जिसे कि अपन का भी लाभ हुए और सामने वाले का भी लाभ हुए। तो पंचो देखो बतकाव तो होते ही रहा थे और देखो अपन खां आज अपन ने लोक रंजन सुनो और लोक रंजन के संगे संगे आज अपन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के ऊपर भी बतकाव करे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल 16 मई का अपन मनाउते हैं ना, और इसके संगे संगे अपन खां प्रकाश के महत्व का जरूर समझो चाहिए। जैसे आज अपन ने मनाओ है ही को मतलब जो नहीं है कि आज मना के अपन का भूल जाना है, अपन खां ईखा हमेशा समझाने हैं, दूसरन का भी बताने हैं कि प्रकाश हमारे जीवन में एक बहुत बड़ो महत्व रखत है। तो ईखा अपन का भूलने नहीं है, बचत करने हैं, ऊर्जा बचाने हैं, संरक्षण भी करने हैं इको ताकि अपने आगे आवे वाली पीढ़ियन का कोनो भी परेशानी ना हो। तो इन्हीं बतकावन के संगे दियो अपनी राधा बहन का आज्ञा पंचो राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा कार्यक्रम। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं सुर्खियों में कार्यक्रम, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल से आप सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत नीदरलैंड संबंधों में नया अध्याय पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। डॉक्टर अशोक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
2: अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नीदरलैंड्स में हैं और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स में क्या कहा।
4: साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल AI समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले जी

0: G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था, ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है। और हाँ, चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था।
1: ऐसे समय में जब तमाम हम चीजें देख रहे हैं, वर्ल्ड में कई सारी चीजें नजर आ रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण और इसके मायने क्या हैं?
2: विश्व में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा जो ये वाला जो दशक है शायद ये आपदा का दशक माना जाएगा, डेकेड ऑफ क्राइसिस माना जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पर आपदाएं आई हैं। एक तो पहले कोविड आया, उसके बाद युद्ध आया और अभी हम देख रहे हैं जो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या पूरे विश्व में बहुत इसमें तंगी आ रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा है, 15 मई 20 मई तक ये हो रही है। कल प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में थे, अबू धाबी में थे, वहां पर उनके राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। केवल 2.5 घंटे का वहां पर उनका पड़ाव था, परंतु बहुत ही जिसे कहा जाए ठोस बात हुई और अपने संबंधों को बहुत तेजी से आगे लेकर जाया गया। और 4 देश जो है वो यूरोप के देश है, नीदरलैंड्स पहला पड़ाव है जहां पर कि वो आज है और कल यहां से स्वीडन में जाएंगे, फिर स्वीडन के बाद 2 दिन वहां पर रुककर गोटेनबर्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग को एड्रेस करेंगे और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन जो कि मोदरातना पार्टी से हैं उनके साथ उनकी बातचीत होगी। उसके बाद वो नॉर्वे जाएंगे ओस्लो में जहां पर कि उनकी बातचीत होगी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉन स्टोर के साथ और वहां पर भी जैसे नीदरलैंड्स में उनकी मुलाकात हुई है अभी वहां के राजा और रानी के साथ, वहां नॉर्वे में भी वहां भी उनके किंग और क्वीन के साथ उनकी मुलाकात होगी। वहां पर नॉर्डिक समिट भी वहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद आखिरी पड़ाव होगा उनका इटली में 19 और 20 तारीख को। और सभी जगह जहां जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने द्विपक्षीय संबंधों को तो उसमें और ऊर्जा मिलेगी, परंतु मेरे विचार से एक संदेश पूरे विश्व को भी जाएगा जो भारत जो बदलता हुआ परिपेक्ष है उसमें बहुत ही एक्टिव है और अपने हितों को आगे ले जाने के लिए बहुत तेजी बहुत ऊर्जा और बहुत सक्षमता से काम कर रहा है।
1: अशोक जी, आज प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट है उनका ये। आपको क्या लगता है कि कोविड महामारी और जो जारी संघर्ष है, ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियां हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
2: देखिए, बहुत ऐसे विषय हैं जिनमें कि हम नीदरलैंड के साथ अपने संबंधों को सहयोग को बढ़ाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। जैसे हमारे सेक्रेटरी वेस्ट ने कल जब उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है उसको फोकस कहां पर रहेगा, तो उन्होंने कहा 3 T's पर रहेगा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट, क्योंकि हमारा टैलेंट वहां पर हर यूरोप के देश में जाता है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से जाते हुए कही, उन्होंने कहा ये जो सारा उनकी यात्रा हो रही है 4 देशों में, यूरोप के देशों में, वो इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो कि बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक सहयोग जो अग्रीमेंट है वो इस साल के पहले 26 जनवरी को उसको पूरा किया गया। आपके सभी सुनने वालों को ये मालूम होगा बातचीत की शुरुआत, नेगोशिएशंस की शुरुआत 2007 में हुई थी, तो मतलब 19 साल के बाद इसको हम तोड़ तक पहुंचा पाए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व में जो बदलाव हो रहा है सबको चाहिए और यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा जो हमको सप्लाई चेन ऐसी चाहिए जो कि रिलायबल हो, जो कि स्टेबल हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। और दोनों ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत की अर्थव्यवस्था $4 trillion से ऊपर है, यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को अगर देखा जाए तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था करीब $20 trillion के आसपास है, तीसरी सबसे विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जो इनका सहयोग होगा तो इन देशों के लिए बेहतर तो होगा परंतु पूरे विश्व में व्यापार को स्टेबिलाइज करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होगा।
1: अशोक जी, अभी आपने 3 T's का जिक्र किया और यूरोप की जब हम बात करते हैं तो

0: लगातार बदलते हुए व्यापार नियम देखने को मिलते हैं, कार्बन टैक्स, सप्लाई चेन की बात होती है, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं वो भी कहीं न कहीं किसी भी चर्चा में एक एजेंडा के केंद्र में रहती हैं। तो भारत और नीदरलैंड्स अपने साझेदारी को ऐसे में किन रणनीतिक स्तर तक ले जा सकते हैं?
1: इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, परंतु हमको ये भी देखना है क्योंकि अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हमारे अपने हित में है। और आपने देखा होगा जो चाहे वो SDG 2030 के हो या फिर हमने अपना जो एक कमिटमेंट दिया है कार्बन फ्री, कार्बन न्यूट्रल अपनी इकोनॉमी को बनाएंगे बाय 2070, और हमने बहुत सारे ऐसे मापदंड किए हैं जो कैसे हम ग्रीन एनर्जी 2030 तक हम कैसे अपने 45% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को हम ग्रीन एनर्जी के द्वारा करेंगे। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी, आपको याद होगा 2015 में जब कॉप पेरिस में हुआ था, तो वो एक क्षेत्र है जिसमें हम आगे चल रहे हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र है, और जो इंडो पैसिफिक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक पोजीशन दिया है इंडो पैसिफिक के ऊपर जिसमें वो कहते हैं जो हमको फ्री, ओपन, स्टेबल, प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक की मांग है उनकी। नीदरलैंड्स तो अपनी गाइडलाइंस उन्होंने दी है, इंडिपेंडेंटली दी है 2020 में, और भारत का जो स्टांस है वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है और इसीलिए उसमें हम उनके साथ सहयोग करते हैं। और टेक्नोलॉजी जहां बात है, स्टार्टअप्स की जहां बात है, भारत बहुत इसमें अग्रणी श्रेणी में आ गया है, बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है। और चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो UPI हो जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जो करीब विश्व में जितना भी ये डीलिंग होती हो कैशलेस ट्रांजेक्शन की, तो उसमें विश्व में आधे से ज्यादा भारत में होती है हमारे यहाँ। तो हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इन सब में जो यूरोपियन देश हैं ये सब ही बहुत ही अग्रणी श्रेणी में हैं और इनके साथ काम करके दोनों देशों के हितों को बहुत फायदा हो सकता है।
0: अशोक जी, भारत और स्वीडन की अब हम बात करते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगले अपने दौरे में स्वीडन पहुंचेंगे, तो वहां भी साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात जरूर होगी, तो इस यात्रा से क्या चीजें निकल करके आने वाली है अगर मैं तकनीकी निवेश, रणनीतिक सहयोग और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों की बात करूं?
1: जहां तक टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है उसमें तो बिल्कुल सबसे आगे है, अग्रणी है। मैं रक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे है और अभी हमने ये 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के उसमें उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है साब, जो कि ग्रिपिन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, उनका यहां पर अभी पिछले साल इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में, जो कि हमारे रक्षा के संबंधों को बहुत आगे लेकर जाएगा। ग्रीन ट्रांजिशन में भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं स्वीडन के साथ और इनको आगे और जोर मिलेगा क्योंकि यहां पर अभी जब बातचीत होगी, जैसे मैंने कहा गोटेनबर्ग में एक समिट को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन, उसके साथ साथ यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन वो भी वहां पर होंगी, उनसे भी बातचीत होगी। तो जो हमारा इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसको भी आगे कैसे ले जाया जाए, इस क्षेत्र में कैसे आगे ले जाया जाए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। देखिए ये वाले देश हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, पांच देश हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है। इनके पास ये छोटे देश हो, उनकी छोटी जनसंख्या हो, छोटा इनका क्षेत्रफल हो, परंतु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बिल्कुल ही अग्रणी है। और स्वीडन तो और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो पहला इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था वो 2018 में स्वीडन ने ऑर्गेनाइज किया था, दूसरा वाला 2022 में डेनमार्क में हुआ था, और अभी जब नॉर्वे में फिर से तीसरा इंडिया ईयू नॉर्डिक समिट होगा, तो इसमें पांच देश के, जो पांच देश मैंने गिनाए हैं, उन सभी देशों के प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे, उनसे बातचीत होगी और अपने संबंधों को इन सभी क्षेत्रों में आगे कैसे और ले जाया जाए और कैसे गहरा किया जाए उसके ऊपर बातचीत होगी।
0: अशोक जी, बदलती हुई जो हमारी ब्लू इकोनॉमी जिसमें तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल की बात हो, सस्टेनेबल फिशरीज की हम बात करते हैं, ऑफशोर विंड और ग्रीन शिपिंग जो कि भी आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में नॉर्वे के साथ हमारी जो साझेदारी बढ़ रही है उसको और प्रगाढ़ करने में प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है?
1: देखिए, जहां तक आप नॉर्वे की बात करते हैं और स्वीडन और फिनलैंड भी काफी हद तक उसी क्षेत्र में आते हैं, डेनमार्क भी उसी क्षेत्र में आता है, ये सब देश वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो चलते हैं। नॉर्वे

0: में फॉसिल फ्यूल्स, गैस, ऑयल बहुत अधिक मात्रा में है, जो कि उनके नॉर्थ सी से वहां से ऑफ सी जो उनके एक्सप्लोरेशन है उससे लेकर उसका वो प्रयोग करते हैं। आपके सुनने वालों को ये मालूम होगा जो जब रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस से तेल लेना, गैस लेना बंद कर दिया था, तो तब नॉर्वे और डेनमार्क से बहुत मात्रा में यूरोप के देशों को यह सप्लाई हुआ था। और नॉर्वे में 95% से ज्यादा जो वहां पर वाहन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब वहां पर फॉसिल फ्यूल के से नहीं चलते हैं। और इसीलिए जब हम भी अपनी एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी की आपने बात की है, और ब्लू इकोनॉमी में भी नॉर्वे बहुत ही अग्रणी है। फिशरीज में वो बहुत ही उसको माहिरता हासिल है। हमारे अपने क्षेत्र में तो हम जिसे कहा जाए पायरेसी है, मरीन डोमेन अवेयरनेस है, साउथ चाइना सी में है जिसमें हम क्वाड के माध्यम से हम सहयोग करते हैं और देशों के साथ, तो ये इन देशों के साथ भी उन्होंने कैसे इस दिशा में उन्होंने कैसे प्रगति की है उसको हम देख सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे तो हमारे लिए वाटर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वाटर के मामले में चाहे नीदरलैंड्स हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड, ये सभी देश, स्वीडन हो, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रगति की है जिनके साथ हम बड़ा अच्छा अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं।
1: जी अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचेंगे और इटली के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नई गति मिली है हाल के वर्षों में, तो ऐसे में शिप बिल्डिंग की बात हो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में काम करने की बात हो, तो इटली के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे पूछूं तो इस दौरे का प्रधानमंत्री का क्या महत्व है?
0: जी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगर हम 2023 में, क्योंकि जॉर्जिया मलोनी वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं प्रधानमंत्री मोदी के, अगर देखा जाए 2023 से लेकर अभी तक 2026 तक 3 सालों में दोनों प्रधानमंत्री करीब 7 बारी एक दूसरे से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में 3 बारी वहां पर गए हैं, परंतु ये पहली बार उनका द्विपक्षीय वहां पर दौरा है, तो इसीलिए इसके ऊपर भारत और इटली के सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इटली सबसे एक बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी इससे बड़े होंगे, परंतु इटली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है, उससे हमारा सहयोग बड़ा अच्छा होता जा रहा है। अगर आप देखें यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए 2024 में, तो वहां पर जर्मनी की पार्टीज हैं, फ्रांस की पार्टीज हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाई, परंतु जॉर्जिया मेलोनी की जो पार्टी है उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, तो उनकी शक्ति जो है यूरोप में वो काफी बड़ी है। और भारत और इटली के बीच में चाहे वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात, तो उसमें भी प्रधानमंत्री मेलोनी बहुत ही एक्टिवली एंगेज्ड है, क्योंकि जो इटली के यहाँ पर मैरिटाइम एरियाज हैं, वेनिस है, जेनोवा है, फ्लोरेंस है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण इसमें काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की यात्रा हमारे दोनों देशों के संबंधों को और यूरोप और भारत के संबंधों को आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी।
1: अशोक जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम में। पहले सुनिए मुकेश की आवाज में मिलन फिल्म का गीत। गीत है आनंद बख्शी का, संगीत है कल्याण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश को मिलन फिल्म में। गीत था आनंद बख्शी का, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लीजिए अब सुनिए उपकार फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। गीत कमर जलालाबादी का और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: लीजिए अब सुनिए हावड़ा ब्रिज फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। गीत कमर जलालाबादी का, संगीत है OP नैयर साहब का।

और लीजिए कार्यक्रम के अंत में सुनिए हम साया फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। गीत है शेवान रिजवी का, संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर साहब ने।

श्रोताओ, हम आपको याद दिला दें, आज रात्रि 9:30 पर दिल्ली से आप सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य

0: तक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक

व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम

भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सैनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिल एक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
3: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जय ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, I love you।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन, 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
2: मस्त बहारों

फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाइच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्र

0: भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
1: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
2: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
3: तू न रोना के तू है

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो।
4: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
5: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से

0: 2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक।
1: तो कितनी

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD 2।
2: जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चून हरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ 29 मई को होता है।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश। दरा आप लखनऊ चले गए,
1: मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो एलबी लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोग को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग स्मृति।

0: की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिखकर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति
1: भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र है। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विथ मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result,

0: spite of this exceptional dedication, he was honored with the title of top grade artist by the government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gaurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gaurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
1: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरु अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
0: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश होगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार।

0: और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: दैट वॉज राग अभोगी। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक इन विच यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा।

0: एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty." Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the ambassador of